0: आज ये कॉम्बो एक पूरा मिला हुआ देखा, जिसमें पंजाब सरकार भगवंत मान घबराया हुआ और एक शराबी सीएम जो देसी पीता था, आजकल मुझे पता लगा है वो बाहर का ब्रांड आता है जिसमें ऊपर टल्ली बजती है, वो टल्ली वाली शराब पी के ये टल्ली रहता है और ऐसे हुक्म देता है, और इसकी वाइफ और इसकी बहन लूटने का काम कर रहे हैं, कई चीजें केजरीवाल जैसे। आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी, एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। ये लूटपाट का पैसा है जी, ज्यादा हदम नहीं होगा भगवंत मान। याद रखना, जो आज तुमने शुरुआत की है ना, तेरे को जहां से तू निकला है उसी जगह अंदर छोड़ के आऊंगा।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन कल रात को एक इंसिडेंट हुआ जहां एएसआई को पंजाब पुलिस के एक गोली मार दी गई अमृतसर में।
1: बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है साहब कि एक लोगों की रक्षा करने वाले जब खुद सुरक्षित नहीं है तो पंजाब किस उम्मीद के साथ पंजाब में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के अंदर मेरा मानना है कि कल जो ये रात को या आज सुबह एएसआई हरजीत सिंह का कत्ल किया गया है, उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी निभाने की कोशिश की होगी, ड्रग्स हमले की कोई खेप पकड़ी होगी। तो उसके चलते हुए आज पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब की इनकी आम आदमी पार्टी के शह के ऊपर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आज नशे से मरने वाले कम हैं और नशे के खिलाफ बोलने वालों का कत्ल ज्यादा किया जा रहे हैं। गुंडों के अलावा इन लोगों को जेलों से छुड़ा के आज अपने नुमाइंदे के तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपॉइंट किया जा रहा है, तो ये सरेआम इन लोगों के ऊपर, जैसे आपने भी कहा कि ये पहला नहीं है साहब, इससे 2-3 महीने पहले मजीठा के अंदर एक एएसआई जोगा सिंह का कत्ल किया गया, उससे कुछ दिन पहले राजा सांसी के अंदर एक इसी तरह उनकी किस्मत ठीक हुई, वो बच गए, जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चलाई गई, और आज ही रवनीत बिट्टू जी उनके ऊपर हमला हुआ।
0: वो आज कहते यहां
1: नहीं, देखिए साहब ये एक कड़ी है, अकेला बिट्टू जी पे नहीं, 2 दिन पहले सांपला जी पे हमला हुआ साहब, ये लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं साहब, पंजाब के अंदर टोटल डिसऑर्डर है और होगा भी, इनकी स्टेटेड पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी है ये साम दाम दंड भेद, हमें तो सरकार बनानी है, पंजाब जाए बाढ़ में, जनता जाए आज नशे से मरे या गोलियों से मरे, इनको कोई लेने देने नहीं, इन्होंने तो अपने माल समेटने साहब।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
2: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
3: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
4: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
5: अब मैं क्या ही बोलूं?
6: परिवार अटूट भरोसा।
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: खिचड़ी कचौड़ी खा ली, समोसे खा लिए, कोई पाप थोड़ी है, एंजॉय करो। तो बीच बीच पे आकर से मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई मुझे दिनिया वालों शराबी न समझो।
1: हम इंडियंस बहुत दिलवाले हैं, बट हमारे हार्ट्स इतने वीक क्यों हैं? व्हाई डू इंडियंस गेट हार्ट अटैक 10 years earlier than the West?
0: There is genetics in it, वो तो है ही, और साथ में हमारे वो risk factors भी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है, जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में हर एक के कोलेस्ट्रॉल विच इज लिपिड प्रोफाइल तो 10 साल की उम्र में हो जाने चाहिए।
1: 10 years?
0: हाँ।
1: A lot of times television headlines become out the fact कि ये देखिए ये एक्सरसाइज करते थे, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इसलिए इनको हार्ट अटैक आ गया है। कितनी एक्सरसाइज इज ओके एंड वेयर डू यू नीड टू स्टॉप?
0: अगर हम सडनली सिवियर एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमारे आर्टरीज है कैसी। माइनर ब्लॉकेजेस जो हमें सिम्टम्स नहीं दे रही हैं, सडनली विद सिवियर एक्सरसाइज हार्ट अटैक कर सकती हैं। यू मे रिमेंबर वन ऑफ द सेलिब्रिटीज हु एक्सरसाइज फॉर 2 hours एंड सडनली कोलैप्स एंड डाइड, एंड एवरीबॉडी सेड वो तो इतना यू नो एक्सरसाइज करता था, वो तो 2 साल से क्या उसकी मसल से क्या था, एंड नोबडी न्यू दैट ही एक्चुअली स्मोक्ड 15 सिगरेट्स अ डे। वो जो हम देख रहे हैं ना कहीं डांस करते हुए कोलैप्स कर गए, they could have actually been smokers because smoking itself precipitates clotting in the even normal arteries.
1: Yeah.
0: 25 saal ke ladke heavy smoking ke baad maine dekhe heart attack hote hue jinki arteries full of clot hoti hai, blockage to hoti bhi nahi hai, kyunki heart attack ka reason hi kya hai? Hamari arteries mein blockages thi. Sochiye ki pipe hai hamare ghar ki, wo pehle se hi narrow ho rahi thi, kachra phasa aur pani band hua, suddenly artery band ho gayi.
1: How do I know that if I have uncontrolled BP?
0: You asked a very right question. And किसी लोगों को पता भी नहीं है, घर में चेक कैसे करते हैं?
1: And I did not know that TMTs are 40% false positives.
0: Absolutely. Wow. Women में तो up to 50% false positive आ सकते हैं.
1: How do I know this is a heart-related issue or this is a gut-related issue?
0: Very important. And in fact, both the symptoms can mimic each other. We are missing out 15% of heart attacks and people are damaging their heart thinking कि वो गैस थी और शायद वो राजबा खा लिए थे रात को, या मैं बाहर खाने चले गए थे और पूरी रात वो गैस को समझते रहे, डाइजिन खाते रहे। बाय द टाइम दे लैंड अप इन द हॉस्पिटल द हार्ट इज बैडली डैमेज्ड बिकॉज 8 to 10 hours हैव पास्ड बाय।
1: द बिगेस्ट मिस्टेक दैट इंडियंस मेक व्हेन इट कम्स टू देयर हार्ट?
0: घबराहट हुई, स्वेटिंग हुई और सोचा कि हार्ट अटैक है और सॉर्बिट्रेट दे दी। सॉर्बिट्रेट इज एक्चुअली द वर्स्ट ड्रग फॉर हार्ट अटैक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो आप खुद ले सकते हैं वो है
1: Welcome to Doctor vs. Internet. I'm Sonal Mehrotra Kapoor. Today I have with me a doctor who I've waited a long, long time to bring him on the podcast. If I say heart health, there is one doctor who's a household name in the country. Dr. Ashok Seth is not a doctor. He's an institution. What he's done for heart health, how he propagates about it, and what he's really turning the entire health industry into is commendable. And today when he sits down with us, I wanted to do something which is different from what he's already spoken. Itne sawal hote hain hamare aur aapke dimag mein, but one thing that has often like sort of got into my head is, why do Indians get heart attack 10 years earlier than the West? Are we genetically more inclined towards a weaker heart? Are women's heart different than the way a man's heart responds? And there's no romance in that. I'm purely talking about biology here. What about these high-intensity programs like HIROX, like HIIT? What are they doing to our heart? Why is it that we still haven't figured out that young people are dropping dead in their gyms? Or perhaps not very old people dying in their sleep? These are all very fundamental questions, but perhaps a time we bring you all the answers in one podcast. Aisa kya hai jo hum samajh nahi pa rahe ki fit rehne mein aur disease free rehne mein kitna farak hai, and how do we actually get there? So with that, Dr. Seth, how are you doing?
0: Very well, Sonal. In fact, main coffee isliye pee raha hu that I've got to keep up with your exuberance. And let me just say ki you know, your wonderful podcast, very informative. मैं कई दिनों से वेट कर रहा हूँ कि कब सोनल इनवाइट करेगी अपने पॉडकास्ट के लिए. So it's actually the other way around.
1: That is really, really sweet. Thank you so much. But let me dive in straight with the question.
0: Right.
1: हम इंडियंस बहुत दिल वाले हैं, बट हमारे हार्ट्स इतने वीक क्यों हैं? Are we genetically weaker? Our hearts are genetically weaker than the West.
0: That's absolutely correct. There are two aspects to it. Yes, there is genetics in it. वो तो है ही. और साथ में हमारे वो risk factors भी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में. So let's just consider genetics. क्या है? दो तीन चीज़ें जेनेटिक्स में आती. एक तो हमारी बॉडी हैबिटस. आपने सुना होगा कि मैं आपको टॉफ़ी के बारे में बताता हूँ. टॉफ़ी तो बढ़िया बड़ी मिलती है. टॉफ़ी इज़ बैड फॉर हार्ट. बट जो हम टॉफ़ी की बात करते हैं हार्ट डिजीज में, दैट इज़ रिलेटेड टू थिन आउटसाइड एंड फैट इनसाइड. तो हम लोग जो हैं हिंदुस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में, वी आर एक्चुअली हमारे ऊपर से पतले लगते हैं. हमारे पैर पतले होते हैं, मसल्स कम होती हैं, सब कुछ लगता है, बट अंदर से मोटापा ज़्यादा है. जो एडिपोज टिश्यू जो हम कहते हैं, जैसे कि हमारा पेट ज़्यादा निकला होता है, लिवर के अराउंड, हार्ट के अराउंड, इंटेस्टाइन्स के अराउंड फैट ज़्यादा होता है. और ये जो विसरल फैट है, जो जेनेटिकल है, हमारा जेनेटिक्स के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है. तो हम चाहे पतले भी लगते हों और बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से हम चाहे 25 और 23 के बीच में हों, बट फिर भी हमारी नुकसान हो रहा है हार्ट का. और ये एक जेनेटिक्स है हमारा. इसीलिए वही चीज़ हमारे लिए रेज ट्राइग्लिसराइड्स को रेज करती है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को लो करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है, वही नुकसान हमारे को हार्ट को करती है, एथरोस्क्लेरोसिस. इनफैक्ट ये एडिपोज टिश्यू देखा गया है कि जो पेट का मोटापा होता है, इंटेस्टाइन्स के अराउंड एडिपोज टिश्यू होता है, लिवर को हार्म करता है, हार्ट को हार्म करता है, और ये कोई इन्फ्लेमेटरी पदार्थ प्रोड्यूस करता है जो हमारी आर्टरीज को डैमेज करते रहते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोड्यूस करते हैं.
1: करेक्ट. सो दिस विसेरल फैट लोगों को समझ में नहीं आता. सो आई वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट.
0: सो आइडिया ये ले लें कि एक हमारा मोटापा है जो हमें चारों तरफ दिखता है. ओवरऑल हम पूरे मोटे हैं. और एक है कि ऊपर से तो पतले लग रहे हैं, बट अंदर हमारे इंटेस्टाइन्स के अराउंड जो दिख नहीं रहा है, वहां पे फैट डिपॉजिट हुआ हुआ है. लिवर जो हमें दिख नहीं रहा है, उसके अराउंड फैट डिपॉजिट हुआ हुआ है. हार्ट जो दिख नहीं रहा है, उसके अराउंड फैट डिपॉजिट हुआ.
1: कुछ करा नहीं है इसको करने के लिए, जेनेटिकली और मोर इंक्लाइंड. ओके,
0: सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. इसीलिए हिंदुस्तान में पेट का मोटापा ज्यादा दिखता है. तो हम क्या कहते हैं कि मोटापा क्या है हिंदुस्तान में? जो वेस्ट के फिगर्स है कि बीएमआई होना चाहिए 30 से ऊपर, तो इंडिया में तो फिट करता ही नहीं है. और बीएमआई छोड़ दीजिए, सिंपल फैक्ट अगर मैं कहें कि हिंदुस्तान में मोटापा क्या है, तो आप अपनी वेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर कर लो, क्योंकि वो आपका मोटापा है.
1: करेक्ट.
0: दैट इज द विसरल फैक्ट कि आदमी में, एडल्ट में, अगर और मैं कहूंगा सिर्फ
1: वेस्ट रेशियो
0: 90 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो एडल्ट में, विमेन में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तो सोचिए कि वो विसरल फैट मेजर कर रहा है आपका. और हमें कोई बीएमआईज वगैरह मेजर करने की जरूरत नहीं है.
1: बीएमआई इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड एनीमोर, दैट्स बीन एस्टैब्लिश्ड. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट यू आर सेइंग मोटापे का लिंक डायरेक्टली टू योर हार्ट. दैट इज सो इम्पोर्टेंट.
0: और पेट का मोटापा जो अंदर का मोटापा,
1: अंदर का मोटापा.
0: दूसरी जो जेनेटिक्स की बात है जो अब ज्यादा रियलाइज हो रही है, आपने सुना होगा एलपीए. एलपीए एक लाइपोप्रोटीन है, एक ब्लड में मेजर होता है, और आजकल उसके बारे में कई काफी बातें हो रही हैं. अब एलपीए देखा गया है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. पहले सोचते थे कि अगर फैमिली में चल रहा है तो शायद एक मार्कर है जिससे पता चल जाता है कि शायद हार्ट डिजीज ज्यादा होगी. अब ये एक मार्कर, ये अब ये रिस्क फैक्टर है. और हमारे हिंदुस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में ये वेस्ट से ज्यादा पाया जाता है. तो दिस इज अगेन जेनेटिक्स. हमारे लोगों में एलपीए बहुत हाई है. अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज नहीं हुई है, बट एटलीस्ट ग्रुप्स में देखा गया है और दूसरे कंट्रीज की पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में देखा गया कि हिंदुस्तान में एलपीए ज्यादा होता है. और ये एलपीए सिर्फ अगर वेस्ट में एलपीए हाई हो, तो अगर हम कहेंगे कि डेढ़ गुना रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ गया, बट हिंदुस्तानी में ये भी देखा गया कि एलपीए सेम लेवल का एलपीए हाई हो, तो हिंदुस्तानी में 3 गुना ज्यादा हार्ट डिजीज हो जाती है.
1: Wow.
0: So we are suffering from two sides of genetics. So फिर वो जो बात आई कि और क्या चीजें हैं हिंदुस्तानियों में, तो वो तो क्लियर है. World capital of diabetes, world capital of hypertension, 30% adults above the age of 30 high blood pressure से सफर कर रहे हैं. और मैंने कह ही दिया कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हमारे बड़े में है, स्पेशली लो एच डी एल कोलेस्ट्रॉल और रेस ट्राइग्लिसराइड्स. तो एक्चुअली यही है हमारा जीन्स और यही है हमारी किस्मत. सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ, अनफॉर्चुनेटली.
1: That's a lot to process. I'm very glad you brought it up because it's a good start. Because if we don't even identify that as a problem, देखिए problem क्या है डॉक्टर सेठ कि इंडिया में लोगों ने ऐसे ले लिया है कि अब उम्र होगी है बीपी तो होगा, उम्र होगी है वजन तो बढ़ेगा, डायबिटीज तो हो ही जाएगा, दवाई खाते रहेंगे ठीक रहेंगे. That mindset, I don't know if you are seeing in your clinic, I'm seeing in people around me, that mindset is shifting. Younger people are now saying that, listen, I don't want to live with blood pressure. I want to ensure I can delay it as long as possible because genetically I know I'm going to get it.
0: Correct.
1: Diabetes runs in the family, blood pressure runs in the family. I'm going to get it one day. But how do I ensure that I delay it as long as possible?
0: And I think it's a good mind shift.
1: Yeah.
0: And it's happened in two ways. Ek to more education's happening through,
1: yes.
0: through exactly what you're doing today is happening. And the other factor is, of course, those visuals of people suddenly dying, collapsing, etc., which is coming up more because of social media, etc., which used to happen earlier, but more. Uski wajah se log kehte hain. In fact, patients come to me now, young ones, between 30 and 40, kehte ki kyun hai? Ye test karaya hai. क्योंकि मेरे किसी दोस्त को ये हो गया है, क्योंकि मैंने वो विजुअल देखा जिसपे ऐसे हो गया था, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैंने सोचा अपने टेस्ट करा लूँ. नाउ दैट इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी हैव सीन 10 इयर्स अगो.
1: या एंड आई जस्ट वांट टू से दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स टेलीविजन हेडलाइंस बिकम आउट द फैक्ट कि ये देखिए ये एक्सरसाइज करते थे, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इसलिए इनको हार्ट अटैक आ गया है. ये क्या मिथ बस्ट कर सकते हैं?
0: एब्सोल्युटली.
1: एक्सरसाइज का और हार्ट हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है? कितनी एक्सरसाइज is okay and where do you need to stop?
0: So, isme do bhi cheeze hain. Ye to you ask the right question ki what is good exercise and what is good heart health. But also, kya us aadmi ko video kheench raha hona chahiye tha? Should not he be resuscitating that person jo samne collapse ho gaya? The two important questions come to my mind. And I'm even more frustrated by the fact that that person jiska video khicha ja raha tha could have actually been saved by the person jo video khich raha tha. Wahi
1: intervention
0: ek do minute
1: I know mein could have saved their life.
0: But anyway, let's come back to this. Heart health and bodybuilding physiques are two different things altogether. Ek to muscle building hai and that is of course increasing with increased gyms. Aap dekh hi rahe ho, looking fit, etc. That's looking fit. But it doesn't mean your heart is actually fit. Jo andar ho raha hai, uska pata karna bahut zaruri hai. It is not, taking all those, steroids, etc. for

0: सिवियर एक्सरसाइज हैवी वेट लिफ्टिंग या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं सडनली, तो हमें पता नहीं होता कि हमारे आर्टरीज है कैसी, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं है, एंड इवन एनी माइनर ब्लॉकेजेस जो हमें सिम्टम्स नहीं दे रही हैं सडनली विद सिवियर एक्सरसाइज हार्ट अटैक कर सकती हैं. अगर हम स्मोकर हैं तो सिवियर एक्सरसाइज हमें हार्ट अटैक कर सकती है, क्योंकि सिवियर एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, आर्टरीज पे स्ट्रेन पड़ता है, और वही ब्लॉकेज जिसने हार्ट अटैक करना ही नहीं था वो सडनली हार्ट अटैक करती है. सो हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि अगर हम सिवियर एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग पे जा रहे हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि एडल्ट में हमने जिम हमें हाफ मैराथन रन करनी है, तो हार्ट का चेकअप बहुत जरूरी है प्रायर, एंड देन वी स्टार्ट ग्रेजुअली, और धीरे धीरे हम बिल्डअप करें. नॉट कि किसी दिन कहा यार उसकी तो शेप बॉडी की बड़ी अच्छी है, अब मैं चलता हूँ जिम और मैंने उठाना है 50 किलो, और साइड में देखा कि उसने 70 किलो उठाया है, तो कहते हैं चलो एक बार 70 भी उठा के देखा
1: जाए.
0: इट इज अ डिजास्टर इन मेकिंग. यस, देर आर फ्यू अदर कंडीशंस जो हार्ट की होती हैं, जेनेटिकली रन करती हैं, फैमिली में रन करती हैं, और वो पता चल जाता है कि फैमिली में किसी को सडन डेथ हुई है कि नहीं. ये अरिथमियाज होते हैं, हार्ट की मसल की कंडीशंस होती हैं, वो कई बार सीवियर एक्सरसाइज में प्रेसिपिटेट हो जाती हैं. इसलिए 30 साल के बाद तो कहूंगा ये कोलैप्सिस जरूर हार्ट अटैक की वजह से है, लेस देन 30 इयर्स इट कुड बी एनी ऑफ दोस जेनेटिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज रेयर एपिसोड्स ऑफ हार्ट अटैक्स. यू नो स्मोकर्स में तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं. You know, you may remember one of the celebrities who exercised for 2 hours and suddenly collapsed and died. And everybody said, wo to itna, you know, exercise karta tha, wo to 2 saal se kya uski muscle se kya tha. And he was only 42, etc. And nobody knew that he actually smoked 15 cigarettes a day.
1: Yeah.
0: And smokers mein to, I get this regularly, absolutely perfect life. 45-year-old kehta hai ki, main to sab kuch theek karta hu. Khana dekhiye mera Mediterranean diet, main to isko chhod diya, wo chhod diya. Looking absolutely fit. Main 15 kilometer jog karta hu. Main kehta hu, I'm scared about you. Because, hey, what's wrong with you? Acha, smoke karte ho? Haan, smoke to karta hu. I said, I'm scared about you. Ki tum exercise kar rahe ho 15 kilometer. Yun hoga, ek din suddenly clot aayega and you'll collapse and die. Why are you smoking? This is the sadness of it, because smokers have that sudden cardiac death. Wo jo hum dekh rahe hai na, kahin dance karte hue collapse kar gaye, they could have actually been smokers, because smoking itself precipitates clotting in the even normal arteries. 25-25 saal ke ladke heavy smoking ke baad maine dekhe heart attack hote hue jinki arteries full of clot hoti hai, blockage to hoti bhi nahi hai. And then we actually on the angioplasty table are extracting those clots, trying to actually prevent the heart damage. Or wo heart damage, I've got so many patients, at least I must have 1,000 young people between the age of 20 to 25, or even more, jinke heart attacks hue sirf smoking ki wajah se, jinka heart itna damage ho gaya ki unka normal heart functioning, wo bole heart attacks pretty dangerous hote hain, because they're happening on normal arteries. Suddenly artery band ho gayi.
1: Is vaping also equivalent to smoking?
0: Vaping is bad. Vaping, all taking away is nicotine part of it, but paper part of it. It's just taking away bad products of the paper it's taking away, but it doesn't take away the other bad effects on the arteries of the heart. So vaping is just a consolation of trying to make it more socially acceptable, but still continuing to harm us and harm you. Aur agar ye karte rahe to heart attack aayega hi, and that heart attack, by the way, every heart attack is shortening a life. So sometimes feel bad for that 20-25-year-old jisko heart attack hua, jiski wo jo 80-90 saal ki life honi thi, maybe 100 saal ki, gets cut down to 50-60 years only.
1: Yeah,
0: it's sad.
1: Yeah, but every time people say this about smoking, my mind triggers into this other problem, which is that if I stay in Delhi, I am a smoker, sir.
0: Oh, to hai hi.
1: If I'm, you know, breathing in this polluted air, so we are all at risk.
0: Main to sabko lagta dara raha hu.
1: No, it's good to know. I know what you're saying, but I really hope the purpose of this conversation is that we are able to, you know,
0: put a perspective.
1: No, get the right knowledge. And for us to push our government also to say that, listen, my health, just by breathing, I'm taking away like 8-10 years of my life here, right?
0: But then I smokers ke liye kya kehta hu?
1: Kya?
0: Aap to smoke ne chhod di. Now don't even mix with smoke, the friends who smoke. क्योंकि आप पैसिव स्मोकिंग भी करते रहोगे ना, 30% इंक्रीज इन रिस्क ऑफ हार्ट

0: अटैक आपको हो जाता है, आपका दोस्त स्मोक कर रहा है, क्या है यार, अब छोड़ो स्मोकिंग, गिव इट अप. निकोटीन इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट वी एक्चुअली सीन इन लाइफ. लेट्स नॉट इवन पैसिवली स्मोक, बट यू राइट अबाउट दिस पॉल्यूशन. यू कह दिया वो भी तो एक सिगरेट रोज की पी रहे हैं हम लोग.
1: एक नहीं सर, मतलब वर्स्ट कंडीशंस इट्स 22-23 सिगरेट्स अ डे.
0: सो पॉल्यूशन ऑफ कोर्स इज समथिंग we need to take very seriously.
1: जो आपने एक LPA टेस्ट के बारे में बोला, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई, इट डजंट कॉस्ट टू मच एंड यू हैव टू गेट इट वंस इन अ लाइफ टाइम, राइट, टू जस्ट अंडरस्टैंड. वुड यू सजेस्ट दैट यंग पीपल, व्हेन यू से शुड नो मोर अबाउट देमसेल्व्स, गेट दीज टेस्ट डन?
0: एब्सोल्युटली. देखो, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज इज नो रॉकेट साइंस, एंड आई वुड से any government initiatives are needed. In fact, it's the cheapest thing to do. And yeah. I'll explain that. In my own life, it's the cheapest thing to do in everybody's life. But let's consider this, ki ye test hi kabhi hone chahiye, which it also includes the LPA. So we say once in a lifetime is correct. But clearly, Hindustan mein har ek ke cholesterol, which is lipid profile, to 10 saal ki umar mein ho jane chahiye. Because heart disease to start hoti hai very early, deposits to start hoti hai very early.
1: 10 years.
0: It has been actually seen ki jinko cholesterol ki tendency hai, jinke high cholesterol chal rahe, jinki family mein heart disease chal rahi hai, aur jinki ek history hai family mein ki father, mother at an early age in life, less than 55-60, ya to heart disease hui hai, ya deaths hui hai, ya bypass surgeries ho gayi hai, ya siblings mein, ya unke siblings mein.
1: Which is practically 90% of North India.
0: Exactly. To ye to karna hi hai. Aur uske, unke sabke liye karna hai. This, it's now a standardized care. The second aspect is ki agar sab kuch theek nikla, तभी तो वो फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया ये वो पिकअप हो जाता है जो अर्ली इन लाइफ, जिसे तभी से ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो फ्यूचर में हम बच सकते हैं. बट अगर वो सब ठीक निकला तो देन बाय द एज ऑफ 20 अगेन बिकम्स अ मस्ट. एंड देन हमें पता ही है कि हार्ट डिजीज तो बड़ी अर्ली शुरू होती है, तो अगर निकला ठीक तो 5-5 साल पे आप टेस्ट कराते रहिए, और 30-35 साल के बाद तो हर साल एक बार कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट कराइए. नाउ सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं है, एंड वी नो कि ये हमने LDL करना, हमने HDL करना है, ट्राइग्लिसराइड्स करने हैं, LPA करना है, बट LPA तो एक बार जिंदगी में करा लिया, बिकॉज दैट टेस्ट डज नॉट चेंज. बात रही रिस्क फैक्टर्स की पता करने की, और कोलेस्ट्रॉल तो एक ही रिस्क फैक्टर है, तो साथ साथ हमें शुगर का भी टेस्ट करा लेना चाहिए, और साथ में एक बार BP चेक करा लें. अगर ये 3 रिस्क फैक्टर्स हमें पता हो तो हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि हार्ट डिजीज प्रिवेंट करना तो हमारे हाथों में है. हम कहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, नो वी वॉन्ट यूज नंबर ऑफ रूल्स रेगुलेशन वगैरह वगैरह, बट अगर ये 3 रिस्क फैक्टर्स हम रेगुलरली जानते रहे तो हार्ट डिजीज हम खुद प्रिवेंट कर सकेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अपना ख्याल रखना तो हमारे हाथों में है. द अदर थिंग, ये जो ये मैंने कहा कि बीपी चेक करने की बात, तो बीपी चेक तो हमें पता ही है कि हर ही कंट्री जब बीपी डायग्नोज भी होता है तो 50% लोग के तो अनकंट्रोल्ड बीपी चल रहा है, धीरे धीरे किडनी डैमेज होती रहती है. कहते हैं एक गोली खा रहे, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं. कोई कोई डॉक्टर कहता है कि जी आपका बीपी अनकंट्रोल है, नहीं नहीं घर में तो बड़ा ठीक चलता रहता है, जब भी हम मेजर करते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है. हमें तो पता चल जाता है एक सर हेडेक होता है तो बीपी हाई है. तो ये सब कितनी मिथ्स हैं जो चल रही हैं, और किसी लोगों को पता भी नहीं है ज़्यादातर लोगों की बीपी के चेक घर पे चेक भी कैसे करते हैं. वो मशीन ने दिखा दिया, उसी में खुश रहे.
1: हाउ डू आई नो दैट इफ आई हैव अनकंट्रोल्ड बीपी और घर की मशीन में ठीक दिख रहा है?
0: ओ, घर की मशीन में इसलिए कि हम ठीक से बीपी मेजर नहीं करते हैं. आई थिंक यू आस्क्ड अ वेरी राइट क्वेश्चन एंड लेट मी जस्ट क्लोज दिस. घर में चेक कैसे करते हैं? ठीक है, ज़्यादातर लोग आपने सुना ही होगा कि घर में मशीन रखी हुई है और कहते हैं जी हम रेगुलरली चेक कर रहे हैं, बड़ा ठीक आता है घर में, आपके यहाँ आते हैं तो फिर हाई हो जाते हैं. यस, दैट्स अ फैक्ट, नॉट अ मिथ. बट कितना हाई होता है? अगर मेरे को 180 मिल रहा है जो कि रियली वेरी हाई बीपी है, तो आपका घर में 110 कैसे हो सकता है? 10-20 मिलीमीटर का तो वेरिएशन होगा ही. सो रियली वो हाउ द वे इट्स चेक्ड इज, टेबल पे बैठिए, आराम से टेबल पे बैठिए, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ. बट सोनल के साथ बात नहीं करनी है उस टाइम पे. इनफैक्ट उससे पहले ना, और ये कॉफी भी नहीं पीनी होती इसके साथ, उससे पहले कोई हैवी खाना भी नहीं खाना है. चाय कॉफी नहीं पीनी है. इट शुड बी इन अ रिलैक्स सिचुएशन जिसमें आप किसी से बात ना कर रहे हो. ये नहीं कि घर में झगड़ा हुआ है उसके बाद कहा कि बीपी अब चेक कर लीजिए. सो अब आप उसको रखिए हाथ पे, बी कंफर्टेबल इन द चेयर, कंफर्टेबली. पीपी इंस्ट्रूमेंट भी उसी लेवल पे होना चाहिए जिससे आपका हाथ है, और हाथ आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए जो कि ये है. आपका निप्पल आपका हाथ है.
1: सो दिस लेवल इज फाइन.
0: दिस लेवल इज फाइन. उसके बाद आपने कफ जो बांधना होता है वो ये आपकी जो एल्बो है उससे अप्रोक्सीमेटली 1 इंच या 2 सेंटीमीटर ऊपर आपका कफ है. आजकल हर कफ पे एरो बनी होती है कि आर्टरी कहाँ पे है. आर्टरी होती है अगर ये ले ले क्रीज तो उसका 2/3 और 1/3 अगर ज्वाइन कर ले वहाँ पे आर्टरी होती है, वहाँ पे एरो लगा दे, फिर आप अपना बटन दबाएं और आपका ऑटोमेटेड बीपी चेक हो रहा है. जब ऑटोमेटेड बीपी चेक हो रहा है तो आप रिलैक्स रहिए, आपकी एक ब्लड प्रेशर रीडिंग आएगी, आप उसके बाद 3 मिनट बाद से 5 मिनट बाद दूसरी रीडिंग लीजिए और एक थर्ड रीडिंग लीजिए और उसका एवरेज कर लीजिए. और आपने अगर आपने रियली समझना है कि आपका बीपी है कि नहीं है, अगर अच्छी रीडिंग आई तो अच्छा है, आपने कभी कभी बीच में चेक कर लिया, अदरवाइज अगर आपने रियली करना है और अगर देखना है कि आपका कंट्रोल ठीक है कि नहीं, तो दिन में 2 बार, रात के खाने से पहले और सवेरे के खाने से पहले, सवेरे के ब्रेकफास्ट से पहले.

0: We're beginning the bulletin with our focus on a story that's now coming from Greater Noida. It's a case that we've been hearing about, or it's pertaining to a case we've been hearing about quite often, a hit and run shocker yet again. This time from Greater Noida, where the incident has been caught on camera. It's a speeding car that rams a group of five people. The driver fled the spot after the collision. The entire incident and the sequence of events has been caught on camera, as you can see. We bring to you those very visuals of the very moment of collision. Incident at the Knowledge Park area in Greater Noida, with cops having registered a case and launching a manhunt to nab the driver. This hit-and-run incident has been reported from Greater Noida just days after what we flagged to be another major incident that had taken place in Greater Noida itself. This is yet another such case that's come up from the same region. Now, it's a speeding car that struck four to five people roughly, that we could see in this very footage. The driver fled the scene right after the collision. A video of the incident has now gone viral. As you can see, the police have taken cognizance of the very matter. A case has been registered and an investigation is now underway. Police teams are consistently conducting raids to arrest the very accused. The police are investigating all other aspects of the very case. The incident occurred in the Knowledge Park police station area. Now, we have Anshul Singh joining us on the broadcast with more details on the same. Anshul, a very good morning to you. Yet another case of hit and run that we see. In fact, just days after such a case had been reported from Greater Noida itself. But the problems that are being very much flagged in the CCTV cameras itself, there seems to be no fear of law or action at whatsoever way, because we see this car coming in, colliding and ramming into four, five people and then just fleeing the spot.
1: Very good morning, Sia. And definitely this has become very, very common across Delhi NCR area, be it Gurugram, Delhi or for that matter, Noida or Greater Noida. This matter that has happened is yet again a very shocking matter that has come to light. The Noida police has listed a case into this entire matter. The five people who were hit by the vehicle have been admitted to a hospital, and they, at this point in time, they are undergoing treatment. Thankfully, there are no serious injuries, is what we are being told. However, an FIR in this entire matter of rash and negligent driving and other sections of the BNS have been added. Now, the Noida police is has been able to figure out that who is the owner of the car, but they are trying to figure out if at all the owner of the car was actually driving the vehicle at that point in time. And that is something that needs to be investigated. Teams have been formed to ensure that the accused is nabbed at the earliest. But yes, the manner in which these incidents are happening on a daily basis, definitely the need of the hour. It seems like that there needs to be more vigilance from the side of the administration, plus more awareness that could be given to the people as to how could they respond once they have met an accident. So the Noida police is also, in fact, trying to figure out if at all this entire accident that has happened, was it intentional or was it a natural accident? So yes, there are many layers that still needs to be investigated, and that is something that is being done by the Noida police. But the first focus is to go ahead and ensure that the accused who was driving the offending vehicle, he should be taken into custody and brought to the books at the earliest.
0: Anshul, you know, we've been consistently flagging these cases from not just the National Capital Region, from different parts of the country, in fact. Two words that you have used have oftentimes come across and been highlighted, that is vigilance and awareness. You have been following these cases for years to come now. There is law that is there in place. Is there a lapse in perhaps executing this particular vigilance on the roads, or is there a lack of awareness? Is there a lack of fear amongst these drivers that, you know, at the end of the day, we'll get bail or get out on some notice, even if we are arrested? What is it that indeed, you know, is unfortunately failing to prevent such incidents from happening again and again on the streets in India? It's become a big concern now, with such cases, in fact, coming up almost every single day now as we speak.
1: Well, lack of fear is something that that can definitely be sensed, because generally in accident cases, what happens is that the bailable sections or the punishment that is given are all bailable sections. So if at all a person is involved in an accident, then he could be arrested, and then within hours he could secure a bail from the police station itself. So Definitely, that lack of fear of law is something that is very prevalent. Remember, when these new laws, when the new laws were brought in, the BNS and the BNSS, in those laws, the accidents, specifically hit and run cases, were termed as non-bailable. But there was a massive outrage and protest that hit the streets at that point in time, where transport owners and truck drivers had demanded that if at all they do not run from the spot, then the locals who are present on the spot, they could attack them and they could in fact kill them as well. And hence, there was a lot of pressure that was built on the government, and hence the government put this entire non-bailable sections in abeyance, and that has not been implemented on ground at this point in time as well. Apart from this, there is also this immediate response that that triggers people to actually get away from the spot and try to do away with the with the laws, instead of going ahead and helping the person whom they have hit. So both awareness as well as stricter laws is something that is need of the hour, and to ensure that if at all a person does not flee from the spot, he is also somewhere or the other given the support that is required, and is prevented from any sort of injuries that might be caused to him from the people in the nearby area. So yes, there are many layers that needs to be looked into, and definitely a larger plan needs to be implemented on ground, so that there is at least some fear amongst people before they try to hit someone and run away from the spot.
0: Absolutely, Anshul. Right. On that note, we will be shifting our focus. We do see now the Prime Minister is.
2: सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं अक्सर कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है। यहां बहुत सारे ग्लोबल साउथ के मेरे साथी बैठे हैं, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है, 6 गुना ज्यादा। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है, और मैं हर भारतवासी से कहूंगा, आप भी दम दिखाइए। हमने अपनी परंपराओं और उनकी ताकत को भी दुनिया के सामने रखा है। इन्हीं विषयों को लेकर पेरिस में COP21 के दौरान हमने कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज उस बुक को भी लॉन्च किया था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, आज का भारत पर्यावरण सुरक्षा के अपने प्राचीन विचारों को आधुनिक विजन में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है। बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है। हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है, मैं G20 के बड़े बड़े लोग हैं ना उनके सामने बता रहा हूं जी, इकलौता भारत ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। ये हिंदुस्तान की ताकत की मैं बात कर रहा हूं। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है। आप आंकड़ों को देखिए, 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट थी। 12 साल पहले 2 गीगावाट, अगर यहां वकील बैठे हैं तो जरा ध्यान रखें, आंकड़े कभी काम आएंगे। आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 2 गीगावाट से 160 गीगावाट 12 साल में। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं। ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है। कुसुम योजना के तहत सरकार ने 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप्स लगाने का काम किया है। हमने वन नेशन वन ग्रिड का एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, घरों में LED बल्ब जो बिजली की बचत करने में सफल पुरवार हुआ है, करोड़ों की तादाद में LED बल्ब घरों में पहुंचाए हैं। और इन प्रयासों के परिणाम आज हमारे सामने हैं। अकेले सोलर एनर्जी से ही भारत में करीब, ये आंकड़ा भी वकीलों के लिए है, भारत में करीब 20 करोड़ टन कार्बन एमिशन रोकने में सफलता मिली है। साथियों, सोलर एनर्जी के साथ साथ क्लीन एनर्जी के दूसरे सेक्टर में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 12 साल में देश की विंड एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है, हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी हुई है और अब देश न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पर तेजी से काम कर रहा है। और जो लोग एनवायरनमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे, रोकने के लिए। इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है। भारत कोयले के और अधिक स्वच्छ उपयोग के लिए कोल गैसिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है। साथियों, भारत आज क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। ये क्लीन मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, 12 वर्षों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में करीब 950 गुना का इजाफा हुआ है। 950 गुना 2014 से पहले के साल में भारत में 3000 से भी कम ईवी की बिक्री थी। 3000, वही पिछले साल करीब 25 लाख ईवी भारत में बिकी है। यानी ईवी रिवॉल्यूशन के इस अवसर को भारत पूरी ताकत से अपना रहा है और इससे पर्यावरण की भी मदद हो रही है। हमारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर फास्ट टैग की आधुनिक व्यवस्था से भी टोल बूथ पर वेटिंग कम हुआ है। इससे टोल बूथ पर जो फ्यूल वेस्ट होता है वो बंद हुआ है। साथियों, 2014 तक हमारे देश के 5 शहर में करीब 250 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था। ये भी मेरे वकील मित्र याद रखे, 2014 के पहले सिर्फ 5 शहरों में 250 किलोमीटर से कम। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क है। साथियों, रेलवे का लगभग 100% 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने से भी करोड़ों करोड़ लीटर डीजल जलने से बचा है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। इसी महीने कुछ दिन पहले करीब 3000 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। इस पर चलने वाली हर ट्रेन एक बार में सैकड़ों ट्रक्स का लोड लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन अपने आप में ऐतिहासिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितने बड़े लेवल पर पर्यावरण की भी मदद होती है। साथियों, देश में आज करीब 5000 किलोमीटर लंबे वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है, जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी है। इन पर चलने वाला एक स्टैंडर्ड इनलैंड वेसल एक यात्रा में दर्जनों ट्रक के बराबर लोड ले जाता है। इससे भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सहायता मिल रही है। साथियों, अकेले मोबिलिटी सेक्टर में ये सारे बदलाव इस बात के गवाह हैं कि हमारा डेवलपमेंट स्पीडी भी है और सस्टेनेबल भी है। साथियों, आज करोड़ों लोगों की भागीदारी से भारत में जल संरक्षण पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि देश में 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में करीब 1.5 करोड़ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, जिसमें बारिश का पानी संरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए आज 2 करोड़ से ज्यादा किसान सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे इनिशिएटिव से भी पानी की बचत हो रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, ये भी एक बहुत बड़ा सफल उदाहरण है। भारत मिलेट श्री अन्न की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है, जो पानी की खपत कम करते हैं। बीते वर्षों में देश में मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़कर करीब 1.5 लाख टन हो गया है। इससे किसानों के लिए नए मौके तो बन ही रहे हैं, पानी की भी बचत हो रही है। और इसी मॉडल के कारण दुनिया भी हमारे साथ जुड़ रही है। भारत के प्रयासों के कारण 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। साथियों, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत आज देश में करीब 12.5 लाख हेक्टर में नेचुरल फार्मिंग के 24,000 क्लस्टर्स बन चुके हैं। यही नहीं, देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की भी करीब 3,000 वैरायटीज विकसित हो चुकी हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देकर भी हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर रहे हैं। साथियों, हमारे ये प्रयास कितने व्यापक है इसका एक उदाहरण भारत का फॉरेस्ट कवरेज भी है। ये भी मैं वकील मित्रों के लिए बताता हूं, बीते 12 वर्षों में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर 22% से ज्यादा बढ़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत भी देश में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं और ये अभियान निरंतर जारी है। साथियों, पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती प्लास्टिक वेस्ट की भी रही है और इसलिए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। हमने रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। आज भारत में हर रोज हजारों टन वेस्ट को रिसाइकल किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के माध्यम से गांवों में गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि वेस्ट को समस्या न मानकर उसे वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर एक रिसोर्स में बदला गया है। साथियों, ये सारे के सारे आंकड़े केवल भारत के विकास के आंकड़े नहीं है, ये मानवता के भविष्य के लिए भारत के योगदान के आंकड़े हैं। साथियों, हमारा सांस्कृतिक विचार है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीव्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है और हम इसकी संतान है। इसी सोच के साथ भारत भी एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले डिस्कशंस, उससे जो नए विचार नए समाधान सामने आएंगे, वो हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संबल बनकर के निकलेंगे। एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: That, ladies and gentlemen, is India under the leadership of Honorable Prime Minister Modi, translating and honoring every commitment of its on ground and
0: was
3: working towards
0: the Prime Minister's address a big push toward sustainability, energy conservation, and what exactly are we to do in terms of finding solutions to climate change, which is emerging as a bigger challenge for not just India, but for the rest of the world. In fact, the particular summit that the particular event that he was speaking at was and is a two-day international conference on the future of environment and climate dynamics, where we will be seeing such important conversations take place. And this was just a kickstart to that very event that will take place over the next 48 hours, right in the heart of the national capital. On that note, we're wrapping up the bulletin right here this hour, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates on all the top stories.
4: You are watching India Today.

आज ये कॉम्बो एक पूरा मिला हुआ देखा, जिसमें पंजाब सरकार भगवंत मान घबराया हुआ और एक शराबी सीएम जो देसी पीता था, आजकल मुझे पता लगा है वो बाहर का ब्रांड आता है जिसमें ऊपर टल्ली बजती है, वो टल्ली वाली शराब पी के ये टल्ली रहता है और ऐसे हुक्म देता है, और इसकी वाइफ और इसकी बहन लूटने का काम कर रहे हैं, कई चीजें केजरीवाल जैसे। आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। ये लूटपाट का पैसा है जी, ज्यादा हदम नहीं होगा भगवंत मान। याद रखना जो आज तुमने शुरुआत की है ना, तेरे को जहां से तू निकला है उसी जगह अंदर छोड़ के आऊंगा।

आज ये कॉम्बो एक पूरा मिला हुआ देखा, जिसमें पंजाब सरकार भगवंत मान घबराया हुआ और एक शराबी सीएम जो देसी पीता था, आजकल मुझे पता लगा है वो बाहर का ब्रांड आता है जिसमें ऊपर टल्ली बजती है, वो टल्ली वाली शराब पी के ये टल्ली रहता है और ऐसे हुक्म देता है, और इसकी वाइफ और इसकी बहन लूटने का काम कर रहे हैं कई चीजें केजरीवाल जैसे। आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। ये लूटपाट का पैसा है, ये ज्यादा हदम नहीं होगा भगवंत मान। याद रखना जो आज तुमने शुरुआत की है ना, तेरे को जहां से तू निकला है उसी जगह अंदर छोड़ के आऊंगा।

0: Hanuman Ansh is now the third highest grossing Bollywood film worldwide in 2026.
1: और इतनी दोपहर हो गई, खाना कहाँ नहीं खाए हो?
2: अभी सोकर उठे हैं, रात भर नींद नहीं आती.
3: जब दिन भर सोते रहोगे तो रात में नींद आते.
0: The timing of the achievement makes it even more striking.
4: वो आदमी नहीं, भूत है.
5: कौन आदमी?
6: मुझे तो अंतर्यामी लगता है.
7: खबरी भी तो हो सकता है.
6: तुम यहीं पर रुको और देखना कि पुलिस यहाँ पर आती है या नहीं.
8: ड्राइवर ने बहुत कोशिश की साहब. अरे चलना तो छोड़िए साहब, गाड़ी हिली तक नहीं. एक बाबा को उतार दिया है.
0: Mirzapur, the movie, opened strongly, benefiting from the enormous popularity of the Prime Video series and had already crossed 200 crore in India within its first 11 days. Hanuman Ansh, meanwhile, has followed almost the opposite trajectory. The film opened to just 10 lakh, but built momentum over the weeks through strong word of mouth. Instead of collapsing after the initial theatrical period, it has continued to find audiences and now has overtaken a much bigger release that arrived only 11 days

0: मेरा नाम राजन हांडा है और मैं MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इज द एक्सक्लूसिव पार्टनर टू मैन एंड हमल जर्मनी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड सर्विसिंग ऑफ देयर एयर फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया। मैन एंड हमल एक 85 साल पुरानी जर्मन MNC है जो 80 विदेशों से भी ज़्यादा में इस समय काम कर रही है। एयर पोल्यूशन इज नाउ एक्चुअली द प्राइस दैट वी पे फॉर डेवलपमेंट। जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो रोड बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, मेट्रो है, कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, रेजिडेंसेस बन रही हैं, ये सब पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। द फैक्ट इज दैट वी आर डूइंग दिस कैंपेन इज रियली रियली रिमार्केबल बिकॉज वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इट इज जस्ट नॉट द गवर्नमेंट विच हैज़ टू डू दिस, इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन where we all must be aware of the consequences of pollution and b how we can mitigate those risks. ye jo product aap mere piche dekh rahe ho isko filter cube bolte hain, ye forced air circulation ke technology se istemal kiya jata hai, isme hawa aati hai force ki jati hai, jo heart koi bhi equipment ka hai wo filters, aur Mann & Hummel ke paas jo filters ki technology hai, jo filters kis tarike se ban sakte hain from media to their coating to their layering is all the technology they have developed over 85 years and not only developed they have also tested it across the globe. to ye jo technology hai koi nayi nahi hai jo ki bahar ki hawa ko saaf karti hai, ye road ki dust ko dekhti hai, smoke ko dekhti hai, uske ilawa kuch jo gases hain jaise NO2 hai ya SO2 hai jo ki harmful hoti hain, ye usko bhi capture karti hai. aur ye technology IIT Delhi ne bhi validate kari hai और ये तब करी है जब 2 महीने सितंबर से नवंबर तक 2024 में इन द पीक पोल्यूशन पीरियड हमने एक स्कूल जो IIT का अंदर है प्रमाइसेस में उसको पूरा प्योर अपने इक्विपमेंट लगाया था और पूरे के पूरे हवा को साफ किया था। 60-70% की रिडक्शन आ जाती है इससे, जिससे कि एक नॉर्मल सिटीजन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सारा सामान जो इसके अंदर लगता है वो चाहे इंजीनियर जर्मनी में हुआ है लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा है, असेंबल इंडिया में हो रहा है, इससे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत रीजनेबल हो जाती है और इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और सर्विसिंग भी बहुत बढ़िया हो जाती है। देयर इज़ नो एक्सपेरिमेंटेशन गोइंग ऑन, देयर इज़ नो सच थिंग दैट वी हैव कम अप विद अ न्यू इनोवेशन, वी कैनॉट अफोर्ड अ न्यू इनोवेशन, वी आर फाइटिंग अ वेरी वेरी रियल प्रॉब्लम एंड वी हैव टू एड्रेस द रियल प्रॉब्लम बाय द रियल सोल्यूशन विच विल बी In my opinion, this is not an exercise that you could carry for scientific development. It is an exercise that you have to carry keeping the health of the citizens in mind.
1: I am Priyanka Manocha, founding team of MRH Technologies Private Limited. And on my right is Pranav Kaushik from our partner company, Mann and Hummel. And he is Steven, another employee colleague from Mann and Hummel. So together we bring to you the pollution ka solution that you see behind us, which is called as Filter Cube. Mother of a 9-year-old daughter, and she is today living in Delhi and smoking equivalent to 80 cigarettes a day. Mere bacche ka school band ho jata hai jab pollution badh jata hai. Most of the time usko ghar pe apna padhai karna hota hai aur ye jo uske early learning years hai jo uske shape kar rahe hai personality mein, उस वजह से उसको अपना घर पे अधिकतर टाइम बिताना होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टुडे व्हेन आई स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ यू, आई मे अपीयर टू यू एज अ यंग पर्सन, बट माय इनर हेल्थ टुडे हैज डिटेरियोरेटेड टू अ लेवल दैट आई हैव लॉस्ट 12 इयर्स ऑफ माय लाइफ।
2: इस एक मशीन से जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 17,500 मीटर क्यूब ऑफ क्लीन एयर एवरी आवर डिलीवर करते हैं। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट इन लीटर्स और इफ आई वॉन्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ इट, एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जितनी हवा भर सकती है उतनी हवा हर घंटे ये एक मशीन क्लीन करके एरिया में डालती है। तो ऐसी मल्टीपल मशीन से अब हम यूज करते हैं। सो वॉट वी ट्राई टू डू एक हम एक क्लीन एयर जोन क्रिएट करते हैं उस एरिया के लिए, ताकि वहां का जो लोकलाइज पोल्यूशन है वो लोगों के ब्रीदेबल लिमिट्स में आ जाए।
3: ये डिवाइस इतनी इंटेलिजेंट है, जब बारिश होती है दिस डिवाइस स्विचेस ऑफ, मीनिंग व्हेन इट रेन्स वी डोंट वांट द एयर प्यूरिफायर्स टू बी वर्किंग, सो द डिवाइस स्विचेस ऑफ ऑन इट्स इटसेल्फ व्हेन इट्स रेन्स, एंड ऑल्सो व्हेन द रेन स्टॉप्स द डिवाइस स्विचेस ऑन इट्स ओन। ये डिवाइस में कई सारे ऑप्शन है, लाइक वी ऑल्सो हैव अ नाइट मोड, मीनिंग एट नाइट व्हेन वी डोंट हैव एनी डेंस पॉपुलेशन अराउंड वी कैन ब्रिंग डाउन द speed of the fan to around minimal, where we don't need much clean air coming out of the system. ये भी है, it does all on its own. And also अपने पास एक centralized dashboard रहेगा, meaning when we have 100 installations at different places, Connaught Place A block, B block, C block, कई सारी area में हम लगा सकते हैं, तब हम एक area में कैसा perform कर रहा है उसका भी dashboard हम दे सकते हैं. We can give your data on every product level, zone level and also as a city level.
4: Delhi's ambient air remains unhealthy for large parts of the year, with consequences that go beyond just what we breathe. The question therefore is whether we can find solutions that work throughout the year, particularly at pollution hotspots where people are exposed to higher concentrations. Rajiv Channan, an innovator based in Gurugram, claims to have developed a technology designed for year-round use. The idea is simple: identify where exposure is highest and intervene there. But how does the technology work, and can it make a meaningful difference to the air we breathe?

0: मेरा नाम राजीव चानन है और मैं फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ह्यूमेंडस टेक्नोलॉजीज का, जो 2018 में हम लोगों ने फॉर्म की थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट। तो दिल्ली का 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, करीब 1,00,000 लीटर पेट्रोल, डीजल और CNG एवरी डे कंज्यूम होता है। तो जनरली दिल्ली की डायमेंशन इज वेरी बिग इफ यू लुक इट फ्रॉम पोल्यूशन स्टैंड पॉइंट। तो नॉट ओनली कंट्रोलिंग AQI बट कंट्रोलिंग एक्सपोजर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इन इफेक्ट दिल्ली रिक्वायर इन अवर ओपिनियन ए परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन विच इज कमिंग। तो हम लोगों की टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एक्सपोजर रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी थ्रस्ट, न्यू पॉलिसीज आर वेरी गुड टू कंट्रोल ओवरऑल एम्बियंट टू रिड्यूस पोल्यूशन। APS स्टैंड फॉर एम्बियंट प्योरिफिकेशन सिस्टम। इट इज पार्टली मेंट फॉर पार्टिकुलेट मैटर। An idea behind this is that we are supposed to make a system and technology for outdoor where you install it once and it should continue to run without any attention intervention for 15-20 years. Because the minute you put something in outdoor, it has to be sustainable and it should not require frequent attention. And we designed the storage capacity to be roughly 3-5 years so that nobody needs to go in and service the equipment, you know, every now and then. It would once required in 1 in 3 year or 1 in 5 year. And then particulate matter, safe disposal of the material. So we still need to figure out what does it contain. It may contain many other particles, many other elements which may not be, good for human health. So it has to be disposed. So idea behind was that we should reduce exposure to the people and hence the machine should come closer to the people. Wherever in outdoor there are large people like ISBT, railway station, marketplaces, we should bring equipment closer to the people, reduce their exposure. APS mein kisi bhi tarah ka koi bhi filter nahi hai. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आउटडोर में जो सबसे बड़ी समस्या आती है फिल्टर की, कि वो ये 2 या 3 दिन में चोक हो जाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस एयर डिलीवरी कम हो जाती है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 15 साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है सभी पोल्यूशन लेवल पे और सभी वेदर कंडीशन में। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बारिश में इसकी परफॉर्मेंस कम हो गई या समर में बढ़ गई या विंटर में बढ़ गई या कम हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रिंसिपल हम लोगों ने यूज किया वो बेसिक फिजिक्स का प्रिंसिपल था कि आपका जो पार्टिकुलेट मैटर होता है दैट इज हैवियर देन एयर मॉलिक्यूल्स। तो आप इसमें एयर सक करते हैं इन ए पर्टिकुलर वेलोसिटी विद ए पर्टिकुलर एंगल सो दैट जो हैवियर मेटल होते हैं, हैवियर पार्टिकल होते हैं PM2.5 एंड PM10, they cannot travel the path of the air being taken into the system. So they tend to get separated from the balance air. So ये इसका और वो agglomerate भी होते हैं। तो इसमें जो हम लोगों ने wind tunnel design की है उसमें दो aspect होते हैं, एक तो वो agglomerate करती है और दूसरा उन heavy particle की velocity को reduce करती जाती है और एक जगह पे आके उसकी velocity zero हो जाती है, वो अपने आप settle हो जाते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है जिसमें हैवी पार्टिकल को बिना किसी फिल्टर के हम सेपरेट कर पाते हैं।
1: Now imagine if the vehicles on Delhi's roads could do more than just transport us. What if instead of only adding to the pollution around them, they could actually help clean the air? A Delhi-based NGO, Shuddh Vayu, is working on a device that it says can be installed on the roof of a car and used to reduce particulate pollution around it. The organization claims its system is detachable and can be installed or removed in about 60 seconds. So could a car become more than just another source of emissions and actually become a moving air cleaning unit?
2: मेरा नाम संजीव कुमार यादव है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ और मैं शुद्ध वायु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में एज ए टेक्नोलॉजी हेड एंड फाउंडिंग मेंबर मैं इसमें काम कर रहा हूँ।
3: आई एम दीप्ति भटनागर, आई एम बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम अ को फाउंडर ऑफ शुद्ध वायु टेक्नोलॉजीज। Me and my team, headed by Mr. Amit Bhatnagar, who is an ex-IITian, we are working for air pollution problem.
2: जब हमने शुद्ध वायु व्हीकल माउंटेड एयर प्यूरिफायर पे काम करना शुरू किया तो हमारे ध्यान में यही था कि हमें एक डिप्लॉयबल, एक फिजिबल और एक स्केलेबल सोल्यूशन पे काम करें। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये डेवलप किया है जो कि बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी, बिना किसी बिजली के और बिना किसी परमानेंट स्ट्रक्चरल या किसी भी फिटिंग के ये रेट्रोफिट डिवाइस हमने बनाया है जो कि गाड़ी के ऊपर आप खुद से लगा सकते हैं और खुद से उतार सकते हैं। जब दिल्ली में पॉल्यूशन है तो उस टाइम पर आप खुद से लगा सकते हैं, जब पॉल्यूशन नहीं है तो आप उतार के अपने स्टोर में रख सकते हैं जो कि हार्डली एक 1 square feet का स्पेस लेगा। कि हमने पायलट किया था गुरुग्राम म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 50 कार्स पे हमने इसको लगाया था। जो अगर BS4 व्हीकल की बात कर रहे हैं तो उसका जो PM एमिशन नॉर्म होता है वो 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर होता है और हमारा डिवाइस जो है वो 50 मिलीग्राम पर किलोमीटर कैप्चर कर रहा है। तो कहने का मतलब जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि व्हीकल पॉल्यूशन फैलाता है, व्हीकल पॉल्यूटर है, लेकिन विद द शुद्ध वायु डिवाइस व्हीकल एक नेट एयर प्यूरिफायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब हम केवल व्हीकुलर एमिशन को टारगेट नहीं कर रहे, हम किसी भी सोर्स से पॉल्यूशन हो रहा हो, क्योंकि दिल्ली में व्हीकल से पॉल्यूशन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली 20% है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद रोड डस्ट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल बर्निंग है, उसके बाद रेसिडेंशियल बर्निंग है। तो सब मिला के तो हम लोग सबको टारगेट कर रहे हैं, केवल व्हीकुलर एमिशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो हम कहने का मतलब यही है कि एक पॉल्यूटर को हम एयर प्यूरिफायर में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि दिल्ली के लिए बहुत कारगर हो सकता है।
3: टेक्नोलॉजी में हम कोई भी फैन, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर, बैटरी कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। ये जो ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में एयर प्रेशर, एयर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, जब गाड़ी चलती है तो अगर इवन वो गाड़ी 40 की स्पीड से भी चल रही है तब भी अगर आप अपना हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको एयर प्रेशर फील होगा। तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वो एयर प्रेशर अवेलेबल है, तो उसी प्रिंसिपल को यूज करके हमने ये एयर फिल्टर इनोवेट किया है। इसको जस्ट गाड़ी के ऊपर लगाना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। उसी एयर प्रेशर से एयर अंदर जाती है, कार्बन पार्टिकल्स को कैप्चर करती है, जिसमें डस्ट प्री फिल्टर भी लगाया हुआ है जिसमें जो लार्जर पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर किया जाता है। मेन फिल्टर में जब एयर आती है तो PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स जो सबसे ज्यादा हजार्डस हैं उनको कैप्चर करती है और क्लीन एयर बाहर निकलती है।
2: जब व्हीकल से एसोसिएटेड कोई भी सॉल्यूशन आता है या टेक्नोलॉजी आती है तो व्हीकल ओनर्स अपनी व्हीकल से इमोशनली अटैच हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ उसमें फिट करने से 10 बार सोचते हैं। तो हमने उस सोच के साथ इसको डेवलप किया है कि इसमें हमने ऐसा प्रोविजन रखा है बॉटम में अपने डिवाइस के कि ये एक सिंगल स्क्रैच, एक सिंगल पिन भी गाड़ी के छत पे, कोई एक सिंगल, हम ना तो कोई छेद कर रहे हैं, ना कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं फिटिंग के लिए, ना तो इससे कोई हम स्क्रैच आने का कोई भी उसमें चांस रख रहे हैं।
3: इट इज सेल्फ इंस्टॉलेबल, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे लेडी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई भी इसको लगा सकता है। और ये एम्बिएंट एयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सॉल्यूशन जो है वो स्टैटिक है, ये हम एग्जिस्टिंग जो गाड़ियां ऑलरेडी रोड पे चल रही है हम उन गाड़ियों को एयर प्यूरिफायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी नोवल एंड बिगर इनोवेशन देन एनी अदर अवेलेबल टेक्नोलॉजी।
2: अप्रोक्सीमेटली हम लोग 7000 रुपीज का जो कॉस्टिंग है वो हम लोगों कर रहे हैं और हम टारगेट जो कर रहे हैं कि जो हम इसको दूर करने के लिए हम सेल प्राइस जिसको बोल सकते हैं या जो भी, तो वो अप्रोक्सीमेटली हम 10K के आसपास अभी रखते हैं, क्योंकि इसके साइजेज वेरी करते हैं गाड़ी के साइज के हिसाब से। तो हम इसको 8000 में, 10000 में और 12000 में अभी कार्स के लिए रखे हुए हैं और बसेस में हम अप्रोक्सीमेटली इसको 22,000 का अभी कर रहे हैं।
3: जब मूविंग होगा तो लोगों में अवेयरनेस आएगी, और पॉल्यूशन इज समथिंग जो लोगों की हेल्थ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है और लोगों को अभी रियलाइज नहीं है, तो उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भी ये सॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि गाड़ियों में लगे और लोगों तक पहुंचे।
2: अगर दिल्ली की एयर को साफ करना है तो हमें एक डेमोक्रेटिक और एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन पे जाना होगा।
1: But when we talk about a solution to pollution, there is another question we need to ask. Is it sustainable? Because a solution cannot simply solve one problem by creating another. And that brings us to our final innovation. Aerobos, alongside with IIT Kanpur, has developed what it calls a wind panel, a rooftop filtration technology designed to clean air while a vehicle is moving. But there is another element to it. The system combines air filtration with renewable energy generation using both a solar film and a wind turbine. So can one technology potentially tackle pollution exposure while also generating clean energy?
2: Mera naam Gangesh hai. By profession, I am a chartered engineer. I've done my master's in energy and power from University of Liverpool. I've been born and brought up in Delhi. So, yahan ki pollution ki problem se to main bachpan se hi dekhta hua aa raha hu. Isko solution, isko theek karne ke liye aage wali generation ko ek hawa, saaf hawa dene ke liye humne ek solution banaya jiska naam hai wind panel. ये आइडिया मेरे को अपनी मास्टर्स करते टाइम, व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन यूनिवर्सिटी लिवरपूल, वहाँ से पढ़ते समय ये आइडिया आया कि बसेस के ऊपर भी एक ऐसा प्रोडक्ट लगा सकते हैं जिससे सिटी का पोल्यूशन साफ हो। मैंने और मेरे को फाउंडर अक्षांश ने साथ में मिलके पिछले 6-7 साल से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं हम।
4: दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पास विद्युत एक चैलेंज है, लैंड एक चैलेंज है, वहाँ हम ना विद्युत यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग विद्युत बना रहे हैं जो फिल्टर को सप्लाई दे रहा है, और लैंड जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो भी यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा डिवाइस पूरा का पूरा मोबाइल माउंटिंग है जो कि बस के रूफटॉप के ऊपर लगा हुआ है।
2: इट इज़ अ रेट्रोफिटेड डिवाइस, तो बस पे हम लोग ये प्रोडक्ट अपना प्लेस करते हैं, और मेंटेनेंस के लिए हम लोग को इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स हैं जिससे हम लोग ब्रश से साफ कर सकते हैं। इसमें कोई फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कोई मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग को 2-3 हफ्ते में एक बार ब्रश से इसके फिल्टर साफ करने पड़ते हैं, और ये प्रॉपर से अगले जर्नी के लिए तैयार हो जाती है बस साफ करने के लिए। ये प्रोडक्ट लगभग 2-5 लाख m³ ऑफ एयर एक दिन में साफ कर सकता है, और उसके साथ साथ अराउंड 2-3 kW ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, जो कि एक प्रोडक्ट क्षमता रखता है 5 सोलर पैनल के। अगर हम बराबरी से कंपेयर करें तो 5 सोलर पैनल 1 विंड पैनल के बराबर में आता है। अभी तो सिर्फ 2-3 बसेस पे अभी बहुत लिमिटेड पायलट स्कोप में लगा है। मेरी दिल्ली गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये प्रोडक्ट स्केल पे 5,000-10,000 जितनी भी बसेज हैं दिल्ली में सब पे लगे, ताकि पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करें और इस पोल्यूशन के सोल्यूशन को हम जल्द से इम्प्लीमेंट करें बसेस पे।
1: That's all for this hour. Keep watching India Today for more news and updates.

हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: ये साइड में से बहुत जोर जोर से ले गए कई बार, ये 22-23 दिन से टूटे। इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाई? मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया, लेकिन आप बार बार मैंने कि हमारे हमें टीच मत करो।
1: तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद से पी रखी है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं।
2: वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था।
3: शिवानी चौहान, ऑल्सो नोन एज सिया, वॉज चेस्ड एंड हिट बाय मेन इन अ कार and left sprawled on a busy road in a city also called the Millennium City, Gurugram. She was hit on Gurugram's Golf Coast Road, a posh area that boasts one of the costliest real estate in the country. But what does all that money get you in this country? Not even a shred of a feeling of being safe. Imagine how Shivani felt during those moments when she was hit by that car. Her head bangs against the car after being hit, but as astute bikers do, she's wearing a safe helmet. But she still knows that there is a danger of coming under the rear wheel of that offending car. That would mean instant death. But she's lucky that day. Ironical to say it, but yes, lucky. As she was saved from sure death, and she rolls down the road as the car speeds away. Imagine the impact of that hit. A bike that lost the hand on accelerator but had so much momentum that it kept skidding on the road for almost 70 to 100 meters. Now let's flash back to a few minutes before the hit. It was September 13th. Sia was out riding with other bikers on Golf Course Road. According to her account, she first noticed the white sedan behind her. She says there were people inside, the windows were dark, and she suspected the occupants might have been drinking. Then she says the car began coming close to her motorcycle. Not once, repeatedly, she tried to move ahead. Her logic was simple. Put some traffic between herself and the car. She wasn't racing. She wasn't looking for trouble. And then another rider noticed what's happening. He moved behind Sia. He tried to shield her motorcycle from the sedan. The footage from the rider's cameras would later become the most important piece of evidence for this case. There was a witness, a camera. According to Sia, the occupants of the car were making gestures at her. At one point, she says, the windows came down. She could not clearly hear what was being said because she was wearing a helmet. But she says she repeatedly asked them to move away. They did not. Her account is that the car continued following her. And that was when fear became something more immediate. Not the fear of being fined, not the fear of a traffic accident, the fear that someone in a much heavier vehicle might deliberately knock her off a motorcycle. Now, for many women who drive or ride on Indian roads, the danger is not always the traffic itself. Sometimes it is the behavior of the person behind the wheel. The intimidation, the unwanted attention, the aggressive overtaking, the vehicle deliberately coming too close, and the mental calculation women are often forced to make. Do I confront this person or do I just get away? Sia chose to get away. At least she says she tried. But she failed. Now you see that the road bends, traffic moves, Sia shifts towards the third lane. And according to her account, the sedan suddenly comes across. The video captures that moment. The car changes lanes. It hits the motorcycle. Sia falls the motorcycle continues sliding across the road. Now, another biker, whose helmet camera had captured the incident, goes after the car. At one point, the sedan stops at a traffic signal. There is a confrontation, and then the car leaves again. CI is taken to the hospital. The video is uploaded. And within hours, the incident is no longer just a traffic story. It is everywhere.
4: रात को भी काफी पेन रही है सिया के, क्योंकि चोट लगने के बाद बाद में पता चलता है कि कहां कहां चोट लगी हुई है, गुम चोट उसकी आई हुई है काफी, और अभी वो कुछ देर के बाद यहीं पे दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में होली फैमिलीज में जाकर अपना जो भी एक्सरे हैं, एमआरआई है, जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाई है.
3: गुरुग्राम पुलिस took suo motu cognizance of the viral videos and registered a case against an unidentified person.
5: हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा एक वीडियो को इंटरसेप्ट किया गया जिसके अंदर एक टू व्हीलर जो महिला जो राइडर है उसके ऊपर फोर व्हीलर पीछे से एक गाड़ी के द्वारा हिट किया गया है. गोल्फ कोर्स रोड का यह मामला है और इसी के अंदर जो है कंसर्न महिला से अभी गुरुग्राम पुलिस द्वारा संपर्क साधा गया और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 गुरुग्राम में हमने एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर ली गई.
3: थ्री टीम्स वर फॉर्मड. सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द एरिया वाज एग्जामिन्ड. इन्वेस्टिगेटर्स बिगन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द ड्राइवर एंड सून दे हैड अ नेम, कल्याण बैसला. बट बैसला वाजंट एट हिज होम. द सर्च अपेरेंटली वाज वाइडेड एंड देन अनदर क्वेश्चन इमर्ज्ड. Whose car was it? The registered owner, identified by India Today, said he was serving in the army and was out of town. He said he had given the car to a school friend for 2 days. That friend was Kalyan Baisla. Then, according to the owner's account, Baisla told him that another person had taken the vehicle. The owner said he barely even knew that person.
6: Our brother's car is in the army. और उसका दोस्त मांग कर ले गया. लड़के ने फोन किया था हमारे पास, इसको गाड़ी दे देना, कल्याण बैसला टीकरी गुजर का. अब वो ले गया, उसने एक्सीडेंट कर दिया. हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हम उसकी नहीं, हमारी गाड़ी आई अभी नहीं, वो मिल रहा हमें.
5: पुलिस भी आई थी?
6: हाँ, पुलिस भी आई थी, वो भी नंबर वंबर ले गई.
3: So the investigators were now looking at a chain of possession. Who had the car? Who was driving? Who else was inside the car? And who knew what? The answers mattered because this was no longer simply about ownership of the vehicle. It was about reconstructing what happened in those few seconds on Golf Course Road. Then the accused decided to turn the blame finger towards the victim herself. Baisla gave a very different account. He denied deliberately hitting Sia. His version was that there were numerous bikers on the road and that they were repeatedly changing speeds and slowing down and that the situation had escalated. He questioned the videos circulating online. He said the footage did not show the entire sequence. And he claimed he had not even known that the rider he collided with was a woman. He described the collision as completely accidental.
0: ये साइड में से बहुत जोर जोर से लेके कई बार फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, ठीक है, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं, मैंने कहा रैंडम. मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी इसमें. ये 22-23 दिन थे टोटल. इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाई? मैंने बोला कि अच्छा है, बढ़िया, लेकिन आप बार बार, मैंने कि हमारे, हमें टीज मत करो, बार बार टीज मत करो, लग जाएगी. अच्छा जी, ठीक है. फिर मैंने कहा जाने दे. फिर वो, फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था तो वो मेरे आगे कैसे आई, आप सोचो ना. जब मैं यूँ कह रहे थे कि निकल गया था बेस, आप वीडियो में देखना, मैं निकल गया. अच्छा, फिर आगे आगे चलो कोई नहीं. वो मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैं पीछे से आया हूँ यूँ, ठीक है. इधर आप देखो टाटा की है, कौन सी गाड़ी है साइड में, उसको ठोक देता, उसके पीछे बाइक, उनको ठोक देता. अच्छा सुनो, आप इनको देखना, मैं जो मैं मेरे, ठीक है. इन्होंने बिना देखे, शीशे में देखे, आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हो, उस साइड वाली सफेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी, मैंने जैसे आगे बढ़े वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने पे लग रहे हैं, मैं 22 जने मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे, फिर भी मैंने बत्ती पे रोकी, मैंने शीशा डाउन किया, मैं शीशा डाउन ही नहीं करता इस बात, मैंने उससे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है।
3: But Sia rejected that explanation. Her response was equally direct. If the collision was accidental, why did he not stop? Why did he not get out of the car? Why did he not check whether she was alive? Why did the car just simply leave? And then she challenged another part of his account. She said the driver had seen her, had followed her, had gestured to her, and according to her, had even noticed that she was a woman.
1: तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद से पी रखी है और उसमें पीछे भी दो लोग हैं क्योंकि इस गाड़ी के शीशे सारे काले थे, वो एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में, अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आसपास लेके आ रहे हैं, तो मुझे डर था कि टक्कर मार के मुझे गिराना थी, इसी चीज को देख के कि मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, तीन चार गाड़ियां हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पीछे हो जाएंगे, पर वो हर एक पूरी पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी मेरे बाइक के पीछे लगा के रखे। और जब वो कट आया और मैं वहाँ बीच में एक गाड़ी आई, मैं वहाँ साइड में हुई थर्ड लेन में, तो उसमें दिख रहा कि गाड़ी कितनी तेजी से नीचे आ रही, जब वो कट मारती है उसकी टायर की तक की आवाज आती है और वो ठोक के निकल जाते हैं। तो ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है गोल्फ कोर्स रोड पे, तो मतलब बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, बहुत ज्यादा स्कैरी है ये हर एक फीमेल बाइकर के लिए और हर एक उन लोगों के लिए जो संडे राइड करते हैं जो बाइक पे।
3: There are now two crucial visual records of that incident. One from the action camera mounted on Sia's superbike. Another from a fellow rider's helmet camera. Sia says both show the same essential sequence. The car moves across lanes. The motorcycle is deliberately hit. She is thrown off. The car leaves. Her argument is that the footage speaks for itself. Besla, on the other hand, has argued that the viral clips don't provide the complete context. That dispute will ultimately have to be tested against the full evidence, including CCTV, the original footage, and witness accounts. But the video changed the investigation because this was not simply one driver's word against another. There was a full digital trail.
0: ये साइड में से बहुत जोर जोर से लेके कई बार फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, पिंच कर रहे थे, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं मैंने कर रहे, मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी इसमें, ये 22-23 जने थे टोटल, इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाई, दो क्यों दिखा रहे, अब दूसरा दिखाया नहीं, वो फ्रेंड कौन सा है, दिखाओ ना उसको फ्रेंड को, नाम लो उसका, ये मेरा फ्रेंड था साथ में।
1: इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और हम इनको पिंच कर रहे थे, वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें, और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने ऑब्वियसली, मेरे बाल पीछे बहुत लंबे बाल है, मेरी चोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला, एंड उसके बाद कह रहे हैं कि 22-23 लोग थे और वो दो वीडियो भी क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए। मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए क्या दो वीडियो इनफ नहीं है।
3: इनिशियली द केस डिड नॉट कैरी एन अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज, बट आफ्टर एनालाइजिंग द फुटेज एंड रिकॉर्डिंग सिया स्टेटमेंट,
1: मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था।
3: Gurugram Police added Section 109 of the Bharatiya Nyaya Sahita, which is attempt to murder. Sections 78 and 79 of the BNS were also added following her statement relating to stalking and words, gestures or acts intended to insult the modesty of a woman. Police said that the CCTV analysis indicated that the car was driven into the motorcycle deliberately.
7: ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की।
4: उन्होंने ऑलरेडी एक FIR उनको उसके ऊपर मीडिया के प्रभाव में आके कर रखी थी, पर उसके अंदर जो धाराएं थी वो इतनी कम्फर्टेबल धाराएं नहीं थी, और हमने अपनी एप्लीकेशन दी है जिसके अंदर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है इस पर हिट एंड रन अटेम्प्ट टू मर्डर और हरासमेंट वाली आप इस पर धारा लगाइए।
3: That changed the legal character of the case dramatically, from a suspected hit and run to an investigation that included an allegation of an intentional attempt to kill.
8: आरोपी जैसे चार बताए गए हैं और एक को तो अरेस्ट कर लिया गया है, वो इंसिडेंट हुआ था वो पूरा कैप्चर्ड है कैमरे में, जिस तरीके से मारा गया है वो कोई हिट एंड रन का नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, वही चार्जेस लगाए गए हैं, 354 लगाई गई है, 509 लगाए गए, पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा दी गई है पेंडेंट पर।
3: बट बाय देन बेंसला वाज एब्सकॉन्डिंग, हिज फोन वाज स्विच्ड ऑफ, पुलिस टीम्स बिगन सर्चिंग फॉर हिम, द हंट मूव्ड बियॉन्ड गुरुग्राम एंड इवेंचुअली investigators traced him in Rajasthan. But by then, the time to do any kind of alcohol test in the blood was gone. On September 15th, crime branch Sohna teams arrested Bensla between Dausa and Rajgarh.
9: Sohna se SI aur head constable ki senior team aayi thi, unke dwara जो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे थे उसके संबंध में उनके द्वारा यहाँ थाने पर अभी आकर ये सूचित किया गया था कि हमारे द्वारा आगरा रोड से जो कथित जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था आरोपीगढ़ थे जो उनके, जिसमें आपके कल्याण वैंसला और लवनीश को उन्होंने यहाँ से डिटेन करके, जिस डिटेन करने के बाद जो हमें सूचना दी थी उसके बाद डिटेन करके उनको वो गुरुग्राम लेकर गए।
7: देखिए पुलिस ने अपने दो दिन का पुलिस कस्टडी का रिमांड मांगा है, इसमें उनका कहना है कि कुछ हमें को एक्यूज के बारे में जानकारी लेनी है, उसलिए पुलिस ने रिमांड सीख किया है और पुलिस अपना सीन रिक्रिएट करना चाहती है क्राइम सीन को, वो अपना उनका प्रोसीजर है। अभी हमने उसको अपोज भी किया है, उस पर आर्ग्यूमेंट किया है, रिमांड में बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि उन्होंने 307/109 बिजनेस लगाई है, उसके लगाया क्योंकि वो बहुत लेटर ऑन एडिट हुई है और बहुत सारी चीजें उन्होंने कोर्ट में उसमें हमने अपोज किया है, वो सारी चीजें ऑर्डर में आ जाएंगी।
3: The car allegedly used in the incident was recovered. Another man, identified as Lavnish, was also taken into custody. Even the arrest came with its own twist. According to police, after being apprehended, Besla asked to go to the toilet. Police allege that he then tried to escape. He fell while attempting to flee and suffered injuries. Taken to the hospital for initial treatment. The man who had allegedly disappeared after the crash was finally in police custody, but a little bit too late. The investigation wasn't yet over because now there was another question. Who else was in that car? In a later statement, Sia said there were two other people inside the car. She has demanded action against those people as well. She told the media that arresting Bensla alone would not be enough if others who were present were allowed to walk away.
10: मैंने बता दिया है चार लोग थे, एक्शन लेने के लिए बोल दिया हो तो आई होप पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी एक्शन लेने। और दो थे आगे जो तीस कर रहे थे और बाकी जो चार लोग टोटल थे कार्रवाई।
3: The police investigation will have to establish exactly who was inside the vehicle and what role, if any, each person played. There is another reason this case has resonated so strongly. Sia is a biker and she is a woman. Those two facts have collided in a way that has made thousands of women ask a very basic question. How safe are India's roads for women?
11: ये पूरा का पूरा एकदम मेल ईगो के उसके ऊपर है, जैसे कि कोई भी अगर गाड़ी चलाता है और महिला ड्राइवर को देखता है बाइक, वो भी बाइक राइड करते हुए, क्यों बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में एक वुमेन बाइक राइड कर रही है, तो उनको ये दिखता है कि वो थोड़ा उनको स्टाइल वगैरह दिखाए और गाड़ी वो शीशा नीचे करके थम्स अप कर दिखा रहे हैं। अब बाइकर जो होते हैं वो यूजुअली दिखाते थम्स बैक करते हैं, फिर उसके बाद भी अगर आप उनके साथ वो लगे हुए हो वो कह रहे डिस्टेंस मेंटेन करो, उसके बाद वो स्लैम करके जा रहे पूरा, तो मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है और जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन उठेगा।
3: Sia told Aashtak that she had been riding for around a year. She doesn't belong to a large formal riding club. Sometimes she rides with her cousin. Sometimes she rides alone.
1: See, मेरा कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, मैं कभी अकेले भी जाती हूँ, मेरा एक कजन ब्रदर है उसके पास भी है, कभी मैं उनके साथ जाती हूँ, तो मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलरली ग्रुप नहीं है और मैं ये एक साल से कर रही हूँ बाइकिंग।
3: She describes the women's riding community as relatively small. And now, after this incident, she says she will ride again. But she will be scared.
1: मैं बाइक तो चला पाऊंगी पर मुझे डर लगेगा कि मैं अकेले जाऊंगी।
12: अकेले जाओ, ग्रुप में जाने में डर लगेगा।
1: ग्रुप में क्या, मुझे गुड़गांव दिल्ली के रोड पे ही जाने में डर लगेगा।
3: The physical injuries may heal. The legal case may move through the courts. The accused may face trial, but what happens to the confidence of someone who now looks into her rearview mirror and wonders, is that car simply passing me or following me? Indian roads are already chaotic. Two-wheelers share space with buses, trucks, SUVs, delivery vehicles, animals and pedestrians. But road safety isn't only about speed limits and helmets. It is also about behavior. What happens when a driver uses the size and the weight of a car to intimidate someone on a motorcycle? What happens when a woman asks a driver to back off and the driver treats that as a challenge? What happens when harassment on the road is dismissed as just teasing? And perhaps most importantly, at what point does aggressive driving stop being bad driving and become a threat? The Gurugram case has forced that conversation into the open. Not because every road confrontation is an attempted murder. It is not. But because women should not have to calculate their safety every time an unfamiliar vehicle comes too close. Well, that's all we have for you today in Postmortem. It's time for a short break now. Keep watching India Today.

महंगाई का मुद्दा है। आज हर चीज महंगी होती चली जा रही, जरूरत की चीजें महंगी हो रही हैं। जो लोग कहते थे कि डॉलर कहां पहुंच गया, रुपया कहां पर है, उन्हें आज दोबारा मुड़ करके देखना चाहिए कि रुपया और डॉलर में क्या अंतर आ गया है। हर खाने पीने की चीज महंगी हो गई है, डीजल पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक दवाइयां महंगी, और ये स्थिति पैदा हो गई है कि पेट्रोल महंगा ना हो उसके लिए इन्हें इथेनॉल मिलाना पड़ रहा है, E20 बना करके बेचना पड़ रहा है पेट्रोल, जिससे माइलेज भी जा रहा है, मेंटेनेंस भी हो रहा है गाड़ी का। नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी,

0: And BJP hails ABVP's near clean sweep in the DU student union polls. Union Minister Kiran Rijiju says the verdict has exposed Congress's jhoot ki goonj. That's a big message coming in from Union Minister Kiran Rijiju. A big moment for the BJP as their student wing ABVP has won 3 key posts in the Delhi University polls. Remember, NSUI has bagged none of these posts, the vice president post that has been won by an independent candidate. But Gen Z choosing ABVP, that has now changed the narrative on the ground when it comes to Chhatro Ki Goonj. Those were the exact slogans that were resounding after ABVP's big victory in the Delhi University polls. ABVP has won big. Union Minister Kiran Rijiju has hailed ABVP's performance in the Delhi University polls, congratulating all the winning candidates. Kiran Rijiju saying that ABVP has won 3 out of 4 seats in the DUSU elections. ABVP has won the posts of President, Joint Secretary and Secretary. Let's listen in to what he said.
1: मैं ABVP के सारा candidates जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और पूरा छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है. पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया. कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए. आप सोच के देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है. इसका मतलब साफ हो गया ना कि देश का युवा और खास करके यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उन्होंने अपना मत दिया है, अपना आवाज, अपना विचार को क्लियर कट दे दिया है.
0: Let me cut across to my colleague Anmol Bali, who's been getting us all the voices from the ground. Anmol, big moment, especially how the BJP is celebrating the victory of ABVP, saying that the Gen Z has put out its verdict to where they stand.
2: Suresha, at one hand, we are seeing that Bharatiya Janata Party has also started celebrating for the victory of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. But on the other hand, ABVP has also started their celebration because this was a tough fight for the ABVP this time. Their margin has decreased. But on the other hand, we are seeing that Rahul Gandhi, who are saying that Chhatro Ki Goon, the Gen Z, are with them. But on the other hand, ABVP and BJP is saying that if Gen Zs are with the nation, they are with the nation first ideology. I'm joined by Dr. Virendra Solanki and as well as the winners of the ABVP panel. So, Mr. Solanki, what do you have to say? Today we have seen that Rahul Gandhi has called a Chhatro Ki Goonj rally in Indore, your own hometown. So, what do you have to say on it?
3: वो कहते हैं छात्रों की गूंज और यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेन जी की गूंज उनको दिखाई पड़ गई होगी. मुझे लगता है आज के चुनाव से उनको वहां आवाज सुना गई होगी कि छात्र जेन जी जनरेशन किसके साथ है. ये छात्रों की गूंज के नाम का जो ढोंग कर रहे हैं ना वो ढोंग नहीं, उनका सफल नहीं होगा. ये जेन जी की जो गूंज है ये पूरे देश देख रहा है कि आज जेन जी किसके साथ है.
2: I'm joined by Yash Dabas, the winner of the president position, and this time your margin was less, but still you won the president position. This was a very tough fight. We have seen that for the very first time. We have seen ST candidate from the other side. The VP has also broke 2 records. So what do you have to say on ABVP's victory and on the other hand, Congress party's narrative that Gen Z is with them?
4: जेन जी विद देम का तो अभी वीरेंद्र भैया ने रिप्लाई दे ही दिया है. बाकी जो आपने कहा एससी कैंडिडेट, तो मैं आपको बता दूं हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है. हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे.
2: Okay, so I'm also joined by secretary winner Riya Chhavri. What you have to say? You are a only woman in the panel. So what main issues you will be focusing in the panel because you are the only woman candidate in the panel?
5: As a girl candidate, मेरा main motive women safety का ही रहेगा और मैं ये ensure करूंगी कि Delhi University में हर एक लड़की को, हर एक student को safe, secure feel हो और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है उनको एक home feel हो.
2: So these were the winning candidates from the ABVP. I'm also joined by Laksh Rath, the joint secretary. We have also seen a tough fight by the independent candidate on the joint secretary position. So what do you have to say?
6: हाँ जी, मतलब काफी tough था. जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी. तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी, 3 जगह बटी हुई थी, 3 लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे. बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटर से जीता हूँ।
2: सो दीज आर ऑल थ्री विनिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। दोज हैव क्लियरली शेयर्ड देयर पॉलिटिकल थॉट्स ऑन द राहुल गांधीज पॉलिटिकल नैरेटिव, छात्रों की गूंज, एंड इवन दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस टाइम्स लिटिल मार्जिन विच लेड टू देयर विक्ट्री। बट ऑन द अदर हैंड वी आर ऑल्सो सींग द नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अक्यूजिंग द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एबीवीपी ऑफ रिगिंग द इलेक्शंस। बट या पॉलिटिक्स इज नाउ एस्केलेटिंग। बट ऑन वन हैंड बीजेपी हैज स्टार्टेड congratulating the ABVP cadre, the APVP candidates, those who have won the election. But on the other hand, Congress party and their student wing are accusing BJP, ABVP and Delhi University administration.
0: We'll talk more about the rigging part, but before that, Anmol, you've been interacting with a lot of these students. What really went on the ground to lead to this victory? Reduced margin is one aspect of it, but after the students' protest, the narrative that panned out, it wasn't easy. And the NSUI may have also predicted a clear victory, but given the fact that they won nothing, ABVP with three plump posts and one post of vice president having gone to an independent candidate, what does it speak of?
2: This year we have seen that NSUI hasn't won any one position in the panel. Last year we have seen that NSUI has won vice president, and from last 5 to 6 years we were seeing that around 2 to 3 positions were won by the ABVP and 1 or 2 positions were won by the NSUI. But this time we have seen a zero by the NSUI in the central panel of Delhi University Students Union. But on the other hand, we are also seeing politics escalating on this issue. But this time we have also seen a new trend in student politics where Dipanshu Shukin, the VP candidate who has won the election as an independent for the very first time, we have seen that an independent candidate has won with record-breaking margin. So, Esha, so clearly which is showing that the trend in the student politics is now changing from one political outfit to they are now focusing on individual candidates also, like we have seen in Rajasthan also, that how after BJP and Congress, independent candidates became the third number in terms of winning the wards, and now we are also seeing that independent candidates are also winning the student election, which clearly shows that how trends are changing, Swesha.
0: Trends indeed are changing, and a big moment not just for the ABVP but even the BJP, where the focus has primarily been on Gen Z, especially after the students' protests, after the resignation by Education Minister Dharmendra Pradhan, and how the BJP, as part of his strategy, is very carefully focusing on Gen Z. Because it is not just the BJP, but even the Congress, and by and large, the focus has gone on Gen Z, and that is why we see more of these students meet, going on the ground, going to these universities, top leaders, Rahul Gandhi's campaign, Prime Minister Narendra Modi, who was seen in Ahmedabad and in Delhi, interacting with the students, interacting with Gen Z. So that has become a very important aspect now when it comes to the top political leaders and the top political parties. And now with the ABVP's victory, BJP going all out to celebrate. Anmol.
2: Swesha, as you know, that we have seen that Congress party and BJP both have started their outreach program after the NEET UG paper leak issue. We have seen that Congress party has launched their Chhatron Ki Goonj movement, where we have seen that Rahul Gandhi interacted with the Gen Z and the young voters across the India. And today, Rahul Gandhi is also he's in Indore. He's interacting with Gen Zs of Indore, of the Madhya Pradesh. And amid this, we have seen that Delhi University Students Union results are kind of surprise for the Congress party and for the NSU. But on the other hand, we have also seen PM Modi has also started outreach program. He visited SRCC, Shri Ram College, the Delhi University. Then he visited in Gujarat. He interacted with the student. Even we have seen that PM Modi also visited at IIT Delhi and interacted with the Gen Z. And even we have seen that PM Modi has given Instagram first mantra to the BJP leaders to reach young voters, the voters which are in the Gen Z category, which are between the 20 and 30 years old, around 17 to 30 years old. Clearly, we have seen that all political parties are now seeing Gen Z as a voter bloc, and now they are all focusing. And ABVP's victory has kind of given arm shot to the Bharatiya Janata Party, and in their narrative that Gen Z is with them, that Gen Z is looking at the nation first ideology. They are not looking at the Congress party. But on the other hand, the Congress party is accusing the ABVP and the BJP of using their machinery and rigging the elections. So we are seeing politics escalating on this issue, but on the other hand, celebration in BJP and ABVP camp. Swisha.
0: Oh yes, and after the ABVP's victory, Chhatro Ki Goonj were the exact slogans that were heard resounding on the ground in a direct attack to the Congress and the NSUI over how the Gen Z is speaking and what their language, what their leanings are all about. Rahul Gandhi, you're saying, is also on the ground as part of one of these campaigns. But do tell us if there's been any response from Rahul Gandhi, from the Congress so far, aside of these rigging allegations.
2: We haven't seen any tweet or any post by or any video bite by any Congress leader, because currently all senior leaders of the Congress party, they are all in Indore. They are leading an outreach campaign in Indore where they're interacting with the youth of Indore. And this is not the very first time that we are seeing that Rahul Gandhi has called a movement like this Chhatro Ki Goonj. The other cadre of the Congress party, from IYC to Mahila Congress, they have all launched this kind of movement to reach to the Gen Z voter. But on
0: Anmol, I'm sorry, I'm having to interrupt you here, but more and more responses that have been coming in from the BJP that is certainly celebrating. Nitin Naveen has put out this latest tweet that reads, and I quote, "Congratulations to all my young friends at Delhi University on ABVP's historic victory in the DUSU elections. This victory reflects the youth's continued faith in positive and constructive student politics, rooted in the spirit of Nation First and their strong resolve to contribute to the vision of a Viksit Bharat. My best wishes to the victorious candidates and everyone who's worked relentlessly and tirelessly to make this victory possible. DUSU elections is the hashtag." So that's the response that is coming from BJP National President Nitin Naveen, after we just heard that response from Kiran Rijiju, who also went out to congratulate the winners. Let me take this back to my colleague Anmol. Like we were exactly talking, Anmol, no response from the Congress rep, but BJP going all out to make this point very, very clear and decisive that Gen Z has chosen the right-wing ideology. Gen Z has chosen the ABVP.
2: Suesha, we have seen that many BJP leaders are currently tweeting and congratulating the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. They are clearly saying that students have chose the Nation First and the constructive politics ideology, means the right-wing ideology. And we have also seen that how Rahul Gandhi has launched Chhatro Ki Goonj. But on the other hand, PM Modi has also interacted with the students, because this year the student election around India are very interesting, because we have seen that NEET paper leak, then Cockroach Janata Party protest, then Satyaniketan mishap, and after that the Delhi University election, where many of the students we have interacted with were saying that this will be hard for the AB, will be hard for the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad to win. But still ABVP managed by 2000 votes they have won the president position. But last year their margin was around 16,000. Their margin has decreased, but still students have chosen Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. But not only here in the Delhi University, in Punjab, in Chandigarh also we have seen that last month ABVP has won the president position in Chandigarh, which is home to the thousands of students from the various North Indian states. So we are seeing that ABVP is trying to bring or trying to project the narrative that students across India are with them. And they have clearly, while we talk with the various cadre of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, they have also said that they are not stopping here. They will be also fighting for the various other positions in South Indian universities like Hyderabad University Students Union also. And they will be projecting their narrative that Gen Z and youth are with the ABVP, right-wing and the nation-first ideology, as said by the BJP and the ABVP. Suesha.
0: That is pertinent, Anmol, because right now we are talking about the Delhi University elections, but what really is the story in the other cities is also important. Given the fact that the protests, the student protests that had happened in Jantar Mantar, where as much as we had seen students gather in large numbers, even from other cities, but primarily Delhi, and the age group of 12 to 19 and above is what we are talking about here. Gen Z has certainly given its verdict in the form of ABVP winning the Delhi University elections. But apart from the rigging allegations, any particular incidents that are being mentioned and quoted by the naysayers, by the adversaries who say that this has not been a fair election?
2: Swesha, I'll tell you that why NSUI lost this year, because this year we have seen that two of their candidates which want tickets for the vice president position and for the joint secretary positions have rebelled. They have filed as an independent candidate, and we have seen on the VP position, Dipanshu Shokin has won over 13,700 votes. He's from the NSUI. He was an NSUI cadre, but when later he wasn't given a vice president ticket, other guy who comes from a political dynasty family, three to four generation Congress family, he was given ticket. Then he filed as an independent candidate, which resulted into the VP seat, which should be going to the NSUI, that went to independent candidate. And on the other hand, we have also seen that Vishesh Yadav, who was also an NSUI cadre, has filed as an independent candidate and came as a second on the joint secretary position. That came as dent for the National Students Union of India, which is kind of faction riddle. So Kanhaiya Kumar and as well as Vinod Jakhad and various other senior leadership of the NSUI has to think that how they will manage next year, because we have also seen in last year also that the reason behind NSUI rout are the internal factionalism, where we have seen that many of the faction, many of the factions have filed their candidates, which led to NSUI's loss in the elections. Swesha.
0: And Mol, I request you to stay on with us. Sushant Sareen is also, I beg your pardon, Sushant, our colleague, is also joining us on the broadcast from the ground. Sushant, aap exactly kahan khade hain? Students se baat kar rahe hain. Bahut celebratory moment hai ABVP ke liye. Reduced margin hoga, but fact is ki is baar unke liye ye jeet aasan nahi thi.
7: बिल्कुल, जो आपने कहा कि जीत जो है वो अब की बार आसान नहीं थी एबीवीपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जनजी के प्रोटेस्ट हुए, लेकिन नतीजे जो आए हैं उसमें एबीवीपी का एक परचम जो है एक बार फिर से लहराता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनावों में जो है वो नजर आए. ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट और उसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की पोस्ट पर जीते हैं, वो अब इस वक्त आर्ट ऑफ फैकल्टी की स्वामी विवेकानंद की उस स्मृति के पास पहुंचे, स्मृति के पास पहुंचे जहां पर खड़े होकर के वो विक्ट्री का साइन दिखाएंगे. और पिछले एक दशक से अगर कहा जाए तो एबीवीपी का कब्जा जो है वो डुसू चुनावों पर आया. हालांकि दो बार अगर कहा जाए 2014 और 2024 के अंदर एनएसयूआई ने भी अपनी जीत जो है दर्ज कराई थी, लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर पदों पर भी अगर कहा जाए तो एबीवीपी का कब्जा रहा है. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं जो जीते हैं एबीवीपी के, वो इस वक्त आर्ट ऑफ फैकल्टी पहुंचे हैं. इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे दीपांशु शौकीन, वो पहुंचे थे. और अब तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से एबीवीपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अब यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि ये चुनाव इस बार बहुत टफ था एबीवीपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जेंजी का प्रोटेस्ट पूरे देश भर में, दिल्ली से लेकर के पूरे देश भर में देखा गया, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर थी. लेकिन इस बार जब 15 राउंड तक काउंटिंग शुरू हुई तो एनएसयूआई काफी मार्जिन पर जो है वो लीड करती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पोलिंग जो है उसके बाद हुई और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके जो रुझान सामने आए, उसके बाद से एबीवीपी ने 15 राउंड के बाद अपनी लीड जो है वो दर्ज कराई. और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एबीवीपी ने अब की बार एक बार फिर से तीन पदों पर अपनी जीत जो है वो दर्ज कराई है. पिछली बार एक पद पर अगर कहा जाए तो एनएसयूआई ने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जीत दर्ज कराई थी, लेकिन इस बार तीन पदों पर एबीवीपी और उसके अलावा एक पद पर जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है उस पर निर्दलीय कैंडिडेट ने जीत दर्ज कराई है. ये देखिए, ये जीते हुए कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको आते हुए नजर आएंगे. और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव है और इसी से आगे की राजनीति जो है वो तय होती है, चाहे वो देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे हो अरुण जेटली हो, इसके अलावा निर्मला सीतारमण जो कि जेएनयू से रही हो, कई बड़े नेता अलका लांबा, कई जो है वो ये जीत आसान नहीं होती छात्र संघ चुनावों की, और यहीं से आगे की राजनीति जो है वो शुरू होती है, करियर शुरू होता है. और यही वजह है जिस तरीके से ये जो चुनाव हुआ है काफी जबरदस्त ये चुनाव था, किस तरीके से कैंडिडेट्स ने, और एबीवीपी के लिए काफी बड़ी चुनौती थी. खुद प्रधानमंत्री का एसआरसीसी कॉलेज पहुंचना, 10 साल के अपने कामकाज को दिखाना और स्टूडेंट्स के बीच में जेंजी की बात करना, और ऊपर से देश भर में जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से भी जो युवाओं की गूंज थी, छात्रों की गूंज वाला कार्यक्रम चला, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एबीवीपी के लिए बड़ी चुनौती थी. और उस चुनौती का असर भी जो है वो अब देखने को मिला, किस तरीके से जीत जो है वो दर्ज हुई है एबीवीपी की.
0: जी बिल्कुल, पर पिछले कुछ महीने में जो हालात रहे हैं, जेंजी का वर्डिक्ट, जेंजी के थॉट्स, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में. हमने देखा कि किस तरीके से जब एबीवीपी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट सीट को जीता था तभी भी राजनाथ सिंह अमित शाह सभी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था. अभी भी रिएक्शंस आए हैं नितिन नबीन से, किरण रिजिजू से, बीजेपी के लिए खासकर जिनकी लेटली स्ट्रैटेजी चेंज हुई है जेंजी पे फोकस करने की, ये एक बड़ा मोमेंट है.
7: बिल्कुल, जेंजी पर फोकस करने की एक बड़ी स्ट्रेटेजी खुद प्रधानमंत्री ने जब जेंजी का आंदोलन हुआ था उसके बाद कहा था कि इंस्टाग्राम पर लोग आए, जेंजी से जुड़े, कॉलेज कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटीज में जाए, छात्रों से बात करें, उनके मुद्दों के उनके उनकी परेशानी सुने. और यही वजह है जिसको लेकर के खुद प्रधानमंत्री एसआरसीसी कॉलेज पहुंचे थे, उनकी परेशानी जब सामने रखी तो किस तरीके से स्टूडेंट्स की एक अलग प्रतिक्रिया जो है वो सामने नजर आई थी. उनको ये उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री आकर के इस तरीके से छात्रों के बीच में जाकर के छात्रों की बात करेंगे. उन्होंने धुरंधर का भी जिक्र किया, उन्होंने भी जिक्र किया. प्रधानमंत्री ने कनेक्ट किया युवाओं के साथ और वो युवाओं का कनेक्ट शायद एबीवीपी के छात्र संघ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव है उसमें एबीवीपी की जीत पे असर भी जो है वो नजर आया. निश्चित तौर पर अब बीजेपी इस पूरे मुद्दे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बुनाने की कोशिश कर रही है और जेंजी बीजेपी के साथ है, युवाओं जो है वो देश के प्रधानमंत्री के साथ है. एक मैसेज देने की पूरी कोशिश जो है वो अब बीजेपी की तरफ से की जाएगी क्योंकि ये छात्र संघ का चुनाव है और यहीं से आगे की राजनीति जो है वो होती है. और ये देखिए विवेकानंद की मूर्ति और जिस पर ये तमाम जो छात्र जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और विक्ट्री का साइन यहाँ पर दिखाते हुए आपको नजर आएंगे. ये तस्वीर अपने आप में है, बहुत ही अद्भुत तस्वीर रहती है क्योंकि ये छात्रों की एक ऐसी तस्वीर होती है जो आगे करियर इनको लेकर के जाती है और यही वजह है कि छात्र काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं करके विवेकानंद की इस मूर्ति आपको यहाँ पर नजर आएंगे. ये जो जीत है वो कहीं आगे आप देखेंगे आर्यन मान आपको जो डीयूएसयू के प्रेसिडेंट है 2025 जीत दर्ज कराई थी वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे. पिछली बार भी
0: सुशांत एंड अनमोल, एट द मोमेंट आई वांट टू थैंक यू फॉर गेटिंग अस दोस लेटेस्ट पिक्चर्स. सेलिब्रेशन ऑन इन फुल स्विंग फॉर द एबीवीपी आफ्टर विनिंग द डीयूएसयू पोल्स एंड we want to take you back to those key statements that were made by Prime Minister Narendra Modi as part of the Gen Z outreach, those Instagram videos, and most importantly how he hailed his faith in the youth of the country to say that we have to focus on what they think and how they can take the country forward. Listen into those excerpts.
8: Thank you friends. Kal der raat आपसे मिलने का मौका मिल गया. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा. थैंक यू दोस्तों.
9: डीयू में जब कोई पूछता है कि कौन सा कॉलेज, तो एसआरसीसी कहना ही, एसआरसीसी कहना ही अपने आप में ही एक फैक्ट होता है. साथियों, एसआरसीसी के एल्यूमनाई भी बहुत स्पेशल रहे. अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो यहां के एल्यूमनाई ओजी है. बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है. ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है।
0: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
10: You are watching India Today.

आज ये कॉम्बो एक पूरा मिला हुआ देखा, जिसमें पंजाब सरकार भगवंत मान घबराया हुआ और एक शराबी सीएम जो देसी पीता था, आजकल मुझे पता लगा है वो बाहर का ब्रांड आता है जिसमें ऊपर टल्ली बजती है, वो टल्ली वाली शराब पी के ये टल्ली रहता है और ऐसे हुक्म देता है, और इसकी वाइफ और इसकी बहन लूटने का काम कर रहे हैं, कई चीजें केजरीवाल जैसे। आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। ये लूटपाट का पैसा है जी, ज्यादा हदम नहीं होगा भगवंत मान। याद रखना जो आज तुमने शुरुआत की है ना, तेरे को जहां से तू निकला है उसी जगह अंदर छोड़ के आऊंगा।

0: are watching India Today.
1: समस्या हम आपके पास लेके आए हैं, उसका हमें अच्छा सा सॉल्यूशन मिले और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए सर।
2: हेलो सर। सर मैं MPPSC का स्टूडेंट हूँ। मध्य प्रदेश में स्थिति ऐसी पिछले 8 सालों से जितनी भी भर्तियाँ होती है सब पर 13% पद होल्ड कर दिए जाते हैं। किसी भी प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस परीक्षा हो जाती है, इंटरव्यू हो जाते हैं, सिलेक्शन के लिए 13% रोक देते हैं और मेरे जैसे युवा कम से कम 4 लाख और डायरेक्ट 87 लाख हजार बच्चे होल्ड हैं और ये पूरा MPPSC व्यापम जितने भी परीक्षाएं होती हैं सब पे 13% रोक लग जाती है और कोर्ट का बहाना देकर सरकार हर बार रोकती। कोर्ट ने कई बार कमेंट किया कि आप अपना रिजल्ट क्यों नहीं देते, अपना ही कानून क्यों लागू नहीं करते। सर 2018 में जब कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था तब से लेकिन आज तक 13% होल्ड है। हम लोग 8 साल से ओवर एज हो गए हैं और यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट हैं पूरे प्रदेश में कि सबकी स्थिति खराब है, मानसिक स्थिति खराब हो गई है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, नियुक्ति कब होगी। हम जैसे लोग SDM DSP बन सकते हैं लेकिन आज बेरोजगार बैठे हुए। मैं खुद यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ इंदौर में।
3: आपको लगता है कि जो हिंदुस्तान का एवरेज स्टूडेंट है उसको रोजगार मिल सकता है?
2: बिल्कुल सर मिल सकता है,
3: मिलना चाहिए,
2: मिलना चाहिए। बहुत

0: भर्तियां खाली हैं, भर्तियां नहीं होती हैं।
1: तो फिर क्यों नहीं मिल रहा?
0: यहाँ पर सर सिस्टम ऐसा है, हम लोग आंदोलन करते हैं कि भर्तियां निकालिए, रिजल्ट रोक दिए जाते हैं, बहुत सारे पद निकलते ही नहीं है, संविदा से भर दिए जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो मेन पद है वो भरे नहीं जा रहे। आज भी डाटा बता रहा कि आधे पद खाली है।
2: हेलो सर, सर मेरा नाम सपना गुर्जर है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हूँ जो मध्य प्रदेश का बाल विवाह में टॉप डिस्ट्रिक्ट है। सर मेरे लिए वहाँ से निकलकर यहाँ आना बहुत बड़ी बात है। सर मार्च 2019 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 14% OBC रिजर्वेशन बढ़ाकर 27% किया है, जो कि पूर्णतः पूरे मध्य प्रदेश में लागू भी है। लेकिन जैसे ही सर सरकार बदलती है, ये BJP का गवर्नमेंट हमारे 13% पद पर बिना किसी कारण के कोर्ट का हवाला देकर हमारी सारी नियुक्तियां होल्ड कर देती है। और सर पिछले 8 साल से आज तक लगभग 10,000 पद है जिन पे होल्ड नाम का राक्षस बैठा हुआ है। और सर लगभग 1,87,000 स्टूडेंट मेरे जैसे, जो सर मैंने खुद ने 2 एग्ज़ाम क्लियर कर रखी है, जिनने सारे प्री मेंस इंटरव्यू बहुत सारी 3-3 स्टेप एग्ज़ाम क्लियर करके और आज यहाँ सभी बेरोजगार बैठे हुए, जबकि सर वो हमको कोर्ट का हवाला देते हैं, लेकिन MP हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। सरकार जानबूझकर हमें गुमराह कर रही है और हमारी नियुक्तियाँ रोक रखी है। सर इस चीज़ को लेकर कहीं बार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई है कि आप कानून क्यों नहीं लागू कर रहे, कानून पर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है, आपका कानून है, आप चाहो तो कल सभी स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दे सकते हैं।
1: ये करते क्यों नहीं है, प्रॉब्लम क्या है
2: सर?
1: कानून बन गया है, इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, बट ये कर क्यों नहीं रहे?
2: सर ये सरकार दोहरी नीति अपना रही है। जैसे कि सर मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022, पटवारी भर्ती 2023 में 27% रिजर्वेशन में ज्वाइनिंग ले रही है, लेकिन उन्हीं भर्तियों में आगे जाके 13% पद होल्ड कर देती है। सर ये कहाँ का कानून है कि आप एक साल 27% पे ज्वाइनिंग दे रहे, दूसरे साल 13% पे होल्ड कर दे रहे? सर हम सभी के ज्वाइनिंग लेटर बस बचे हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करके, हमको कोचिंग के फीस के पैसे नहीं मिलते तो हम रात रात भर लाइब्रेरी में पढ़ के एग्जाम क्लियर करते, उसके बावजूद ये सरकार हमें 13% नाम का लॉलीपॉप थमा देती है, जिससे सर हम पिछले 8 सालों से सरकार के खिलाफ सड़कों पे लड़ाइयाँ लड़ रहे, लेकिन पिछले 8 सालों में सरकार ने आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हम जाते हैं, हमसे कोई बात करने तक नहीं आता है। सर आपको न्याय का योद्धा कहा जाता है और आपने सभी स्टूडेंट को न्याय दिलाया है, तो सर हम उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंट कि आप हमें भी न्याय दिलाए और ये 13% नाम के दलदल से हमें बाहर निकलवाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बोलिए बोलिए।
0: सर एक सवाल है कि सर मैं सतना जिले के बिंद क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पर शिक्षा की स्तर बहुत कर, यहाँ ज्यादातर बच्चे इंदौर भोपाल तैयारी करने आते, वहाँ पर सिविल सर्विस या सरकारी तैयारी करने वाले, वहाँ शिक्षा की स्तर बिल्कुल नहीं है कि हम लोग को यहाँ पाए, और हर तरह के बच्चे जो SC ST के बच्चे हैं, जो गरीब है, वोट नहीं कर सकते, वो यहाँ इंदौर नहीं आ सकते कि यहाँ आकर सब बच्चे पूरी तरह से तैयारी करें। तो मेरा ये कि जो उस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था हो कि बच्चे पैसे की वजह से यदि कोई इंदौर भोपाल नहीं आ पा रहा तो अपने क्षेत्र में बेहतर तैयारी कर सके, और राज्य में सेवा करना है, देश में सेवा करना, उसका अपना सपना पूरा कर सके। सर ये बात है,
1: मतलब आपका कहना है कि एजुकेशन एक्सेसिबल होना चाहिए, कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति को एजुकेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, मतलब एजुकेशन लग्जरी नहीं है, एजुकेशन हक है, स्टूडेंट्स का हक है।
0: सर बिल्कुल, हम लोगों हम आज तक सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी कॉलेज में पढ़े, यहाँ मेहनत कर कर के आ गए, तो आज तो शिक्षा इतनी सस्ती होगी, आराम से पहुंच सकती है वहां तक। सर
1: ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम याशिका दानी है और मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। सर मैंने 2020 में एडमिशन लिया था ये सोच के कि मेरा जो कोर्स है वो 4 साल में हो जाएगा 2024 तक, बट सर अभी सितंबर 2026 चल रहा है, अभी तक मैं थर्ड ईयर में हूँ सर, ना मेरा रिजल्ट आया है, ना हमारी फोर्थ ईयर की एग्जाम हो रही है, ना हमारी डिग्री पूरी हो रही है सर। इससे सर बहुत सारे एमपी के स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं।
1: कितने कितने टोटल कितने अफेक्ट
3: सर? हजारों स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं सर एमपी में। कोई एग्जाम नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। और सर नर्सिंग स्टूडेंट्स ने भोपाल में आंदोलन भी किया, तकरीबन एक महीना आंदोलन चला, बट सर जो भी सरकार है उसे सर कोई मतलब नहीं है, कोई हमारी सुनवाई में नहीं आया, उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घोटाला कर रहे हैं सर। उसके बाद भी सर हम लोगों ने एक महीना आंदोलन किया। और सर मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर आई हूँ कि आप हम लोग की प्रॉब्लम सुने,
1: ठीक है?
3: क्योंकि सर मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर। मैंने जब एडमिशन लिया था तब फीस सुन के मेरे पापा ने कहा कि नहीं बेटा अपन नहीं कर पाएंगे अफोर्ड, बट सर फिर भी मैंने एक साल कॉल सेंटर पे जॉब किया, अपनी फीस के पैसे इकट्ठा किए और मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया ये सोच के कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगी। बट सर इसका पूरा उल्टा हो रहा है सर, हम लोग अभी तक बेरोजगार हैं, कोई हमें जॉब पे नहीं रखता। अभी हम 12th पास कहलाते हैं सर, हम जब भी कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो ये पूछते कि आपके पास डिग्री है, हम लोग बोलते नहीं है, वो बोलते कि ठीक है हम आपको 5 या 6 हजार रुपए महीने के देंगे। सर ये बहुत गलत हो रहा है सर हम लोगों के साथ।
1: ओके थैंक यू
3: जी सर,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू
3: सर। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हमारी परेशानियों का जल्द से जल्द कोई समाधान करें।
1: बिल्कुल
3: सर,
1: थैंक यू
3: सो मच सर,
1: थैंक यू। तो ये वीडियो में स्टूडेंट ने सिस्टम की बात की और हमारे 3 फ्रेंड जो आए थे उन्होंने भी सिस्टम की बात की। सिस्टम हमारे खिलाफ है, सिस्टम एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है देश पर सिस्टम का कब्जा। सिस्टम में अलग अलग लेयर्स हैं। टॉप लेवल पर ये 6 लोग बैठे हैं, सिस्टम को चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी। धमकाने का काम, स्टूडेंट्स को मारने का काम, कील वाली लाठी के साथ मारने का काम, पैलेट गन मारने का काम अमित शाह जी चलाते हैं, वो इन्फोर्सर है। उस तरफ शायद आप उनको पहचानो या ना पहचानो, ये अजीत डोभाल जी है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये कहते हैं इनफॉर्मल बातचीत में, ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को कंट्रोल करना है तो सिर्फ 500 लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये अजीत डोभाल जी है, ये हिंदुस्तान के टेलीफोन व्हाट्सएप फेसबुक कम्युनिकेशन पर कब्जा किए बैठे हैं, ये फोन टैपिंग कराते हैं और ये इंफॉर्मेशन देते हैं अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को। इस फोन के अंदर डोभाल जी बैठे हुए हैं, आपके फोन के अंदर डोभाल जी बैठे हुए हैं, बीच में मोहन भगवत जी जो विचारधारा की बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, और इनके संगठन को करोड़ों हजारों करोड़ रुपए स्कूल चलाने के लिए, कॉलेज चलाने के लिए, इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए दिए जाते हैं। और एक साइड पे अदानी जी और दूसरे साइड पे अंबानी जी। अदानी जी पूरा फाइनेंस करते हैं, पूरा का पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, उसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं, योगी जी हैं, यादव जी हैं, चाहे बिजनेस हो, उसमें अदानी जी अंबानी जी का कैप्चर है, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हर संस्था पर सिस्टम ने अपना एक ना एक आदमी बैठा रखा है। जैसे हिंदुस्तान में इतने क्रिकेटर्स हैं, तेंदुलकर जी हैं, कपिल देव हैं, इतने क्रिकेटर्स हैं, मगर सिस्टम ने अमित शाह के बेटे को क्रिकेट का पूरा ठेका दे दिया है। तो मेरिटोक्रेसी की बात होती है, मगर फिर जिस सिस्टम अपने लोगों को, अपने बच्चों को हर संस्था के ऊपर बैठा लेता है, अमित शाह अपने बेटे को क्रिकेट, पूरा क्रिकेट दे देगा हिंदुस्तान का, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के संस्थाओं को बांट दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सिस्टम को स्टूडेंट से खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि सवाल पूछता है स्टूडेंट। स्टूडेंट कहता है कि अमित शाह जी के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे बन गए, यह सवाल स्टूडेंट पूछता है। स्टूडेंट पूछता है कि हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस को दो लोगों ने कैसे कैप्चर कर दिया। स्टूडेंट पूछता है कि जुडिशरी और बाकी संस्थाएं क्यों नहीं अपना काम करती हैं। स्टूडेंट पूछता है इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता, इसीलिए सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है। जहां स्टूडेंट मोहब्बत की बात करता है, प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करता है, वहां अंधभक्त नफरत फैलाता है, नफरत से बात करता है। जहां स्टूडेंट हम्बल होता है, ह्यूमिलिटी होती है, दूसरों की बात सुनता है, वहां अंधभक्त अहंकार से भरा होता है, एरोगेंट होता है। जहां स्टूडेंट डरता नहीं है, निडर होता है, वहां अंधभक्त डरपोक होता है, कावड़ होता है। जहां स्टूडेंट महिलाओं की रिस्पेक्ट करता है, वहां अंधभक्त पेट्रियार्कल होता है, महिलाओं पर आक्रमण करता है, महिलाओं का अपमान करता है। और जहां स्टूडेंट ईमानदार होता है, वहां अंधभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अंधभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है। अब देखिए, हमने आपको स्टूडेंट्स का वीडियो दिखाया, अब अंधभक्तों का वीडियो देखिए।
4: भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा की आदत है, आज उनका मंदिर भव्य बन रहा है।
5: ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है।
6: ये जो हमारा आज लीडर है ना, ये विष्णु का अवतार
7: है। मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा।
8: भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत।
9: आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता।
10: बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं?
9: बहुत मिलता, मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ।
11: सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए।
1: हेलो,
12: My friend.
13: Yes, sir.
12: My friend, how are you?
13: I'm fine. How are you, Modi ji?
12: Great harassment.
13: My friend. Very nice to meet you, brother.
12: Galgotia.
13: और बताइए, और बताइए थोड़ा.
12: माँ को कुर्सी दो. माँ, माँ. Setting my brand. My friend. Lauren Bajam.
1: तो आपने देखा, अंधबक कहता है हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली. अंधबक कहता है विकास नहीं चाहिए. मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, मगर अंधभक्त सवाल कभी नहीं पूछता है. अंधभक्त कभी भी यह सवाल नहीं पूछेगा कि हमारी स्कूल्स और कॉलेजेस की हालत ऐसी क्यों हो गई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों टूट गया, हमारे पेपर लीक क्यों हो रहे. स्टूडेंट ही यह आवाज पूछता है. एक में आपसे नमस्कार.
14: मेरा नाम रवि वास्केल है, मैं धार जिले के मनावर तहसील आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला हूँ. सर, मैं अभी दिल्ली गया था जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में वहां शामिल होने के लिए. जब मैं लौट रहा था तो ट्रेन में हमारे साथ कुछ चार पांच लोग आए और हमारे साथ बदसुलूकी की और हमें ट्रेन से बाहर उतार दिया. उनको हमने पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, कोई जवाब नहीं दिया. और वो लोग, हम ज्यादा थे, 14 लोग थे, तो वो हमको देख के चले गए. दूसरी बात यह है कि सर, खरगोन जिला है हमारे यहाँ पे, तो भगवानपुरा तहसील है, वहां पर 350 हेक्टेयर जमीन के पट्टे निरस्त कर दिए गए. उन लोगों को अभी पट्टे नहीं दिए गए. दूसरी बात आती है बालाघाट मलेरिया का हॉटस्पॉट माना जाता है. और बालाघाट के अंदर वहां पर डायरिया, मिसाइल्स, ऐसे भयानक बीमारियां हो रही. सरकार 25 सालों से है मध्य प्रदेश में बीजेपी की, तो अभी तक उस पर काम क्यों नहीं कर रही. वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं करा रहे गरीब लोगों को, वो हमारे आदिवासी लोग हैं. और हर जगह पे हम स्कूल की बात करें या हम परीक्षा की बात करें, बैकलॉग पदों की बात करें, तो हमें टारगेट बनाया जाता है, हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है. इसलिए एफआईआर कर दिया जाता है कि हम इन मुद्दों को उठाते हैं. होता क्या है कि सर, अभी बैकलॉग के कम से कम 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं और उनको 2003 के बाद से अभी तक वैकेंसी नहीं दी गई है. तो इनको भरना चाहिए जल्द से जल्द सरकार को, लेकिन उस चीज को सरकार संज्ञान में नहीं लाती है और हर बार हमें आश्वासन दे के हमारे टाइम को बढ़ा देती है, पोस्ट कर देती है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करती है. और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हॉस्टल की बात है,
13: बोलो
14: हॉस्टल की बात है. सरकारी हॉस्टल नेहरू हॉस्टल जो मध्य प्रदेश इंदौर में शिक्षा का हब माना जाता है, यहाँ पर ना तो उनके लिए रजाई गादी ढंग से है, ना कोई बाथरूम की सुविधा अच्छी से. उनके लिए पर्सनल एक लाइब्रेरी होना चाहिए, उनके लिए खेल का मैदान होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए. जैसे कॉन्स्टेबल हुआ, CISF हुआ, BSF हुआ, SSC GD की तैयारी करता है बंदा, तो उसके लिए एक पर्सनल ग्राउंड की सुविधा होनी चाहिए. सर
15: नमस्ते. राहुल जी, मेरा नाम रंजित किसानवंशी है, मैं देवास जिले से हूँ. हमारे मध्य प्रदेश में दो भर्ती बोर्ड और आयोग हैं जो यहाँ पर सरकारी भर्तियाँ करने का काम करते हैं. उसमें एक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है और दूसरा व्यापम है. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपने पिछले साल उसकी भर्तियों की जो समस्या है उसको लेकर हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ लोग ज्ञापन देने गए. उन्होंने हमारा कर्मचारी अधिकारियों ने ज्ञापन नहीं लिया. फिर हमने और स्टूडेंट से बात करी, सबको इकट्ठा किया और लगभग 5000 स्टूडेंट हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जाकर बैठ गए। 3 दिन और 4 रात हम जब बैठे तो फिर उन्होंने बातचीत करने के लिए हमको बुलाया और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने हमको कहा कि आप भोपाल आइए, आपकी जो मांगे हैं वो मैं पूरा करूंगा, आप मुझे को आकर बताइए। हम जब वहां गए उन्होंने हमारे को कहा कि आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए, हम आपकी मांग मानेंगे। वहां से जब हम वापस इंदौर आए तो हमको पता चला हमारे ऊपर, मैं और मेरे साथी नेहू के राधे जाट जी, उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई और उसके बाद हमको उठा के जेल में डाल दिया। 4 दिन हम जेल में रहे और हाईकोर्ट से हमारी जमानत हुई। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर जब भी कोई भर्ती की समस्या की बात हम करते हैं, कोई हमारी बात रखने जाते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर करके हमको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर जो दूसरा है व्यापम, व्यापम तो मुझे लगता है बना ही पेपर लीक और घोटाले के लिए। व्यापम के अंदर आप सामने समझ सकते हैं कि व्यापम लगातार एक के बाद एक पेपर लीक व्यापम में हो रहे हैं। व्यापम के अंदर पीएमटी भर्ती घोटाला हुआ, कृषि भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, टीटी भर्ती घोटाला हुआ, लगातार एक के बाद एक घोटाले होते हैं। और व्यापम और सरकार ने दो ऐसे घोटाले हैं जिन्होंने खुद ने माना कि हमसे घोटाला हुआ है। कृषि भर्ती घोटाला सरकार ने माना, एग्जाम कैंसिल करी और दोबारा एग्जाम कराई, लेकिन किसी को भी एक व्यक्ति को नहीं पकड़ा। दूसरा
1: कोई सजा नहीं मिली किसी को,
15: किसी को
1: कोई कन्विक्शन नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं,
15: नहीं। दूसरा पटवारी भर्ती घोटाला, पटवारी में पेपर लीक हुआ, एक ही कॉलेज के 10 टॉपर आ गए, भाजपा के 10 टॉपर आ गए भिंड। तो हमने जब हल्ला किया, हमने प्रदर्शन किया तो इन्होंने कहा कि हम जांच आयोग बना रहे हैं, जांच आयोग जांच करेगा और उसके बाद भर्ती होगी यदि इसमें सब कुछ ठीक पाया जाता। 2023 के बाद 24 में इन्होंने बिना उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किए सारी भर्तियां कर दी और सब लोगों को बचा दिया। तो मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी ये सामने स्टूडेंट हम सब खड़े हैं, ये मध्य प्रदेश इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो हम सब के कारण चलती है। हम घर से पैसे लेके आते हैं तो यहाँ की कोचिंग में पैसा देते हैं तो कोचिंग चलती है। हम घर से पैसे लेके आते हैं, हॉस्टल में पैसा देते हैं तो हॉस्टल चलती है। हम घर से हमारे माँ बाप से पैसा लेके आते हैं, लाइब्रेरी में पैसे देते हैं तो लाइब्रेरी चलती है। तो यहाँ पर हजारों लाखों लोगों को हमारे कारण रोजगार मिल रहा है पर हमको रोजगार नहीं मिल रहा। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे और हमको जेल मिलती है, रोजगार नहीं मिलता।
16: नमस्कार राहुल जी, मेरा नाम तनय है और मैं देश की सबसे बड़ी मीडिया यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि सरकार सिर्फ अंधभक्तों को पसंद करती है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हम जब उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम डरपोक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एरोगेंट नहीं है, नफरती नहीं है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, उनको अंधभक्त पसंद आते हैं। मैंने 3 साल में पढ़ने के बाद जब मास्टर्स में अप्लाई किया तो मेरा गुड अकेडमिक रिकॉर्ड होने के बाद भी मुझे मास्टर्स में एडमिशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं हूं। जब इंटरव्यू के स्कोर शीट के लिए मैंने RTI लगाई कि मुझे वहां की इवेल्युएशन शीट और स्कोर शीट चाहिए तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हमारे पास कोई भी स्कोर शीट मेंटेन नहीं है। यह बड़ा ही हास्यास्पद बात है। क्यों? क्योंकि अंधभक्त ही VC है और उसको अंधभक्त ही स्टूडेंट चाहिए।
1: बट एक बात, एक इंटरेस्टिंग बात, जो सिस्टम के लोग हैं देश में अंधभक्त चाहते हैं मगर अपने बच्चों को अंधभक्त नहीं बनाते कभी।
16: बिल्कुल सही।
1: इनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, इनके बच्चे ये काम नहीं करेंगे। ये देश के युवाओं को अंधभक्त बनाना चाहते हैं बट अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे पढ़ाने के लिए, इंग्लिश सिखाएंगे और सारी के सारे जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर बैठा देंगे।
16: बिल्कुल सही,
1: सही,
16: बिल्कुल सही राहुल जी।
15: विदेश में भेजते हैं पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को।
1: वो स्लाइड दिखाना। आप एक काम कीजिए, ये है सिस्टम के मालिक, ऐसे 300-400 लोग हैं, इनके बच्चों की लिस्ट निकालिए, देखिए उनके कहां पढ़ाई होती है, इंदौर में होती है, अमेरिका में होती है।
16: राहुल जी आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस समय आपको और मुझे हमारी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी और सारे प्रोफेसर ध्यान से सुन रहे हैं। मैं उनको कान खोल कर कहना चाहता हूँ कि जब तक राहुल जी हमारे साथ खड़े हैं हम ना डरेंगे ना दबेंगे और ना झुकेंगे।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले।
14: मैं एक बात कहना चाहता हूं सर से कि राहें देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए। या तो 2029 में आप प्रधानमंत्री बन जाओ या फिर हम ही ठिकाने लग जाए।
1: लव यू। तो हमने शुरुआत में कहा कि स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है। शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट्स की सरकार का काम है। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए, मगर देश में उल्टा हो रहा है। पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा का पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं। जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर, आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा स्कॉलरशिप्स, पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट से स्कॉलरशिप छीनी गई है। 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है। यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम। आइए, हेलो, नमस्कार।
17: नमस्कार सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, बोलिए।
17: सर मेरा नाम राधा मालविया है, मैं उज्जैन जिले माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले से हूँ। मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। सर PhD में लाखों रुपए खर्च होते हैं, रिसर्च में लाखों रुपए खर्च होते और खर्चा अभी भी थमा नहीं है। जब मैं किराए के रूम में रहती हूँ तो भी लाखों रुपए के खर्च होते हैं। इसी दौरान सर जब मकान मालिक का हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि आप तारीख टू तारीख हमें पैसे दीजिए, अगर नहीं दिया तो आप रूम खाली करके घर चले जाइए। ऐसी कई स्टूडेंट, ऐसी कई गर्ल्स है जो रूम छोड़कर घर चली गई है, जिनकी शादियां हो गई है। सर एक मुद्दा चलता है इनका, एक योजना है आवास भत्ता करके। आवास भत्ते में इनकी है कि हर महीने आपको पे करना है, साल का 24,000 आता है, हर महीने 2,000 आता है। सर मैं 2020 में जिस रूम में रहती थी वहां 2500 रुपए महीना था, आज उसी रूम का 5,000 रुपए महीना है, परंतु आवास भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हर साल 10% हमारे जो रूम का रेंट है वो बढ़ता है, और 24,000 मिलना है हमें साल भर का, और साल के एंड में मिलता है, महीने टू महीने नहीं मिलता है। महीने हम कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके पैसे किसी से ब्याज से लेके हम उसे पे करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना और मकान मालिक के यहाँ रहना है। सर जब आवास भत्ते की इतनी जटिल प्रक्रिया कर रखी है कि आप, हम गाँव से शहर की ओर पढ़ने आते, जब पढ़ने आते तो वहां देखते हम कि हमें आवास योजना का फॉर्म डालने के लिए हमें उनसे रजिस्ट्री चाहिए होती, हमें मकान का किराया तो मिलता नहीं, हमें रूम तो मिलता नहीं, तो हमें वो रजिस्ट्री कैसे देंगे। हम जैसे तैसे रजिस्ट्री भी लेते हैं, फॉर्म अप्लाई करते, 24,000 रुपए साल भर का आना चाहिए, पर कभी 24,000 एक भी स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं डलता। 18,000 आएंगे, 16,000 आएंगे, ये 5,000, 4,000, 6,000 कहाँ गए आज तक हमें पता नहीं है। सर सर हम भी इसी देश के नागरिक है, हम ही इसी देश की जनसी है, आप दिए में तो लाखों रुपए खर्च कर देते, तो हमारे लिए क्यों नहीं,
1: बिल्कुल
17: हमारे स्टूडेंट की शिक्षा के लिए क्यों नहीं। सर मैं हॉस्टल में रहती नहीं हूँ क्योंकि हॉस्टल में सीट अवेलेबल नहीं है। उज्जैन जिले में 1112 गांव है जहाँ सिर्फ 100 सीट है। सर दूसरी बात ये कि आप देखेंगे कि आज हम इतनी ज्यादा हमारी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इतनी ज्यादा फीस हो चुकी है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। सर जब आप 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन दे सकते तो हमें 1 रुपए में शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती,
1: बिल्कुल
17: ये भी हमारा अधिकार है। सर
18: हेलो, सर मेरा नाम सूरज ठाकुर है और मैं रायसेन जिले के बरेली तहसील से छोटा सा गांव अमरावत वहां से आता हूं। सर मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूं। सर 2022 में एक वैकेंसी आती है सिविल जज की, जिसमें से 121 पद ट्राइबल के लिए रहते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ का सिस्टम ने 121 पोस्ट में से किसी एक भी ट्राइबल को पोस्ट नहीं दी। सर मध्य प्रदेश में लगभग 200 करोड़ आदिवासी निवास रहते हैं, क्या उनमें से इनको एक सिविल जज हमारे समाज का नहीं मिला। सर ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, ये लोग नहीं चाहते कि आदिवासी सिविल जज बने और सिस्टम में आए और हमारे ऊपर हुकूमत करे।
1: ये आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, ये लोग नहीं चाहते कि आदिवासी स्टूडेंट्स बने, ये लोग नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट बने, ये चाहते कि सारा का सारा देश अनभक्त बने।
18: यस सर बिल्कुल। सर हमारा यही निवेदन है कि जो आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश में जो इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, कम से कम उसको दूर करा जाए। थैंक यू।
1: बहुत अच्छा बोल।
19: सर मेरा नाम दीप्ति सिंह ठाकुर है, मैं इंदौर की निवासी हूँ। मैं वर्ग 2 प्राथमिक शिक्षा और वर्ग 3 मिडिल स्कूल, मतलब माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्कूल में चयनित हूँ, मतलब पास हूँ। 2023 में जो परीक्षा निकली थी पात्रता परीक्षा, उसमें भी पास हूँ, और 2025 में निकली थी जो चयन परीक्षा, उसमें भी पास हूँ, पर मुझे नियुक्ति नहीं दी अपने सिस्टम में। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा गड्ढे में जाए, और वो जो अपना सिस्टम है ना, शिक्षा का जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं और ना ही अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें, हम पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, अच्छी अच्छी जगह कोचिंग की है हमने, बाकायदा बीएड डीएड किया है 1.5 लाख रुपए में, पर हमारे लिए सीट नहीं है उनके पास। किसके लिए है? घोटाले के लिए है, भ्रष्टाचार के लिए है। सर 1 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा का और माध्यमिक भोपाल में चल रहा है। हमने 17 नवंबर 2025 से आंदोलन शुरू किया था। महीने में एक डेट फिक्स की जाती थी, उस पे हम जाते थे और बाकायदा हर मंथ आंदोलन करते थे, वर्ग 3 के लिए, वर्ग 2 के लिए, पर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई।
1: मुझे भी बुलाओ ना आंदोलन में।
19: सर आइए, आपका स्वागत है। पर सर थोड़े हम समय मांगेंगे आपसे। हमारे हर महीना हम एक डेट फिक्स करते थे, आंदोलन शुरू करते थे, उस डेट में पूरा एमपी, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे भोपाल में इकट्ठे होते थे। बाकायदा हम लोग हर जगह डीपीआई मंत्री जी के यहाँ जाते थे, पर जैसे कुत्ते को भगाते हैं ना, उसी तरह भगाया गया है हम लोग को, उसी तरह भगाया गया। पर हम लोग ने हार नहीं मानी, फिर हम लोग ने डिसाइड किया 21 अगस्त से हमारा आंदोलन आज भी चल रहा है। हम कल भोपाल से ही यहीं आए थे सर। अभी सुनिए सर हमारी कहानी। अब 21 अगस्त से हमारा आंदोलन फिर से स्टार्ट हुआ, आज भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो साथी हैं, वो डीपीआई भोपाल के पास बैठे हैं।
1: कहाँ भागे?
19: और पता है, इतिहास में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है जो 30 दिन चल रहा है। उसमें एक हमारा साथी है नरेंद्र राजपूत, जो 9 दिन से पानी नहीं पिया है, पर कोई मंत्रालय नहीं आया है, ना ही डीपीआई आया है, कोई नहीं आया। आज भी बैठा है वो वहाँ पे। मैं जबरदस्ती आई हूँ कि आज के युवा की बात मैं राहुल सर के साथ शेयर करूंगी और ये इंटरनेशनल बने।
1: मुझे आप बुला लो वहाँ।
19: सर चलिए कल मेरे साथ।
1: मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। और कुछ बोलना?
19: सर अभी वो उठ नहीं पा रहा है, अभी अगर आप वीडियो भी देख सकते हैं तो देख सकते हैं। उसका नरेंद्र राजपूत नाम है, वर्ग 3 वर्ग 2 का शिक्षक है, जो 9 दिन से पानी नहीं पिया, खाना नहीं, पानी नहीं पिया, निर्जला हड़ताल है उसका।
1: बाद में मुझे वीडियो दिखाना।
19: ठीक है, ठीक है,
1: थैंक यू।
19: ठीक है सर, एक बार और इसमें इधर देखो, इधर जो सीटें हैं वो से किसकी है? घोटाले की है, भ्रष्टाचार की है, पर गरीबों की नहीं है। इसलिए मैं राहुल सर से निवेदन करना चाहती हूँ, हमारी आवाज युवाओं की आवाज खासकर इंटरनेशनल तक पहुँचा।
1: धन्यवाद
19: सर।
1: थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा बोले। हाँ और बोलो।
20: सर ये मध्य प्रदेश के जितने स्टूडेंट हैं उनकी ओर से बोल रही हूँ कि आप हमारे मसीहा हैं। हमारी उम्मीद सिर्फ आपसे, इस देश के कोई मीडिया से नहीं है।
1: थैंक यू,
20: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: ये यहाँ देखो, अच्छा आपका कंफ्यूजन हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू।
19: सर एक और टॉपिक है इनके साथ।
1: अच्छा हाँ, इनके साथ आइए।
21: मेरा नाम रजत गंगारेकर है और मैं मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र खरगोन से आया हूँ। मैं कृषि का छात्र हूं और मेरी बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर डिग्री अंबेडकर यूनिवर्सिटी से चल रही है, जहां कर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर मैं पिछले 3 साल से वहां पर पढ़ रहा हूं, पर मुझे जो कॉलेज के अंदर बेसिक नीड्स लगती है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सर अगर मैं गिनाना चाहूँ तो मैं उंगलियों पर गिना सकता हूँ। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो वहाँ परमानेंट फैकल्टीज नहीं है सर, सब गेस्ट फैकल्टीज है। वहाँ बैठने के लिए बच्चों के लिए क्लासरूम्स नहीं है, लड़कियों के लिए साफ स्वच्छ वॉशरूम्स नहीं है। अब वहाँ की जो वीसी सर की आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की मेंटेलिटी की है। और सर इनको हर साल सालाना 8 करोड़ का बजट मिलता है यूजीसी के अंडर, जो ये पैसा कहाँ जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। हम भी ये सर, हमारा जो कैंपस है मतलब यूनिवर्सिटी है ये ऑटोनोमस है, तो जो भी हमारी जो फीस जाती है वो कॉलेज के पास ही जाती है, और कॉलेज को ही इसका यूज बच्चों में सही तरीके से करना है। पर अगर ओवरऑल से जोड़ा जाए तो 12 करोड़ रुपए का सर कोई हिसाब नहीं है, ये इनकी केवल सैलरी में जा रहा है सर, बच्चों का अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा है।
0: सर मेरा नाम प्रियंका सेंगर है, मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट के तहसील सेंधवा के ग्राम पाड़छा से हूँ और मेरी पढ़ाई पहली से बारहवीं तक सरकारी छात्रावास में हुई है। सर सरकारी छात्रावास में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि टीचर पर्याप्त नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिलता है, हॉस्टल में हमसे काम कराया जाता है, खाना अच्छा न मिलने के कारण से हमको मिर्च की चटनी बना कर ले जाना पड़ता है हॉस्टल में ताकि हम पेट भर के खाना खा सके। और सर बारहवीं के बाद जब मैंने सरकारी हॉस्टल के लिए अप्लाई किया तो मुझे एडमिशन नहीं मिला, एडमिशन नहीं मिला, और मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो एडमिशन ना मिलने के कारण पढ़ाई छोड़ दी है। और सर एडमिशन ना मिलने के कारण मुझे मजबूरी में रूम से रहना पड़ रहा है और रूम की इतनी सारी समस्या है कि जैसे सर हर मंथ रूम चार्ज देना होता है और आवास हमको साल के लास्ट में मिलती है, तो हर मंथ रूम चार्ज देने के लिए माता पिता या तो माँ की ज्वेलरी गिरवी रखते हैं या खेत गिरवी रखते हैं ताकि हमको हमारी पढ़ाई का खर्चा दे सके। सर सर गैस टंकी हमको पहले 1200 में मिल जाती थी, अभी वो गैस टंकी 2500 में मिल रही है। इतनी सर बस पास पहले 200 का बन जाता था, अभी 600 में बन रहा है। इतनी महंगाई बढ़ने के बावजूद हम आदिवासी समाज की छात्राएं कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। सर हम आपसे यही अनुरोध है कि हमारे आदिवासी समाज की छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास में छात्रावास की संख्या में वृद्धि करो ताकि हम आदिवासी समाज के छात्र छात्राएं हॉस्टल सरकारी हॉस्टल में पढ़ाई कर सके और हमारे भविष्य को आगे और अच्छे से बना सके।
1: थैंक यू,
0: धन्यवाद सर। सर मैं 3 साल की थी तब मेरे आँख में चूना घुस गया था।
1: हाँ
0: तो नहीं बिल्कुल भी नहीं दिखता है सर। क्या
1: अच्छे डॉक्टर को दिखाया?
0: घर की कंडीशन ऐसी है कि मैं अच्छे हॉस्पिटल में नहीं बता सकती सर।
1: मैं दिखाता हूँ।
0: ठीक है, धन्यवाद सर।
1: थैंक यू बहुत अच्छा। तो आपने सुना प्राइवेटाइजेशन, 1,00,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि देश में 1,00,000 स्कूल बंद होते हैं और 55% मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंद होते हैं। हॉस्टल की बात की, हॉस्टल 100 में से सिर्फ 14 बच्चों को मिल सकता है। यहां भी उन्होंने उदाहरण दिया। और मेन बात है प्राइवेटाइजेशन, कॉस्ट कटिंग, और बीच में जो हमने लिखा है सबका साथ मेरा विकास, पे टू मोदी जी। अब देखिए, जब सरकार शिक्षा में कम पैसा डालती है तो स्टूडेंट खतरे में होता है।
2: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: आज ये कॉम्बो एक पूरा मिला हुआ देखा, जिसमें पंजाब सरकार भगवंत मान घबराया हुआ और एक शराबी सीएम जो देसी पीता था, आजकल मुझे पता लगा है वो बाहर का ब्रांड आता है जिसमें ऊपर टल्ली बजती है, वो टल्ली वाली शराब पी के ये टल्ली रहता है और ऐसे हुक्म देता है, और इसकी वाइफ और इसकी बहन लूटने का काम कर रहे हैं, कई चीजें केजरीवाल जैसे। आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी, एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। ये लूटपाट का पैसा है, ये ज्यादा हदम नहीं होगा भगवंत मान। याद रखना, जो आज तुमने शुरुआत की है ना, तेरे को जहां से तू निकला है उसी जगह अंदर छोड़ के आऊंगा।
1: You are watching India Today.
2: Hello and welcome. You're watching India Today. I'm Suvesha Sawant. We begin with the top headlines we're tracking for you this hour. Near clean sweep for BJP student wing in Delhi University student union polls, ABVP wins 3 of 4 positions, including the president, secretary and joint secretary posts. Congress NSUI fails to win even a single post. BJP hails ABVP's dominant display in DUSU polls, takes a jibe at Rahul Gandhi, claiming verdict.

0: Breaking news coming in. Union Minister J.P. Nadda has hit out at Congress after BJP student wing has swept the DU student union polls. In an exclusive conversation with India Today, Nadda has called the verdict a defeat for Rahul Gandhi's Jhooti Goon, saying the Congress MP's politics of lies has been busted. Listen in to what he said.
1: 25 साल प्रधानमंत्री को होने जा रहे हैं और अभी उनका जन्मदिन भी मनाया गया. देश भर में हमने देखा कैसे आशीर्वाद का दिया जनता ने जलाया और कई कार्यकर्ता बीजेपी के उसमें शामिल हुए. कैसा रहा ये राजनीतिक सफर? आपने तो बहुत करीबी से उनको देखा सर.
2: देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, वो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं और बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाले, फोकस्ड राजनेता और समाज कल्याण, देश कल्याण के लिए समर्पित, और जिसे मैं कह सकता हूं कि वेरी सीरियस पॉलिटिकल लीडर, जो चीजों को गहराई से समझना, जानना और उसका समाधान निकालना, ऐसा व्यक्तित्व तो मैंने उनको देखा है. और ये कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं, मेरी उनसे मुलाकात जो है वो 1990 की.
1: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए हैं, बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए.
2: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है. उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है. लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सबने देखा है. साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है. उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है. और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं. ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है, पहली बात. दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहां पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है. मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है.
0: India's biggest student poll verdict. BJP wins Big Bang Gen Z campus polls. BJP students wing ABVP has won three of the four central posts in the Delhi University elections, giving Prime Minister Modi's Gen Z outreach a big boost. Yash Dabas has won president. Riya Chavri is secretary. Lakshya Raj Singh, who's won joint secretary. Independent candidate Dipanshu Shokin, who has won the post of vice president. Congress students wing NSEY has suffered a humiliating loss. The Congress-backed NSEY failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki goonj and shows where the faith of the youth lies. However, the NSEY has alleged that Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSEY President Vinod Jakhar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
3: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
4: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी. हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे.
3: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
4: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSEY को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
3: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
4: देखिए विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं और जो भी एनएसयूआई के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर उनकी आदत है जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
3: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए देखा गया, इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
5: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपति की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपति उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
6: See, all of us have seen various reports around how the so-called छात्रों की गूंज programs have been organized by राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। वी हैव सीन हाउ स्टूडेंट्स हैव बीन लर्ड, वॉट हैव दे बीन ऑफर्ड, हाउ दे हैव बीन कॉल्ड। And there's also a doubt that those attending such programs are even students or not. We have seen viral videos on social media where students or influencers are offered money to attend the program of Rahul Gandhi. The students who have voted in Delhi University today, they have voted from their own will. They have not casted their vote as Rahul Gandhi would organize his events. They have not casted their votes on by being lured by somebody. They have casted their vote by their will, giving a mandate of what the students of this country feel. So I don't think that the event management done by Rahul Gandhi or the PR done by Rahul Gandhi can hide the true feelings of the students of this country.
7: जो आवाज है यह आवाज आज देश के धारा के साथ, देश के विकास के धारा के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं राहुल गांधी जो एनएसयूआई को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आज पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई को 0 अर्थात एक भी सीट डूसू में नहीं मिला है। एक बात स्पष्ट है, राहुल से नहीं हो पाएगा। राहुल ये जाके जो कर रहे हैं ना, क्या गूंज, झूठ की गूंज, उस झूठ की गूंज की आज हवा निकल गई है, झूठ की गूंज की पोल खुल गई है।
8: दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र को जिसने मेरा इतना साथ दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कल भी कंप्लेंट करी थी, जो स्वामी सरदानंद कॉलेज और रामजस कॉलेज और शिवाजी कॉलेज जैसे कॉलेज में बोगस वोटिंग की, बच्चों को पकड़ पकड़ के वोटिंग करवाई गई, उनके आईडी कार्ड ले लिए गए, उन्हीं को लेकर हम कोर्ट जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे।
9: के जो है वो तो हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी गंभीर बात यह है कि मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो है बाकी 2-3 सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पे हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो।
0: Moving on, amid his face-off with Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, former Union Minister and BJP leader Ravneet Singh Bittu has made a big claim. Bittu's team has alleged that he is still under house arrest in Ludhiana and that police officials are not allowing him to talk to anyone or move. This comes after Ravneet Bittu was detained by the Punjab police for allegedly waving tomatoes and eggs at CM Bhagwant Mann's convoy. Cops claim Bittu was released soon after, but the BJP leader's team insists he is under house arrest. Earlier, Bittu hit out at the chief minister and AAP government, saying the voice of the people cannot be suppressed by detaining them or registering police cases. He added that despite the detention, their spirits remain high.
10: ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ
11: ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ ਜਬ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤੋ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਔਰ ਅਬ ਵੀ ਓਪਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਪੇ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਕੌਣ ਸਟੇਟਸ ਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਯੇ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ
12: ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਿਬ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਉਸਸੇ ਸਾਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਨਕੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਹੁਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਮ ਪੇ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ ਪੇ ਉਤਰੇ ਹਮਲੇ ਹਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨੋ ਹਮਾਰੀ ਮਾਤਾਓਂ ਬਹਿਣੋਂ ਕੀ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਓਂ ਕੀ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮੇਂ ਆ ਚਿੰਤਾ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਹਾਂ ਪੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਯੇ ਸਭ ਇਤਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਹਾਲ ਕਿਆ ਸਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਯੇ
0: In Bengal, the bi-poll battle is heating up even before polling day. From candidates withdrawing and making a U-turn to an arrest triggering political allegations, the contest in Nandigram and Rajinagar has already turned into a full-blown political battle. And with the fight over the party name and symbol now reaching the Supreme Court, Bengal's poll drama is only getting bigger. We're getting you all the details in this report.
13: In Bengal, every poll comes with a political twist. And as the bi-polls draw closer, the battle lines are only getting busier. Earlier today, a fresh setback hit Mamata Banerjee's camp. A day after her party's candidate in Nandigram pulled out, her Rajinagar candidate too announced his withdrawal.
14: আর সিদ্ধান্ত সেগুলা বলছিল নতুন প্রতীক কর্মীদের তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গায় ছিল এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি না
13: But then came the twist. Just over an hour after announcing his exit, Rabiul met police officials and then reversed his withdrawal. He now says he will continue to contest the October 6 polls. Insiders in Mamata camp have confirmed to India Today that Rabiul will contest under the new name and symbol. And Nandigram had already served up its own twists just a day earlier. After Sanchita Pradhan of Mamata's faction withdrew her candidature, Mamata announced that her camp would back the Congress candidate. Then came another turn. Hours later, Congress candidate Milan Pradhan was arrested in connection with four 19-year-old cases, three carrying murder-related charges. Today, he was produced before the court. Congress called the timing of the arrest no coincidence, while Didi alleged political vendetta.
14: Look, these are scared people. दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है
13: बट द रेबल फैक्शन एंड द बीजेपी हैव हिट बैक एट ममताज एआईटीसी
15: ये जब माने बंगाली में कहावत है ना अंगूर फॉल टॉक ग्रेप्स आर सावर तो ममता बनर्जी का भी ग्रेप्स बहुत सावर हो गया है
16: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है
13: The legal battle is running parallel to the electoral one. Mamata's faction has moved the Supreme Court, arguing that the Election Commission did not adequately consider its organizational structure before denying it the original party name and twin flower symbol. Team Didi has also filed a separate petition seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritabrata Banerjee.
17: We don't disrespect the constitutional chair. But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta.
13: So as Nandigram and Vijayanagar inch closer to the October bipoles, their political chessboard is getting more crowded, with candidates quitting, returning, arrests triggering allegations, and the battle over names and symbols moving all the way to the Supreme Court. And in Bengal, the poll drama clearly is not waiting for polling day. Bureau Report, India Today.
0: And well, the showdown over who controls the TMC has now reached the Supreme Court. Hours after Mamata camp and the Ritabrata-led rebel camp were allotted interim party names and symbols for the upcoming bipoles, Team Didi has knocked on the doors of the top court. Mamata's camp has challenged the Election Commission's decision to deny it the original TMC name and symbol and instead allotted a temporary name and a free symbol. The plea also argues that the poll panel did not adequately consider the party's organizational structure while taking into account the claims of rebel leaders against whom disqualification petitions are pending. A separate petition that has also been filed by Team Didi seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritabrata Banerjee. The plea challenges the State Assembly Speaker's delay in deciding the disqualification petitions against the rebel legislators and also raises the issue of Ritabrata Banerjee's recognition as leader of opposition.
17: We don't disrespect the constitutional chair. But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta. To satisfy the ego of a political party, ऑलरेडी आपने आपका पता है कि उन्होंने बोला था पहले नाम भी नहीं रखने दूंगा निशाना भी नहीं रखने दूंगा पहले ही बताया था
18: बुनियादी तौर पे फैसले बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी की सरकार करती है इलेक्शन कमीशन उन फैसलों को एग्जीक्यूट करता है ये तो फैसले सारे बीजेपी के ऑफिसेज में होते हैं सरकार के ऑफिसेज में होते हैं इलेक्शन कमीशन तो उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है उन पे अमल दरामद करता है इलेक्शन कमीशन अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया
19: लोगों से संपर्क करना शुरू किए थे सवेरे एक वर्चुअल मीटिंग हुआ हम तीन प्रेफरेंस दिए थे फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस सेकेंड वॉज वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस थर्ड वॉज डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन कमिश्नर बताए हम लोगों को क्यों पहले दो नाम दे नहीं सकते हैं थर्ड नाम दिया है और इनवेलप जहां चुनाव चिन्ह का सवाल है पहला जो हम लोग का प्रायोरिटी था वही हम लोगों को मिला है तो इंडिविजुअल कल्ट है इंडिविजुअल कल्ट का पार्टी है पॉलिटिक्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वारिशन ये सब का कोई मायने नहीं है कोई ओनरशिप नहीं होता है पॉलिटिकल सिस्टम में
20: देखिए ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का वो जाके देखे चलो
0: Moving on, Prime Minister Narendra Modi has drawn a sharp line in the sand over India's energy future. Addressing a major global conference today, Modi launched a scathing attack on environmentalists, calling out those who preach green values with long speeches only to rush to court and stall critical nuclear projects. He stressed that India's energy transition is not restricted to solar and wind, but also includes nuclear power, hydropower and other low-carbon sources. The government has set an ambitious target of 100 gigawatts of nuclear capacity by 2047, with plans to expand participation in the sector and develop small modulator reactors. Modi also highlighted India's rapid growth in solar energy, saying installed capacity has surged from around 2 gigawatts 12 years ago to more than 160 gigawatts today. From rooftop solar reaching millions of homes to solar pumps benefiting farmers, the Prime Minister underlined the scale of India's clean energy push.
1: और जो लोग एनवायरमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए, इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है. इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है.
0: U.S. President signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in the crosshairs. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Here's a report.
21: A bill targeting Russia, but with eyes on India and China without naming them. Trump has signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers. Under the new law, the Trump administration can, with his nod, impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in crosshairs. The legislation requires Trump to impose tariffs of up to 100% within 30 days on goods imported into the US from the five largest importers of Russian crude oil or gas. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Trump in the past has blamed India for imposing high tariffs on U.S. goods.
22: Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now, they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff.
21: But India stands firm, asserting national interest is paramount. Ministry of External Affairs had said that India remains committed to ensuring energy security for its 1.4 billion people through diversified sourcing. New Delhi has flagged the potential impact on bilateral ties and global energy markets. The government says it will take all necessary measures to protect India's trade and economic interests.
23: हम लोग किसी देश के आधारित उस पर नहीं चलेंगे. जो हमारे देश के लिए अच्छा वो करेंगे. जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं बहुत अनफेयर है और हम किसी देश के दबाव में नहीं है. एनर्जी हमारा एक बहुत प्राइमरी कंसर्न है और हमारे देश के लोगों को जहां भी हमें कमर्शियली वायबल इकोनॉमिकल एनर्जी सोर्स मिलेगा, हम वहां से एनर्जी लेंगे.
21: Earlier, Prime Minister Modi had made it clear that the interests of Indians are supreme, no matter what.
1: मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है. दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे.
21: India has also defended buying Russian oil.
24: We didn't buy significant amount of Russian oil till 2022. Circumstances compelled us to get into that market. And I must say, the Russians have been steady suppliers because they put the cargoes out there and you go out there and buy oil, whichever is the most reasonable and available oil.
21: With the midterm polls around the corner, Trump is pulling out all the stops to avoid weakening his position, and that too at a time when end to Iran war seems a distant reality. And for India, it is still wait and watch game. Bureau Report, India Today.
0: Time now for a short break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
2: You are watching India Today.

0: हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
1: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
0: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
1: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो ABVP के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
0: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, ने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे जाते हैं।
1: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो ABVP का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं ABVP की परफॉर्मेंस?
2: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
3: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
4: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सबने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में ABVP को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वो वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
3: तो क्या छात्रों की गूंज जब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजे आए
4: हैं, गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है,
3: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका
4: राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
5: जो आवाज है, यह आवाज आज देश के धारा के साथ, देश के विकास के धारा के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं राहुल गांधी जो NSUI को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आज पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। NSUI को 0 अर्थात एक भी सीट डूसू में नहीं मिला है। एक बात स्पष्ट है, राहुल से नहीं हो पाएगा। राहुल ये जाके जो कर रहे हैं ना, क्या गूंज, झूठ की गूंज, उस झूठ की गूंज की आज हवा निकल गई है, झूठ की गूंज की पोल खुल गई है।
6: ऑल ऑफ अस हैव सीन वेरियस रिपोर्ट्स अराउंड हाउ द सो कॉल्ड छात्रों की गूंज प्रोग्राम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। वी हैव सीन हाउ स्टूडेंट्स हैव बीन लॉर्ड what have they been offered, how they have been called. And there's also a doubt that those attending such programs are even students or not. We have seen viral videos on social media where students or influencers are offered money to attend the program of Rahul Gandhi. The students who have voted in Delhi University today, they have voted from their own will. They have not casted their vote as Rahul Gandhi would organize his events. They have not casted their votes on by being lured by somebody. They have casted their vote by their will, giving a mandate of what the students of this country feel. So I don't think that the event management done by Rahul Gandhi or the PR done by Rahul Gandhi can hide the true feelings of the students of this country.
7: दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र को इसने मेरा इतना साथ दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद. हमने कल भी कंप्लेंट करी थी जो स्वामी सरदानंद कॉलेज और रामदास कॉलेज और शिवाजी कॉलेज जैसे कॉलेज में बोगस वोटिंग की, बच्चों को पकड़ पकड़ के वोटिंग करवाई गई, उनके आईडी कार्ड ले लिए गए, उन्हीं को लेकर हम कोर्ट जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे.
8: के जो है वो तो हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी गंभीर बात यह है कि मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहां काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है. उसको देखना पड़ेगा क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी दो तीन सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है. दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो दो तीन सीटों पे हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो.
9: Moving on, amid his face-off with Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, former Union Minister and BJP leader Ravneet Singh Bittu has made a big claim. Bittu's team has alleged that he is still under house arrest in Ludhiana and that police officials are not allowing him to talk to anyone or move. This comes after Ravneet Bittu was detained by the Punjab police for allegedly waving tomatoes and eggs at CM Bhagwant Mann's convoy. Cops claim Bittu was released soon after, but the BJP leader's team insists he is under house arrest. Earlier, Bittu hid out at the chief minister and AAP government, saying the voice of the people cannot be suppressed by detaining them or registering police cases. He added that despite the detention, their spirits remain high.
10: ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਚ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸਨੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ.
11: ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਾ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ, ਜਬ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਪੰਜਾਬ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ. ਔਰ ਅਬ ਵੀ ਓਪਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਪੇ ਪਕੜਾ ਗਿਆ, ਉਨ ਸਟੇਟਸ ਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਯੇ ਲੋਗ, ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ.
12: ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ, उससे पहले दो दिन पहले सांपला जी पे हमला हुआ, उससे सात दिन पहले हम वहाँ पे संगरूर जाके आए थे जिनके इसी तरह सुइसाइड हुआ, चीमा साहब को वो दिखा रहे थे हम पे. देखिए जो राजनीति, हम तो साहब सरफरोशी की तमन्ना, हम तो निकले हुए हैं, हमारे पे उतरे हमले. हमें चिंता है पंजाब के नौजवानों की साहब, हमें चिंता है हमारी माताओं बहनों की, हमारे को चिंता है व्यापारियों की जो काम कर रहे हैं, हमें आज चिंता है गाँव में कोई सुरक्षित नहीं है साहब, गाँव में बदमाशियाँ हो रही हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं. ये सब इतना पंजाब का हाल क्या का सब क्यों होया कि पंजाब में, ये समझ नहीं आ रहा साहब. ये
9: In Bengal, the bi-poll battle is heating up even before polling day. From candidates withdrawing and making a U-turn to an arrest triggering political allegations, the contest in Nandigram and Rajinagar has already turned into a full-blown political battle. And with the fight over the party name and symbol now reaching the Supreme Court, Bengal's poll drama is only getting bigger. We're getting you all the details in this report.
13: In Bengal, every poll comes with a political twist. And as the bi-polls draw closer, the battle lines are only getting busier. Earlier today, a fresh setback hit Mamata Banerjee's camp. A day after her party's candidate in Nandigram pulled out, her Reji Nagar candidate to announce his withdrawal.
14: আর সিদ্ধান্ত সেগুলো বলছিল নতুন প্রতীক কর্মীদের, তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গায় ছিল, এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি না।
15: সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুনরায়
14: মোটামুটি তাই।
13: But then came the twist. Just over an hour after announcing his exit, Rabiul met police officials and then reversed his withdrawal. He now says he will continue to contest the October 6 polls.
16: আপনি বলছেন কর্মীদেরকে হ্যারাস করছে, সেই ক্ষেত্রে
17: সেটা আমি নিশ্চয়ই বলবো, আগে আজকে এটা হয়ে যাক, তারপর থানায় বলবো যে আপনি যারা আমাদের কর্মী তাদের উপর যেন কোনো রকম প্রচারণ না হয়, সেগুলো তো নিশ্চয়ই বলবো, নিশ্চয়ই বলবো।
16: তাহলে প্রচার কখন থেকে নামছেন?
17: প্রচার আজকে কি নেমে যাবো?
16: প্রচার নেমে যাবো
15: গিরিশারে, কখন কথা হলো?
17: ভেবেছিলাম যে এই অবস্থা, দলের এই অবস্থা, নতুন প্রতীক আনতাম, তার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা নিয়েছিলাম, এখন আমরা এই নতুন প্রতীকে মানুষকে বুঝিয়ে ভোটটা করাবো।
13: Insiders in Mamata camp have confirmed to India Today that Rabiul will contest under the new name and symbol, and Nandigram had already served up its own twists just a day earlier. After Sanchita Pradhan of Mamata's faction withdrew her candidature, Mamata announced that her camp would back the Congress candidate. Then came another turn. Hours later, Congress candidate Milan Pradhan was arrested in connection with four 19-year-old cases, three carrying murder-related charges. Today he was produced before the court. Congress called the timing of the arrest no coincidence, while Didi alleged political vendetta.
18: देखिए ये डरे हुए लोग हैं, दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है।
13: But the rebel faction and the BJP have hit back at Mamata's AITC.
19: ये जब माने बंगाली में कहावत है ना, अंगूर फल टॉक, ग्रेप्स आर सावर, तो ममता बनर्जी का भी ग्रेप्स बहुत सावर हो गया है।
20: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है।
13: The legal battle is running parallel to the electoral one. Mamata's faction has moved the Supreme Court, arguing that the Election Commission did not adequately consider its organizational structure before denying it the original party name and twin flower symbol. Team Didi has also filed a separate petition seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritabrata Banerjee.
21: We don't disrespect the constitutional chair, but we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta.
13: So as Nandigram and Rejinagar inch closer to the October bipoles, their political chessboard is getting more crowded, with candidates quitting, returning, arrests triggering allegations, and the battle over names and symbols moving all the way to the Supreme Court. And in Bengal, the poll drama clearly is not waiting for polling day. Bureau Report, India Today.
9: And well, the showdown over who controls the TMC has now reached the Supreme Court. Hours after Mamata camp and the Ritabrata-led rebel camp were allotted interim party names and symbols for the upcoming bipoles, Team Didi has knocked on the doors of the top court. Mamata's camp has challenged the Election Commission's decision to deny it the original TMC name and symbol and instead allotted a temporary name and a free symbol. The plea also argues that the poll panel did not adequately consider the party's organizational structure while taking into account the claims of rebel leaders against whom disqualification petitions are pending. A separate petition that has also been filed by Team Didi seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritabrata Banerjee. The plea challenges the State Assembly Speaker's delay in deciding the disqualification petitions against the rebel legislators and also raises the issue of Ritabrata Banerjee's recognition as leader of opposition.
21: We don't disrespect the constitutional chair, but we feel today is a black day in our democratic history. what is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta. To satisfy the ego of a political party, already आपने आपका पता है कि उन्होंने बोला था पहले नाम भी नहीं रखने दूंगा निशाना भी नहीं रखने दूंगा पहले ही बताया था।
0: बुनियादी तौर पे फैसले बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी की सरकार करती है, इलेक्शन कमीशन उन फैसलों को एग्जीक्यूट करता है। ये तो फैसले सारे बीजेपी के ऑफिसेज में होते हैं, सरकार के ऑफिसेज में होते हैं, इलेक्शन कमीशन तो उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है, उन पे अमल दरामद करता है। इलेक्शन कमीशन अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया।
1: लोगों से संपर्क करना शुरू किए थे, सवेरे एक वर्चुअल मीटिंग हुआ, हम तीन प्रेफरेंस दिए थे। फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस, सेकेंड वॉज वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस, थर्ड वॉज डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस। इलेक्शन कमिश्नर बताए हम लोगों को क्यों पहले दो नाम दे नहीं सकते हैं, थर्ड नाम दिया है। और इनवेलप जहां चुनाव चिन्ह का सवाल है, पहला जो हम लोग का प्रायोरिटी था वही हम लोगों को मिला है। तो इंडिविजुअल कल्ट है, इंडिविजुअल कल्ट का पार्टी है। पॉलिटिक्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वारिशन, ये सब का कोई मायने नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं होता है पॉलिटिकल सिस्टम में।
22: देखिए, ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे। अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे।
9: Moving on, Prime Minister Narendra Modi has drawn a sharp line in the sand over India's energy future. Addressing a major global conference today, Modi launched a scathing attack on environmentalists, calling out those who preach green values with long speeches only to rush to court and stall critical nuclear projects. He stressed that India's energy transition is not restricted to solar and wind, but also includes nuclear power, hydropower and other low-carbon sources. The government has set an ambitious target of 100 gigawatts of nuclear capacity by 2047, with plans to expand participation in the sector and develop small modulator reactors. Modi also highlighted India's rapid growth in solar energy, saying installed capacity has surged from around 2 gigawatts 12 years ago to more than 160 gigawatts today. From rooftop solar reaching millions of homes to solar pumps benefiting farmers, the Prime Minister underlined the scale of India's clean energy push.
23: और जो लोग एनवायरमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए, इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है।
24: भारत सोलर एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी तक की क्लीन एनर्जी की यात्रा कर रहा है, लेकिन कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट इस मामले को लेकर बार बार कोर्ट जाते रहते हैं।
18: नहीं, पिछले काफी दिनों से जब इस तरह की योजनाएं अस्तित्व में आती हैं, तो कई संस्थाएं और व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह पर्यावरणविद होने का दावा और वादा करके अदालत में जाकर के इन योजनाओं पर रोक लगाने का याचिकाएं दायर करते हैं। तो कई बार जो ये योजनाएं लंबित हो जाती हैं, जिससे राष्ट्र को नुकसान होता है। मैं प्रधानमंत्री सहमत।
9: After months of diplomatic pressure and threats of Greenland's annexation, Donald Trump has said that the United States has struck a deal with Denmark, which gives Washington permanent control over Greenland's security and would bar China and Russia from having a military presence in the Arctic territory. We're getting you all the details in this report.
13: For years, Greenland has been at the center of Donald Trump's foreign policy agenda. And now, the US says it has reached a security deal with Denmark and Greenland. The deal gives Washington a permanent security role on the island. Sharing a post on his social media, U.S. President Donald Trump said Washington will have the ability to do what is necessary to secure and defend Greenland and the United States. Trump says the agreement comes at no cost to the U.S., bars adversaries from establishing military bases or maintaining a military presence on the island, and is an infinite life deal with no end. The U.S. also wants to make sure that its rivals cannot establish a military foothold in Greenland. No non-NATO country would be allowed to establish a military base or maintain troops in Greenland. That means preventing China and Russia from gaining a military or strategic foothold on the island. U.S. Secretary of State Marco Rubio has called the agreement a historic deal for both countries and a big win for Washington. Rubio says Greenland will remain part of North America's strategic defense area, while adversaries will be kept out of the island and its surrounding region. Danish Prime Minister Frederiksen's office said agreement reconcises the sovereignty and territorial integrity of Greenland. Greenland's Prime Minister says the agreement recognizes Greenland's interests and strengthens its place in international cooperation.
2: Strong support we have had from all European partners.
13: The agreement is expected to be signed during the upcoming UN General Assembly session and will then have to go through the required parliamentary procedures in Denmark and Greenland. A permanent security role, expanded military access, and stronger restrictions on rival powers in this strategically important Arctic territory. This is what makes the Greenland deal so significant. And that is exactly why this deal matters. Bureau Report, India Today.
9: It's a girl once again for Bollywood power couple Deepika Padukone and Ranveer Singh. Just days after seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple, the couple announced the joyous arrival of their second baby girl on Instagram. Little Dua is officially a big sister and the family of three has officially grown into a happy family of four. Congratulations pouring in for the star couple as they step into this beautiful new chapter. Take a look.
3: Deepika Padukone and Ranveer Singh are parents again. The couple has welcomed their second child, a baby girl. They shared the news jointly on Instagram with fans. The announcement was simple and intimate, with the couple using an evil eye protection emoji alongside the happy news. The arrival of their second daughter comes just a day after Deepika and Ranveer were spotted seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple. The couple visited the temple with family, with Ranveer seen holding Deepika's hand as they made their way inside. Interestingly, this is not the first time the couple has turned to Bappa ahead of a major family milestone. In 2024, Deepika and Ranveer had also visited Siddhivinayak before welcoming their first child. And now, their daughter Dua Padukone Singh has officially become a big sister. Deepika and Ranveer welcomed Dua on September 8, 2024. The couple had largely kept their daughter away from the public eye initially before sharing her first pictures with fans. Now, with the arrival of their second baby girl, the family of three has become a family of four. The couple has announced their second pregnancy earlier this year through a joint social media post, with Dua featuring in the announcement. Since then, fans have closely followed Deepika's pregnancy journey from her public appearances to their visits to Mumbai's iconic Ganpati Pandals. Their latest temple visit has already sparked excitement among fans, and now the reason behind the prayers has become even more special. Bureau Report, India Today.
9: Time now for a short break. We'll be back on the other side with the very latest. To stay tuned to India Today.
4: Watching India Today.

0: are watching India Today.
1: Hello and welcome. You're watching India Today. I'm Suvesha Sawant. We begin with the top headlines we're tracking for you this hour. Near clean sweep for BJP student wing in Delhi University student union polls. ABVP wins 3 of 4 positions, including the president, secretary and joint secretary posts. Congress NSUI fails to win even a single post. BJP hails ABVP's dominant display in DUSU polls. Takes a jibe at Rahul Gandhi, claiming verdict has shattered jhoot ki goonj. BJP says students have spoken loud and clear on whom they support. Congress cries foul over the verdict, alleges poll rigging. Rahul Gandhi takes his goonj to Madhya Pradesh, holds Chhatro ki goonj in Indore. Rahul Gandhi accuses BJP RSS of capturing all institutions, claims students are tired of education system. High drama in Punjab. Day after alleging attack on his convoy, former Union Minister Ravneet Singh Bittu detained by Punjab police for allegedly waving tomatoes and eggs at CM Bhagwant Mann's convoy. Cops claim Bittu released, but BJP leader's team insists he is under house arrest. Trump bans elite media houses CNN, MS Now and Politico from White House, accuses them of reporting fiction and lies. Further says more media outlets may face ban. India's biggest student poll verdict. BJP wins Big Bang Gen Z campus polls. BJP students wing ABVP has won 3 of 4 central posts in the Delhi University elections, giving Prime Minister Modi's Gen Z outreach a big boost. Yash Dabas winning president, Riya Chhavri winning secretary, Lakshya Raj Singh winning joint secretary, independent candidate Dipanshu Shaukeen has won the vice president post. Congress students wing NSUI suffers a humiliating loss. The Congress-backed NSUI failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki goonj and shows where the fate of the youth lies. However, NSUI has alleged that the Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSUI President Vinod Chakar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
2: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
3: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
2: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
3: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
2: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
3: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे जाते हैं।
2: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
4: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से, इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि

0: 1-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
1: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
2: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सबने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं। ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वो अगर आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
1: तो क्या छात्रों की गूंज जब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजे आए
2: हैं, गूंज कहाँ है? ये जो जीत है ये धमाका है।
1: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका?
2: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
3: जो आवाज है, यह आवाज आज देश के धारा के साथ, देश के विकास की धारा के साथ आगे बढ़ रही है। वही राहुल गांधी जो NSUI को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आज पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। NSUI को 0 अर्थात एक भी सीट डूसू में नहीं मिला है। एक बात स्पष्ट है, राहुल से नहीं हो पाएगा। राहुल ये जाके जो कर रहे हैं ना, क्या गूंज, झूठ की गूंज, उस झूठ की गूंज की आज हवा निकल गई है, झूठ की गूंज की पोल खुल गई है।
4: See, all of us have seen various reports around how the so-called छात्रों की गूंज programs have been organized by Rahul Gandhi and Congress Party. We have seen how students have been lured, what have they been offered, how they have been called, and there's also a doubt that those attending such programs are even students or not. We have seen viral videos on social media where students or influencers are offered money to attend the program of Rahul Gandhi. The students who have voted in Delhi University today, they have voted from their own will. They have not casted their vote as Rahul Gandhi would organize his events. They have not casted their votes on by being lured by somebody. They have casted their vote by their will, giving a mandate of what the students of this country feel. So I don't think that the event management done by Rahul Gandhi or the PR done by Rahul Gandhi can hide the true feelings of the students of this country.
5: इसने मेरा इतना साथ दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कल भी कंप्लेंट करी थी, जो स्वामी सरदानंद कॉलेज और रामदास कॉलेज और शिवाजी कॉलेज जैसे कॉलेज में बोगस वोटिंग की, बच्चों को पकड़ पकड़ के वोटिंग करवाई गई,
6: उनके
5: आईडी कार्ड्स ले लिए गए, उन्हीं को लेकर हम कोर्ट जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे।
7: के जो है वो तो हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी गंभीर बात यह है कि मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो है बाकी 2-3 सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन्स की जो 2-3 सीटों पे हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो।
8: Moving on, amid his face-off with Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, former Union Minister and BJP leader Ravneet Singh Bittu has made a big claim. Bittu's team has alleged that he is still under house arrest in Ludhiana and that police officials are not allowing him to talk to anyone or move. This comes after Ravneet Bittu was detained by the Punjab police for allegedly waving tomatoes and eggs at CM Bhagwant Mann's convoy. Cops claim Bittu was released soon after, but the BJP leader's team insists he is under house arrest. Earlier, Bittu hit out at the chief minister and AAP government, saying the voice of the people cannot be suppressed by detaining them or registering police cases. He added that despite the detention, their spirits remain high.
9: ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।
10: ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ ਜਬ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਪੰਜਾਬ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ। ਔਰ ਅਬ ਵੀ ਓਪਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਪੇ ਪਕੜਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਸਟੇਟਸ ਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਯੇ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ।
11: ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ, ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ, ਉਸਸੇ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਨਕੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਹੁਆ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਵੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਥੇ ਹਮ ਪੇ। ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ ਪੇ ਉਤਰੇ ਹਮਲੇ, ਹਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨੋ ਹਮਾਰੀ ਮਾਤਾਓਂ ਬਹਿਣੋਂ ਕੀ, ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਓਂ ਕੀ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਆਜ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਹਾਂ ਪੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਜਾਣਤੇ ਹੈ। ਯੇ ਸਭ ਇਤਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਹਾਲ ਕਿਆ ਸਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਯੇ
8: In Bengal, the bi-poll battle is heating up even before polling day. From candidates withdrawing and making a U-turn to an arrest triggering political allegations, the contest in Nandigram and Rajinagar has already turned into a full-blown political battle. And with the fight over the party name and symbol now reaching the Supreme Court, Bengal's poll drama is only getting bigger. We're getting you all the details in this report.
12: In Bengal, every poll comes with a political twist. And as the bi-polls draw closer, the battle lines are only getting busier. Earlier today, a fresh setback hit Mamata Banerjee's camp. A day after her party's candidate in Nandigram pulled out, her Rajinagar candidate too announced his withdrawal.
13: আর সিদ্ধান্ত সেগুলা বলছিল নতুন প্রতীক কর্মীদের তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গা ছিল এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছে।
12: But then came the twist. Just over an hour after announcing his exit, Rabiul met police officials and then reversed his withdrawal. He now says he will continue to contest the October 6 polls. Insiders in Mamata camp have confirmed to India Today that Rabiul will contest under the new name and symbol, and Nandigram had already served up its own twists just a day earlier. After Sanchita Pradhan of Mamata's faction withdrew her candidature, Mamata announced that her camp would back the Congress candidate. Then came another turn. Hours later, Congress candidate Milan Pradhan was arrested in connection with four 19-year-old cases, three carrying murder-related charges. Today, he was produced before the court. Congress called the timing of the arrest no coincidence, while Didi alleged political vendetta.
14: देखिए ये डरे हुए लोग हैं. दिक्कत ये है, ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं. इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है. ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है.
12: But the rebel faction and the BJP have hit back at Mamata's AITC.
15: ये जब माने बंगाली में कहावत है ना, अंगूर फल टॉक, ग्रेप्स आर सावर, तो ममता बनर्जी का भी ग्रेप्स बहुत सावर हो गया है.
16: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते. ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है. पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है.
12: The legal battle is running parallel to the electoral one. Mamata's faction has moved the Supreme Court, arguing that the Election Commission did not adequately consider its organizational structure before denying it the original party name and twin flower symbol. Team Didi has also filed a separate petition seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritha Pratha Banerjee.
17: We don't disrespect the constitutional chair. But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta.
12: So as Nandigram and Vijayanagar inch closer to the October bipoles, their political chessboard is getting more crowded, with candidates quitting, returning, arrests triggering allegations, and the battle over names and symbols moving all the way to the Supreme Court. And in Bengal, the poll drama clearly is not waiting for polling day. Bureau Report, India Today.
8: And well, the showdown over who controls the TMC has now reached the Supreme Court. Hours after Mamata camp and the Ritha Pratha-led rebel camp were allotted interim party names and symbols for the upcoming bipoles, Team Didi has knocked on the doors of the top court. Mamata's camp has challenged the Election Commission's decision to deny it the original TMC name and symbol and instead allotted a temporary name and a free symbol. The plea also argues that the poll panel did not adequately consider the party's organizational structure while taking into account the claims of rebel leaders against whom disqualification petitions are pending. A separate petition that has also been filed by Team Didi seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritha Pratha Banerjee. The plea challenges the State Assembly Speaker's delay in deciding the disqualification petitions against the rebel legislators and also raises the issue of Ritha Pratha Banerjee's recognition as leader of opposition.
17: We don't disrespect the constitutional chair. But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta. To satisfy the ego of a political party, ऑलरेडी आपने आपका पता है कि उन्होंने बोला था पहले नाम भी नहीं रखने दूंगा, निशाना भी नहीं रखने दूंगा, पहले ही बताया था.
18: बुनियादी तौर पे फैसले बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी की सरकार करती है. इलेक्शन कमीशन उन फैसलों को एग्जीक्यूट करता है. ये तो फैसले सारे बीजेपी के ऑफिसेज में होते हैं, सरकार के ऑफिसेज में होते हैं. इलेक्शन कमीशन तो उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है, उन पे अमल दरामद करता है. इलेक्शन कमीशन अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया.
19: लोगों से संपर्क करना शुरू किए थे, सवेरे एक वर्चुअल मीटिंग हुआ. हम तीन प्रेफरेंस दिए थे. फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस, सेकेंड वॉज वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस, थर्ड वॉज डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस। इलेक्शन कमिश्नर बताए हम लोगों को क्यों पहले दो नाम दे नहीं सकते हैं, थर्ड नाम दिया है। और एनवेलप जहां चुनाव चिन्ह का सवाल है, पहला जो हम लोग का प्रायोरिटी था वही हम लोगों को मिला है। तो इंडिविजुअल कल्ट है, इंडिविजुअल कल्ट का पार्टी है। पॉलिटिक्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वारिशन, ये सब का कोई मायने नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं होता है पॉलिटिकल सिस्टम में।
20: देखिए, ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे। अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे।
8: On, Prime Minister Narendra Modi has drawn a sharp line in the sand over India's energy future. Addressing a major global conference today, Modi launched a scathing attack on environmentalists, calling out those who preach green values with long speeches only to rush to court and stall critical nuclear projects. He stressed that India's energy transition is not restricted to solar and wind, but also includes nuclear power, hydropower and other low-carbon sources. The government has set an ambitious target of 100 gigawatts of nuclear capacity by 2047, with plans to expand participation in the sector and develop small modulator reactors. Modi also highlighted India's rapid growth in solar energy, saying installed capacity has surged from around 2 gigawatts 12 years ago to more than 160 gigawatts today. From rooftop solar reaching millions of homes to solar pumps benefiting farmers, the Prime Minister underlined the scale of India's clean energy push.
21: और जो लोग एनवायरमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए, इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है।
22: भारत सोलर एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी तक की क्लीन एनर्जी की यात्रा कर रहा है, लेकिन कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट इस मामले को लेकर बार बार कोर्ट जाते रहते हैं।
23: नहीं, पिछले काफी दिनों से जब इस तरह की योजनाएं अस्तित्व में आती हैं तो कई संस्थाएं और व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह पर्यावरणविद होने का दावा और वादा करके अदालत में जाकर के इन योजनाओं पर रोक लगाने का याचिकाएं दायर करते हैं। तो कई बार जो ये योजनाएं लंबित हो जाती हैं, जिससे राष्ट्र को नुकसान होता है। मैं प्रधानमंत्री से
8: U.S. President signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in the crosshairs. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Here's a report.
24: A bill targeting Russia, but with eyes on India and China without naming them. Trump has signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers. Under the new law, the Trump administration can, with his nod, impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in crosshairs. The legislation requires Trump to impose tariffs of up to 100% within 30 days on goods imported into the US from the five largest importers of Russian crude oil or gas. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Trump in the past has blamed India for imposing high tariffs on U.S. goods.
25: Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now, they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff.
24: But India stands firm, asserting national interest is paramount. Ministry of External Affairs had said that India remains committed to ensuring energy security for its 1.4 billion people through diversified sourcing. New Delhi has flagged the potential impact on bilateral ties and global energy markets. The government says it will take all necessary measures to protect India's trade and economic interests.
0: हम लोग किसी देश के आधारित उस पर नहीं चलेंगे जो हमारे देश के जो हमारे देश के लिए अच्छा वो करेंगे जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं हम लोग हमेशा कहते हैं बहुत अनफेयर है और हम किसी देश के दबाव में नहीं है एनर्जी हमारा एक बहुत प्राइमरी कंसर्न है और हमारे देश के लोगों को जहां भी हमें कमर्शियली वायबल इकोनॉमिकल एनर्जी सोर्स मिलेगा हम वहां से एनर्जी लेंगे.
24: Earlier, Prime Minister Modi had made it clear that the interests of Indians are supreme, no matter what.
21: मैं आपको बार-बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है. दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे.
24: India has also defended buying Russian oil.
1: We didn't buy significant amount of Russian oil till 2022. Circumstances compelled us to get into that market. And I must say, the Russians have been steady suppliers because they put the cargoes out there and you go out there and buy oil, whichever is the most reasonable and available oil.
24: With the midterm polls around the corner, Trump is pulling out all the stops to avoid weakening his position, and that too at a time when end to Iran war seems a distant reality. And for India, it is still wait and watch game. Bureau Report, India Today.
8: After months of diplomatic pressure and threats of Greenland's annexation, Donald Trump has said that the United States has struck a deal with Denmark, which gives Washington permanent control over Greenland's security and would bar China and Russia from having a military presence in the Arctic territory. We're getting you all the details in this report.
12: For years, Greenland has been at the center of Donald Trump's foreign policy agenda. And now, the US says it has reached a security deal with Denmark and Greenland. The deal gives Washington a permanent security role on the island. Sharing a post on his social media, US President Donald Trump said Washington will have the ability to do what is necessary to secure and defend Greenland and the United States. Trump says the agreement comes at no cost to the US, bars adversaries from establishing military bases or maintaining a military presence on the island, and is an infinite life deal with no end. The US also wants to make sure that its rivals cannot establish a military foothold in Greenland. No non-NATO country would be allowed to establish a military base or maintain troops in Greenland. That means preventing China and Russia from gaining a military or strategic foothold on the island. U.S. Secretary of State Marco Rubio has called the agreement a historic deal for both countries and a big win for Washington. Rubio says Greenland will remain part of North America's strategic defense area, while adversaries will be kept out of the island and its surrounding region. Danish Prime Minister Frederiksen's office said agreement reconcises the sovereignty and territorial integrity of Greenland. Greenland's Prime Minister says the agreement recognizes Greenland's interests and strengthens its place in international cooperation.
2: Strong support we have had from all European partners.
12: The agreement is expected to be signed during the upcoming UN General Assembly session and will then have to go through the required parliamentary procedures in Denmark and Greenland. A permanent security role, expanded military access, and stronger restrictions on rival powers in this strategically important Arctic territory. This is what makes the Greenland deal so significant. And that is exactly why this deal matters. Bureau Report, India Today.
8: It's a girl once again for Bollywood power couple Deepika Padukone and Ranveer Singh. Just days after seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple, the couple announced the joyous arrival of their second baby girl on Instagram. Little Dua is officially a big sister and the family of three has officially grown into a happy family of four. Congratulations pouring in for the star couple as they step into this beautiful new chapter. Take a look.
3: Deepika Padukone and Ranveer Singh are parents again. The couple has welcomed their second child, a baby girl. They shared the news jointly on Instagram with fans. The announcement was simple and intimate, with the couple using an evil eye protection emoji alongside the happy news. The arrival of their second daughter comes just a day after Deepika and Ranveer were spotted seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple. The couple visited the temple with family, with Ranveer seen holding Deepika's hand as they made their way inside. Interestingly, this is not the first time the couple has turned to Bappa ahead of a major family milestone. In 2024, Deepika and Ranveer had also visited Siddhivinayak before welcoming their first child. And now, their daughter Dua Padukone Singh has officially become a big sister. Deepika and Ranveer welcomed Dua on September 8, 2024. The couple had largely kept their daughter away from the public eye initially before sharing her first pictures with fans. Now, with the arrival of their second baby girl, the family of three has become a family of four. The couple has announced their second pregnancy earlier this year through a joint social media post, with Dua featuring in the announcement. Since then, fans have closely followed Deepika's pregnancy journey, from her public appearances to their visits to Mumbai's iconic Ganpati Pandals. Their latest temple visit has already sparked excitement among fans, and now the reason behind the prayers has become even more special. Bureau Report, India Today.
8: Time now for a short break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
4: Watching India Today.

0: A miracle, a blessing, or hard work being duly recognized and rewarded, or a combination of all these factors, including divine intervention. Hanuman Ansh, a film made with a modest budget of about 2 crore, that earned barely 10 lakh on its opening day, has emerged as one of the most profitable releases of the decade. The returns estimated at nearly 140 times the production cost. Hanuman Ansh, directed by Dr. Vishal Chaturvedi, and stars Shobhanav Satya and Chandan Anand in key roles. The director, Vishal Chaturvedi, Dr. Vishal Chaturvedi, joins me on this special broadcast. And before I bring him into this conversation, let me rattle off some of the statistics that the film world actually considers a dream come true. On day 40, Hanuman Ansh collected a net of 8.25 crore rupees across 9,175 shows, and this brings the film's total India net collection to 231 crore rupees plus. The total India gross for Hanuman Ansh stands at 272.9 crore and counting across 137,549 shows since the release. And it continues to run to packed halls. Amazing. Let me quickly bring into this conversation Dr. Vishal Chaturvedi. Dr. Saab, bohat bohat badhai, shubhkamnaye, many congratulations. Sir, is this your hard work being rewarded, or is this a miracle?
1: सीताराम सबसे पहले धन्यवाद बहुत मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाने के लिए सो आई विल से बिफोर आई गो इनटू वेदर दिस वाज अ हार्ड वर्क और दिस हैड दिस बिकेम अ मिरेकल आई वुड लाइक टू सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पे माय ग्रेटिट्यूड सो इन आवर ऑफिस दिस इज द लाइन इट्स रिटन ऑल दिस व्होमसोएवर कम्स एंड यू नो पुट्स हिज हार्ड वर्क और मनी और efforts matter and I will say everyone who has put their effort or efforts to bring people to theaters, because that would have not been possible from our promotional monies. And this happened so that everyone who has made their reels, or they talked about the film in their drawing rooms or offices, and they took school kids and everyone, like the kids took their grandparents and grandparents took their kids in one of the screenings. When we were like hopping theaters, so I asked how many grandparents brought their granddaughters and sons. So there were some plenty amount of people, and then I asked the reverse question: how many grandsons brought their grandfathers, or granddaughters brought their grandfathers? So there were plenty of kids. And I said, the circle is completed. That's what I wanted.
0: परिवारों को जोड़ रहे हैं. कितनी सुंदर बात आपने कही. ये परिवार जुड़ रहे हैं, पीढ़ियां जुड़ रही हैं. But tell me this, as a good doctor, आपने नब्स पकड़ ली ऑडियंस की. What inspired you to make a film on Neem Karoli Baba and this name, Hanuman Ansh?
1: So Neem Karoli Baba himself. So after finishing my MBBS, I met with a sort of a miraculous event which I today call at Leela, because miracles happen at instants and Leelas happen over the period of multiple years and decades. Maharaj's, I was doing my first job in Haldwani, and then our car, a few friends, we were traveling to random places near Nainital, and our car suddenly stops at a place, and then when the rain stops and the sunlight comes, because we were not able to see anything before. I opened my door and my door opens under Kachi Dham's gate. And that intrigued me so much that it was literally an invitation inside the temple.
0: Wow.
1: And from that day onwards, I've been following this. So I'll say, I believe that Maharaji wanted me to make this film. And he kept guiding me and kept putting me in situations where I had to find a unique way to get out of that situation, and always a unique reaction which came inside my mind, and then I kept following those paths. So I'll completely in a very, very surrender mode, I always say this, that it is Maharaj's guidance under which we made this film and probably where it
0: क्या
1: reached.
0: बात है, पूर्ण समर्पण, मतलब डिवोशन, आस्था और पूर्ण समर्पण ईश्वर को पाने के लिए इससे ज्यादा अच्छा मार्ग क्या हो सकता है. बट टेल मी दिस सर, फ्रॉम द सेट्स टू द म्यूजिक टू द स्टोरी टेलिंग, हाउ मच ऑफ दिस is your spiritual journey, your spiritual experience that went into the making of Hanuman Ansh?
1: So when I was very young, I was 22 or 23, I was going through some basic health issues, and my mother tells me that you need to basically meditate and you need to do dhyana. And my mother has been a constant source of spiritual information all through my life. And she keeps, you know, calling me every monthly or two monthly, and she will give me a lowdown of what all she got to know about Kriya Yoga and this and Dhyan and Kundalini, all of that. So because of her constant, you know, sort of a unke nirantar prayas se aisa hota raha ki mere andar jo spirituality wo hardam grow karti rahi, aur maine bahut sari cheezein khud bhi dhyan karte waqt jo bhi experience kiya. और वो मुझे कहीं ना कहीं बिलीव कराता है कि देयर इज दिस वर्ल्ड जो आपके अंदर अंदर ही है, जो आपके इनसाइड ही है, जो आपके आपके आपके बाहमुखी जहाँ होके अंतर्मुखी होने से, या अंतर्मुखी होने का मतलब, कहने का मतलब नॉट एज अ नेचर, बट आपके अंतर अपने अंतर को देखने को
0: पहचानने में
1: पहचानने आपकी जर्नी जो है ना, वो अंदर भी बहुत बड़ी जर्नी छुपी है जिसको स्पिरिचुअल जर्नी हम बोलते हैं. अमोन, आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारा इस बारे में कॉन्वर्सेशन में मिलेगा.
0: नहीं, बहुत तो, से मेरे मित्र ये बता भी रहे, और माँ सोचिए ना कि हमारी संस्कृति में कौशल्या माँ, देव की माँ, यशोदा माँ, जीजाबाई माँ, माँ की कितनी बड़ी भूमिका है पुत्रों को आगे ले जाने में और उनके उनके जीवन को संवारने में.
1: जी, तो वो उसी उसी लय पे और उसी जो है ना उसी तारतम्य में मैं आगे बढ़ता रहा. और बहुत, चूंकि मैं अलग अलग जगहों पे उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पे रहा हूँ, और बुंदेलखंड में मैं पैदा हुआ, और बुंदेली गीतों से मेरा अपना भी बहुत नाता है. और मैं हरदम जो भी मैं कंटेंट लिख रहा था या मैं डायरेक्ट करने वाला था, उस समय कहीं ना कहीं वो बुंदेल के आलाज, आलाखंड और बुंदेल की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं इनकल्केट करना चाहता था. और साधु तिवारी जो मेरे मित्र भी है, और सुनील लोधी जिसको मैंने फाइंड किया ऑन इंटरनेट, and I called him to the same office where we are sitting, where I'm talking from, and overnight I basically asked him for the songs, and this one I really loved, and we recorded the very next day because he was supposed to go and go back to his hometown by a train. So in half an hour, 45 minutes, we recorded, and this became the biggest song, I mean, you can say, today.
0: And even, can I request you when it comes out, when you sing it, it comes out from your soul. You know, can you, for the benefit of our viewers, sing the lines of Ma Parvati, Parvati for us?
1: All right. Jab zid pe aa gayi Parvati, Parvati, Parvati, samjhane pahunche Saptarishi, Saptarishi, Saptarishi, kaay zid kar rahi, are kaay khumar rahi, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे भर के लाने जाके शीस पे गंगा, और गले में डारे फिर रे सांप, जाके शीस पे गंगा और गले में डारे फिर रे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ, भोलेनाथ, Shambho, Shiv Shambho.
0: Shiv Shambho, Shiv Shambho. It's so beautiful. It actually enters your soul. It's so beautiful. Aur aap bilkul dil se ye ga bhi rahe hain. But, you know, since you're a doctor and since you said, you know, health, maa ne jo aashirwaad diya, kyunki I at least believe, you know, na se rog hare sab peera, japat nirantar hanumat beera. Is that also your life story? Chanting Lord Hanuman's name destroys all pain, all diseases. That's the message?
1: Yes. Bhagwat Bhakti mein aur Hanuman ji jo hai bahut pivotal role play karte hain. Jaisa ki Hanuman Chalisa mein likha hai, Ram duare tum rakhware hot ma agya bin paisare. As an आप उनकी उनकी भक्ति या उनके उनसे परमिशन लिए बिना आप जा नहीं सकते. There's another line called राम रसायन तुमरे पास, आपके पास ही फॉर्मूला है.
0: सदा रहो रघुपति के दासा.
1: Follow-up line is तुमरे भजन राम जी को पावे, तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो पहले तो आप भक्त होता क्या है ये समझोगे, क्योंकि भक्ति क्या होती है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो। अगर आप भक्ति सीखोगे नहीं तो आप भक्ति में डूबोगे कैसे। तो वो आपके सबसे आइडियल टीचर भी हैं, और चूंकि वो भगवान शिव के स्वयं रुद्र अवतार, 11वें रुद्र अवतार हैं, और जैसा बोला जाता है कि आप निरंतरता में किसी चीज का सुमिरन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर एज ए निरंतरता में हनुमत पीरा, जैसा ना तो लाइन जहाँ पे वो सुमिरन का शब्द आता है, इसी फॉलोअप लाइन से आ और देवता चित्र धरे हनुमत से सब शुक्र सब सुख सह लहे तुम्हारी सुनना जो तुम रक्षक का होगा डरना, और देवता चित्र धरे हनुमत से सब सुख संकट कटे मिटे सब पीरा जो
0: सुमरे हनुमत बलबीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा।
1: तो मेरा बिलीव यही है जी कि सब जो है ना एंड ऑफ द डे नीम करोली बाबा एक ऐसे संत थे, ऐसे महात्मा थे, ऐसे हायर बींग थे, हम एक्चुअली उनको अवधूत जिनको बोलते हैं, वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको आपको एक्चुअली पता करना कि वो कहाँ किस लेवल पे थे आपके बस की बात नहीं है। आप बोल तो सकते हो, आप इमेजिन भी कर सकते हो, लेकिन आपके बस की बात नहीं, आपके रीत से बहुत बाहर है। तो लेकिन वो क्या सिखाते थे, वो क्या समझाते थे, वो क्यों हनुमान चालीसा पढ़ने, सुंदरकांड पढ़ने और सीताराम बोलने, सीताराम लिखने, राम राम लिखने पे ही ज्यादा जोर देते थे, और क्यों हनुमान जी की मूर्तियां लगाते थे, इसी सब में सब कुछ छुपा है। एंड प्रॉब्ली फिल्म हमारा मैंने वही डिकोड करने की कोशिश पूरी फिल्म में की है।
0: And on day 40, Hanuman Ansh, the net collection stand at 8.25 crore rupees, if I may, if we compare it to Dhurandhar, which again was a spectacular film, 2.6 crore is what it got in the same period. Pathan was at 2.55 crore. So is this word of mouth publicity that has a bigger impact, Vishalji, than even those massive promotions?
1: I believe that the massive promotions are done. If I can talk about the box office dynamics, what happens that when you have your film a theatrical run for a week, first week, the film goes to people. People respond to the film that okay, it's a good film or it's a average film or it's a great film, and then from there the word of mouth picks. For that first week collection or first week people going to the theater, you need massive promotions, and. Because it's all across the country, and we face the problem. I understood that it's not that easy game that you just simply release your film and then you expect people to, you know, just respond to it, and then they will start giving you word of mouth. Attention span is so less today in today's time that you can't expect people to, you know, go and talk about your film or like all the way they're asking, giving their testimonies. So, no, go watch this film. I will pay for you this thing. So things like that started happening when. When people found that this film it's a good film, and then it's reduced to 225 theaters, they are not getting tickets, and they are traveling from to some, because the locations of those theaters were so odd that people have to travel. Some of the people traveled to 200 kilometers to watch the film. Wow. I've met such people.
0: Wow!
1: And this is happening the second week when they were getting word of mouth, and then they are not getting the movie to watch. So the demand surged so much. And the second week, the two other two films, one of the films was not doing well.
0: Correct.
1: And because of which, the theater owners, you know, started opening shows for Hanuman Ansh. And also the Cinepolis, who's the distributor, they were also pitching their film. And from there onwards, it never looked back. It kept growing only. As soon as they opened theaters, people just rushed and then they started watching the film. But in those first 2 weeks, the word of mouth grew. But we could have literally failed and, you know, fell on our nose. But somehow, you know, God saved it. So when you say miracle, yes, there is a sort of a miracle, nothing less than a miracle. But I'd like to thank everyone who has, you know, put their effort to make the reels and make, you know, talked about the film.
0: किसी दिल को छुआ होगा, लोगों के दिलों को छुआ, और इतने लोगों ने इसके बारे में बात की एंड क्यूरियोसिटी इंक्रीजेस। अच्छा, इसको अब आप कंपेयर कीजिए, व्हेन यू वेंट टू अपेरेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रिजेक्टेड हनुमान अंश, आई एम श्योर नाउ दे आर रिग्रेटिंग देयर डिसीजन, बट वर यू डिसअपॉइंटेड व्हेन दे रिजेक्टेड द फिल्म?
1: सो दे डिडंट रिजेक्ट हनुमान अंश, दे रिजेक्टेड द स्टोरी ऑफ नीम करोली बाबा। सो व्हेन आई पिच्ड इट टू एन ओटीटी, which is one of the biggest OTTs. There are only few OTTs and one of the OTTs, I'll say. When they rejected the story of Sri Neem Karoli Baba. And that was very disappointing, not just because it's my story or I took it, or it's a public domain story. But you know about him and you are from India, and why you're behaving so snobbish, and why you'll have to, you know, say such things. If you just look who all he inspired, and I'm telling that this guy has inspired the Apple's founder.
0: Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ek bahut lambi suchi hai.
1: And who are you in front of, who are you in company? I'm not talking about a person. Whichever company it is, like, it can't be. The Apple, as just as a company, is probably 500 times more wealthier and more, you know, it has more value. And the founder of that company was inspired by this man.
0: Neem Karoli
1: and
0: Baba.
1: The saint. So you just for that, the respect of this comparison which I'm doing right now, to understand where I'm working and what this guy, whom all this guy has inspired. आपको उतने में ही थोड़ा मॉडेस्ट रहना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि नहीं यार आप तो सिर्फ एक, आप कैसे पॉजिटिव स्टोरी लेके आ
0: रहे हैं। और वहां पर कितनी गाली गलौज चल रही है, और जिस तरह का अभी कंटेंट बन रहा है, नॉट दैट आई एम ड्रॉइंग अ पैरेलल, लेकिन क्या आप ये मानते हैं डॉक्टर साहब कि इस समय देयर इज अ वाइडर ऑडियंस नॉट जस्ट फॉर भक्ति बट टू नो अबाउट द सनातन वे ऑफ लाइफ? हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है? यू नो लाइंस लाइक यू सेड, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुवरे हनुमत बल बीरा, पीपल वॉन्ट टू नो वॉट इज आर लाइफ ऑल अबाउट, एंड डू यू इंटेंड परसुइंग दिस फर्दर? अगला आपका प्रोजेक्ट क्या है?
1: So I always believed, Gauravji, that there is a immense amount of possibility in Hindi film industry, and we are only catering to, I guess, 5% of them. पांच से सात परसेंट लोगों को ही हम कैटर कर रहे हैं. द पॉसिबिलिटीज ऑफ द फुटफॉल की पॉसिबिलिटी 40 करोड़ लोगों की कम से कम हिंदी में है. अगर आप 40 करोड़ को, अगर आप धुरंधर हैज एक्चुअली, यू नो, उसने वो उसको प्रॉपरली उसको पकड़ा था, और वो अभी भी मुझे लगता है धुरंधर ने भी अभी कैसे भी चार गुना पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी है. मेरा हरदम से मानना है कि अगर आप फैमिली कंटेंट नहीं बना रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने ऑडियंस, अपनी जो पॉसिबिलिटी है फिल्म की, उसको आप, यू आर रिड्यूसिंग टू 10%. इफ यू आर मेकिंग अ गुड फैमिली फिल्म, यू आर, यू नो, मेकिंग देम, यू नो, आदि बोलते हैं ना कि आदि बनाना होता है, मेकिंग हैबिचुअल ऑफ गुड कंटेंट व्हिच यू कैन गो एंड वॉच इन द थिएटर्स.
0: सपरिवार, मतलब गाली गलौज वाली फिल्म, यू डोंट वांट टू वॉच देम विद योर फैमिली, और लाइक यू सेड, ब्रिंगिंग थ्री जनरेशंस टुगेदर.
1: सो एंड दैट विल रिजल्ट इनटू, एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड एंड आई ऑलवेज told this, and I, when I'm saying I believe that, I, from last 7 years, I've been trying to make content which is not negative, which is not vulgar, which is not abusive, which binds people, which is not on the creating, you know, factions, creating, you know, division in the society. And the beauty about our film is that it doesn't antagonize anyone. It doesn't have any negative character in the entire film. There is no villain in the film. There is no three-act story. There is no big hero. So the beauty about this film is probably it's the simplicity which people are saying, that it is a simplicity which they're liking. And I believe that in that simplicity, there was really relatable content for the families. And that's what worked for them. And obviously, our belief system. So when you say Sanatan and when you say our family system, our culture, we need to, you know, draw the bigger lines. And we say that, you know, don't compare yourself. Do not get into this. There is this possibility of this also. I'm not saying that you should not open up, you know, the cases or problems which are very, very problematic for the society.
0: True.
1: But I'm saying, if you can also, but you'll have to also tell that this is the library we are working with from last 7,000 years. We have plethora of stories, plethora of magnanimous, you know, stories and content and ideas. You will have to just explore and figure out that how you can, you know, customize it and say it in a way that people love it.
0: Tell me about your next project, because I believe your next project is also spectacularly beautiful concept.
1: So I believe that since the film is about Hanuman Chalisa, and Neem Karoli Baba was also, you know, pressing a lot of people, but Hanuman Chalisa, I am also a Hanuman Bhakt. I also run a Hanuman Chalisa club on Clubhouse from last 5 years.
0: Kya baat hai.
1: So people from worldwide, they come and then chant Hanuman Chalisa over there. Even today, the club is working. My Hanuman Bhakti has brought me to Hanuman Ansh and to Srini Kurli Baba. And my Hanuman Bhakti will definitely take me to Tulsidas Ji, because that's the source.
0: Absolutely. Absolutely. How beautiful. So what you're doing, Dr. Chaturvedi, and I must delve on this for a moment. This is Bharat's civilizational knowledge and gyan that you're taking to future generations. Matlab, aap Goswami Tulsidas ka jab aap unki charcha kar rahe hain, to recently during Operation Sindoor, Air Marshal Bharti, he quoted those immortal lines of Goswami Tulsidas. Ramchandra ji jab Lanka ja rahe the, Sita ji ko lane ke liye, aur samudra rasta nahi de raha tha, to Vinay Namane Jaldi Jad gaye teen din beet, bole sako paramatab, भाई बिन होए न प्रीत. मतलब इतनी पावरफुल लाइंस है सर, ये हमारे कल्चर के बारे में, हमारी सिविलाइजेशन के बारे में, आप तो उनके पूरे जीवन के बारे में लिख रहे हैं
1: जी. और ये सुंदरकांड की लगभग आखिरी दोहा है, मतलब आखिरी या लास्ट वर्ड वन है, if I'm not wrong. So very beautifully Tulsidas ji writes, first of all, When Vibhishan comes and he tells ke, you can do this and you can do that, and Lakshman is saying dev dev alasi pukara, we jo log devta devta karte hain wo alasi log hote hain, you should just go and you know, we should hame try kar dene chahiye, or immediately we should. And Vibhishan batate hain ki aapke kul guru hain samudra jo hai na, inse aap vinti kar lijiye to ye rasta bana denge aapke liye. तो मतलब गए तीन दिन तक भगवान राम मर्यादा का, क्योंकि वो कुलगुरु भी हैं उनके, तो वो उनके मर्यादा के लिए 3 दिन वेट करते हैं. और सबसे खूबसूरत बात यह है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और हनुमान जी और राम, भगवान राम के बारे में जो बात मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, कि वो हरदम एक अपने हर जगह पर उन्होंने क्या बेस्ट हो सकता है, हर व्यक्ति की मर्यादा रखी, छोटे छोटे व्यक्ति की मर्यादा रखी, और वो कभी छोटा और बड़ा उन्होंने उस तरह से गिना नहीं. और यही सबसे खूबसूरत, लेकिन जब जरूरत आवश्यकता पड़े तो फिर आपको फिर वो
0: धनुष बाण भी उठाया,
1: उठाने पड़ेंगे जी, फिर तो कोई रास्ता नहीं. पर अगर वो सप्रेम निपट सकता है और मर्यादा में रहते आप का अनुसरण करते हुए अगर आप कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट, इट्स ब्यूटिफुल.
0: और यही बात आप भावी पीढ़ियों तक ले जा रहे हैं, यू टेकिंग दिस टू फ्यूचर जनरेशंस ऑफ भारत. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई मीन, यू आर अ डॉक्टर एंड यू रियली नो व्हाट एल्स द सिस्टम एंड व्हाट इज द वे टू ट्रीट इट एज बेस्ट एज पॉसिबल. डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी, फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन दिस इंडिया फर्स्ट स्पेशल ब्रॉडकास्ट, मेनी थैंक्स.
1: धन्यवाद. थैंक यू सो मच गौरव जी.
0: धन्यवाद. धन्यवाद.
2: Are watching India Today.

0: are watching India Today.
1: India's biggest student poll verdict. BJP wins Big Bang Gen Z campus polls. BJP students wing ABVP has won 3 of the 4 central posts in the Delhi University elections, giving Prime Minister Modi's Gen Z outreach a big boost. Yash Dabas winning president, Riya Chavri winning secretary, Lakshya Raj Singh winning joint secretary. Independent candidate Dipanshu Shaukeen has won the vice president post. Congress students wing NSUI suffers a humiliating loss. The Congress-backed NSUI failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki goonj and shows where the fate of the youth lies. However, NSUI has alleged that the Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSUI President Vinod Chakar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
2: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
3: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
2: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
3: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और एनएसयूआई को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेनजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
2: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
3: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं, और जो भी एनएसयूआई के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो वहां यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
2: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
4: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपति की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपति उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
5: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए?
6: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में।

0: ये सबने देखा है, साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं। ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र, सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वो अगर आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
1: तो क्या छात्रों की गूंज अब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजा
0: आया है? गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है।
1: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका?
0: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
2: जो आवाज है, यह आवाज आज देश के धारा के साथ, देश के विकास के धारा के साथ आगे बढ़ रही है। वही राहुल गांधी जो एनएसयूआई को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आज पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई को जीरो अर्थात एक भी सीट डूसू में नहीं मिला है। एक बात स्पष्ट है, राहुल से नहीं हो पाएगा। राहुल ये जाके जो कर रहे हैं ना, क्या गूंज, झूठ की गूंज, उस झूठ की गूंज की आज हवा निकल गई है, झूठ की गूंज की पोल खुल गई है।
3: See, all of us have seen various reports around how the so-called छात्रों की गूंज programs have been organized by Rahul Gandhi and Congress Party. We have seen how students have been lured, what have they been offered, how they have been called, and there's also a doubt that those attending such programs are even students or not. We have seen viral videos on social media where students or influencers are offered money to attend the program of Rahul Gandhi. The students who have voted in Delhi University today, they have voted from their own will. They have not casted their vote as Rahul Gandhi would organize his events. They have not casted their votes on by being lured by somebody. They have casted their vote by their will, giving a mandate of what the students of this country feel. So I don't think that the event management done by Rahul Gandhi or the PR done by Rahul Gandhi can hide the true feelings of the students of this country.
4: Delhi Vishwavidyalay ke ek chhatra ko jisne mera itna saath diya uska bahut bahut dhanyawad. Humne kal bhi complaint kari thi jo Swami Sardanand College aur Ramdas College aur Shivaji College jaise colleges mein bogus voting ki, बच्चों को पकड़ पकड़ के वोटिंग करवाई गई, उनके आईडी कार्ड ले लिए गए, उन्हीं को लेकर हम कोर्ट जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे।
5: के जो है वो तो हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी गंभीर बात यह है कि मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो है बाकी 2-3 सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन्स की जो 2-3 सीटों पे हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो।
6: Moving on, amid his face off with Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, former Union Minister and BJP leader Ravneet Singh Bittu has made a big claim. Bittu's team has alleged that he is still under house arrest in Ludhiana and that police officials are not allowing him to talk to anyone or move. This comes after Ravneet Bittu was detained by the Punjab police for allegedly waving tomatoes and eggs at CM Bhagwant Mann's convoy. Cops claim Bittu was released soon after, but the BJP leader's team insists he is under house arrest. Earlier, Bittu hit out at the chief minister and AAP government, saying the voice of the people cannot be suppressed by detaining them or registering police cases. He added that despite the detention, their spirits remain high.
7: ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸਨੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ
8: ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ ਜਬ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤੋ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਔਰ ਅਬ ਵੀ ਓਪਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਪੇ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਉਨ ਸਟੇਟਸ ਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਯੇ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ
9: ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਿਬ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਉਸਸੇ ਸਾਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਜਿਨਕੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਹੁਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਵੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਥੇ ਹਮ ਪੇ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ ਪੇ ਉਤਰੇ ਹਮਲੇ ਹਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨੋ ਹਮਾਰੀ ਮਾਤਾਓਂ ਬਹਿਣੋਂ ਕੀ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਓਂ ਕੀ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮੇਂ ਆ ਚਿੰਤਾ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਹਾਂ ਪੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਜਾਣਤੇ ਯੇ ਸਭ ਇਤਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਹਾਲ ਕਿਆ ਸਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਯੇ
6: In Bengal, the bi-poll battle is heating up even before polling day. From candidates withdrawing and making a U-turn to an arrest triggering political allegations, the contest in Nandigram and Rajinagar has already turned into a full-blown political battle. And with the fight over the party name and symbol now reaching the Supreme Court, Bengal's poll drama is only getting bigger. We're getting you all the details in this report.
10: In Bengal, every poll comes with a political twist. And as the bi-polls draw closer, the battle lines are only getting busier. Earlier today, a fresh setback hit Mamata Banerjee's camp. A day after her party's candidate in Nandigram pulled out, her Rajinagar candidate too announced his withdrawal.
11: আর সিদ্ধান্ত সেগুলা বলছিল নতুন প্রতীক কর্মীদের তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গায় ছিল এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি না
10: But then came the twist. Just over an hour after announcing his exit, Rabiul met police officials and then reversed his withdrawal. He now says he will continue to contest the October 6 polls. Insiders in Mamata camp have confirmed to India Today that Rabiul will contest under the new name and symbol, and Nandigram had already served up its own twists just a day earlier. After Sanchita Pradhan of Mamata's faction withdrew her candidature, Mamata announced that her camp would back the Congress candidate. Then came another turn. Hours later, Congress candidate Milan Pradhan was arrested in connection with four 19-year-old cases, three carrying murder-related charges. Today, he was produced before the court. Congress called the timing of the arrest no coincidence, while Didi alleged political vendetta.
12: Look, these are scared people. दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है
10: बट द रेबल फैक्शन एंड द बीजेपी हैव हिट बैक एट ममता एआईटीसी
13: ये जब মানে বাঙালি মেয়ে কাহাওয়াত না আঙুর ফল টক গ্রেপস আর সাওয়ার, তো মমতা ব্যানার্জি কা আবি গ্রেপস বহুত সাওয়ার হো গিয়া হ্যায়।
14: দেখিয়ে মমতা ব্যানার্জি কিসকো সাপোর্ট করেগি তো ইসমে হাম কুছ নাহি কহ সকতে, মমতা ব্যানার্জি কি ক্যান্ডিডেট খুদ নেই রহি, পার্টি সাইন বোর্ড বন চুকি হ্যায়। পহলে কংগ্রেস কো সাইন বোর্ড কহতি থি, আবি উসি সাইন বোর্ড কো জাকে ও সাইন দুসরা ওয়ালা সাইন বোর্ড সাপোর্ট কর রহা হ্যায়।
10: দ্য লিগাল ব্যাটল ইজ রানিং প্যারালেল টু দ্য ইলেক্টোরাল ওয়ান। Mamata's faction has moved the Supreme Court, arguing that the Election Commission did not adequately consider its organizational structure before denying it the original party name and twin flower symbol. Team Didi has also filed a separate petition seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritabrata Banerjee.
15: We don't disrespect the constitutional chair. But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta.
10: So as Nandigram and Vijayanagar inch closer to the October bipoles, their political chessboard is getting more crowded, with candidates quitting, returning, arrests triggering allegations, and the battle over names and symbols moving all the way to the Supreme Court. And in Bengal, the poll drama clearly is not waiting for polling day. Bureau Report, India Today.
6: And well, the showdown over who controls the TMC has now reached the Supreme Court. Hours after Mamata camp and the Ritabrata-led Rebel camp were allotted interim party names and symbols for the upcoming bipoles, Team Didi has knocked on the doors of the top court. Mamata's camp has challenged the Election Commission's decision to deny it the original TMC name and symbol and instead allotted a temporary name and a free symbol. The plea also argues that the poll panel did not adequately consider the party's organizational structure while taking into account the claims of rebel leaders against whom disqualification petitions are pending. A separate petition that has also been filed by Team Didi seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritabrata Banerjee. The plea challenges the State Assembly Speaker's delay in deciding the disqualification petitions against the rebel legislators and also raises the issue of Ritabrata Banerjee's recognition as leader of opposition.
15: We don't disrespect the constitutional chair. But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta. To satisfy the ego of a political party, অলরেডি আপনি আপকা পতা হ্যায় কি উন্হোনে বোলা থা পহলে নাম ভি নেই রাখনে দুঙ্গা নিশানা ভি নেই রাখনে দুঙ্গা পহলে বতায়া থা
16: বুনিয়াদি তৌর পে ফয়সলে বিজেপি কি লিডারশিপ অর বিজেপি কি সরকার করতি হ্যায় ইলেকশন কমিশন উন ফয়সলো কো এক্সিকিউট করতা ইয়ে তো ফয়সলে সারে বিজেপি কে অফিসেস মে হোতে হ্যায় सरकार के ऑफिसेज में होते हैं। इलेक्शन कमीशन तो उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है, उन पे अमल दरामद करता है। इलेक्शन कमीशन अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया।
17: लोगों से संपर्क करना शुरू किए थे, सवेरे एक वर्चुअल मीटिंग हुआ, हम तीन प्रेफरेंस दिए थे। फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस, सेकेंड वॉज वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस, थर्ड वॉज डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस। इलेक्शन कमिश्नर बताए हम लोगों को क्यों पहले दो नाम दे नहीं सकते हैं, थर्ड नाम दिया है। और एनवेलप जहां चुनाव चिन्ह का सवाल है, पहला जो हम लोग का प्रायोरिटी था वही हम लोगों को मिला है। तो इंडिविजुअल कल्ट है, इंडिविजुअल कल्ट का पार्टी है। पॉलिटिक्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वारिशन, ये सब का कोई मायने नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं होता है पॉलिटिकल सिस्टम में।
18: देखिए, ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे। अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे। चलो,
6: U.S. President signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in the crosshairs. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Here's a report.
19: A bill targeting Russia, but with eyes on India and China without naming them. Trump has signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers. Under the new law, the Trump administration can, with his nod, impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. Potentially, putting India and China in crosshairs. The legislation requires Trump to impose tariffs of up to 100% within 30 days on goods imported into the US from the five largest importers of Russian crude oil or gas. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Trump in the past has blamed India for imposing high tariffs on U.S. goods.
20: Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now, they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff.
19: But India stands firm, asserting national interest is paramount. Ministry of External Affairs had said that India remains committed to ensuring energy security for its 1.4 billion people through diversified sourcing. New Delhi has flagged the potential impact on bilateral ties and global energy markets. The government says it will take all necessary measures to protect India's trade and economic interests.
21: हम लोग किसी देश के आधारित उस पर नहीं चलेंगे जो हमारी देश के जो हमारे देश के लिए अच्छा वो करेंगे जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं हम लोग हमेशा कहते हैं बहुत अनफेयर है और हम किसी देश के दबाव में नहीं है एनर्जी हमारा एक बहुत प्राइमरी कंसर्न है और हमारे देश के लोगों को जहां भी हमें कमर्शियली वायबल इकोनॉमिकल एनर्जी सोर्स मिलेगा हम वहां से एनर्जी लेंगे.
19: Earlier, Prime Minister Modi had made it clear that the interests of Indians are supreme, no matter what.
22: मैं आपको बार बार वादा करता हूं मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है. दबाव कितना ही क्यों ना आए हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे.
19: India has also defended buying Russian oil.
23: We didn't buy significant amount of Russian oil till 2022. Circumstances compelled us to get into that market. And I must say, the Russians have been steady suppliers because they put the cargoes out there and you go out there and buy oil, whichever is the most reasonable and available oil.
19: With the midterm polls around the corner, Trump is pulling out all the stops to avoid weakening his position, and that too at a time when end to Iran war seems a distant reality. And for India, it is still wait and watch game. Bureau Report, India Today.
6: After months of diplomatic pressure and threats of Greenland's annexation, Donald Trump has said that the United States has struck a deal with Denmark, which gives Washington permanent control over Greenland's security and would bar China and Russia from having a military presence in the Arctic territory. We're getting you all the details in this report.
24: For years, Greenland has been at the center of Donald Trump's foreign policy agenda. And now, the US says it has reached a security deal with Denmark and Greenland. The deal gives Washington a permanent security role on the island. Sharing a post on his social media, U.S. President Donald Trump said Washington will have the ability to do what is necessary to secure and defend Greenland and the United States. Trump says the agreement comes at no cost to the U.S., bars adversaries from establishing military bases or maintaining a military presence on the island, and is an infinite life deal with no end. The U.S. also wants to make sure that its rivals cannot establish a military foothold in Greenland. No non-NATO country would be allowed to establish a military base or maintain troops in Greenland. That means preventing China and Russia from gaining a military or strategic foothold on the island. U.S. Secretary of State Marco Rubio has called the agreement a historic deal for both countries and a big win for Washington. Rubio says Greenland will remain part of North America's strategic defense area, while adversaries will be kept out of the island and its surrounding region. Danish Prime Minister Frederiksen's office said agreement reconciles the sovereignty and territorial integrity of Greenland. Greenland's Prime Minister says the agreement recognizes Greenland's interests and strengthens its place in international cooperation.
0: Strong support we have had from all European partners.
24: The agreement is expected to be signed during the upcoming UN General Assembly session and will then have to go through the required parliamentary procedures in Denmark and Greenland. A permanent security role, expanded military access, and stronger restrictions on rival powers in this strategically important Arctic territory. This is what makes the Greenland deal so significant. And that is exactly why this deal matters. Bureau Report, India Today.
6: It's a girl once again for Bollywood power couple Deepika Padukone and Ranveer Singh. Just days after seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple, the couple announced the joyous arrival of their second baby girl on Instagram. Little Dua is officially a big sister and the family of three has officially grown into a happy family of four. Congratulations pouring in for the star couple as they step into this beautiful new chapter. Take a look.
1: Deepika Padukone and Ranveer Singh are parents again. The couple has welcomed their second child, a baby girl. They shared the news jointly on Instagram with fans. The announcement was simple and intimate, with the couple using an evil eye protection emoji alongside the happy news. The arrival of their second daughter comes just a day after Deepika and Ranveer were spotted seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple. The couple visited the temple with family, with Ranveer seen holding Deepika's hand as they made their way inside. Interestingly, this is not the first time the couple has turned to Bappa ahead of a major family milestone. In 2024, Deepika and Ranveer had also visited Siddhivinayak before welcoming their first child. And now, their daughter Dua Padukone Singh has officially become a big sister. Deepika and Ranveer welcomed Dua on September 8, 2024. The couple had largely kept their daughter away from the public eye initially before sharing her first pictures with fans. Now, with the arrival of their second baby girl, the family of three has become a family of four. The couple has announced their second pregnancy earlier this year through a joint social media post with Dua featuring in the announcement. Since then, fans have closely followed Deepika's pregnancy journey from her public appearances to their visits to Mumbai's iconic Ganpati Pandals. Their latest temple visit has already sparked excitement among fans, and now the reason behind the prayers has become even more special. Bureau Report, India Today.
6: Time now for a short break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
2: Watching India Today.

0: are watching India Today.
1: India's biggest student poll verdict. BJP wins Big Bang Gen Z campus polls. BJP students wing ABVP has won 3 of the 4 central posts in the Delhi University elections, giving Prime Minister Modi's Gen Z outreach a big boost. Yash Dabas winning president, Riya Chavri winning secretary, Lakshya Raj Singh winning joint secretary. Independent candidate Dipanshu Shaukeen has won the vice president post. Congress students wing NSUI suffers a humiliating loss. The Congress-backed NSUI failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki gooj and shows where the fate of the youth lies. However, NSUI has alleged that the Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSUI President Vinod Chakar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
2: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
3: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
2: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
3: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
2: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
3: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
2: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
4: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपति की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपति उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
5: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए?
6: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
5: तो क्या छात्रों की गूंज जब गूंज रही है आपको लग रहा है सर जो नतीजे आए
6: हैं? गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है।
5: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका?
6: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
7: जो आवाज है यह आवाज आज देश के धारा के साथ, देश के विकास के धारा के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं राहुल गांधी जो एनएसयूआई को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आज पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई को जीरो अर्थात एक भी सीट डूसू में नहीं मिला है। एक बात स्पष्ट है, राहुल से नहीं हो पाएगा। राहुल ये जाके जो कर रहे हैं ना, क्या गूंज, झूठ की गूंज, उस झूठ की गूंज की आज हवा निकल गई है, झूठ की गूंज की पोल खुल गई है।
8: ऑल ऑफ अस हैव सीन वेरियस रिपोर्ट्स अराउंड हाउ द सो कॉल्ड छात्रों की गूंज प्रोग्राम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। वी हैव सीन हाउ स्टूडेंट्स have been lured, what have they been offered, how they have been called, and there's also a doubt that those attending such programs are even students or not. We have seen viral videos on social media where students or influencers are offered money to attend the program of Rahul Gandhi. The students who have voted in Delhi University today, they have voted from their own will. They have not casted their vote as Rahul Gandhi would organize his events. They have not casted their votes on by being lured by somebody. They have casted their vote by their will, giving a mandate of what the students of this country feel. So I don't think that the event management done by Rahul Gandhi or the PR done by Rahul Gandhi can hide the true feelings of the students of this country.
9: दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र को जिसने मेरा इतना साथ दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कल भी कंप्लेंट करी थी जो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज और रामदास कॉलेज और शिवाजी कॉलेज जैसे कॉलेज में बोगस वोटिंग की, बच्चों को पकड़ पकड़ के वोटिंग करवाई गई, उनके आईडी कार्ड्स ले लिए गए, उन्हीं को लेकर हम कोर्ट जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे।
10: के जो है वो तो हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी गंभीर बात यह है कि मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहां काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो है बाकी 2-3 सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पे हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो।
1: Moving on, amid his face-off with Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, former Union Minister and BJP leader Ravneet Singh Bittu has made a big claim. Bittu's team has alleged that he is still under house arrest in Ludhiana and that police officials are not allowing him to talk to anyone or move. This comes after Ravneet Bittu was detained by the Punjab police for allegedly waving tomatoes and eggs at CM Bhagwant Mann's convoy. Cops claim Bittu was released soon after, but the BJP leader's team insists he is under house arrest. Earlier, Bittu hit out at the chief minister and AAP government, saying the voice of the people cannot be suppressed by detaining them or registering police cases. He added that despite the detention, their spirits remain high.
11: ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।
12: ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ ਜਬ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ। ਔਰ ਅਬ ਵੀ ਓਪਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਪੋਲਟ ਪੇ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। उन स्टेट्स में नशा सप्लाई हो रहा है जहां ये लोगों की सरकार है।
13: देखिए साहब, रवनीत बिट्टू पे हमला हुआ, उससे पहले दो दिन पहले सांपला जी पे हमला हुआ, उससे सात दिन पहले हम वहाँ पे संगरूर जाके थे जिनके इसी तरह सुइसाइड हुआ, चिम्मा साहब को वो दिखा रहे थे हम पे। देखिए जो राजनीति, हम तो साहब सरफरोशी की तमन्ना, हम तो निकले हुए हैं, हमारे पे उतरे हमले। हमें चिंता है पंजाब के नौजवानों की साहब, हमें चिंता है हमारी माताओं बहनों की, हमारे को चिंता है व्यापारियों की जो काम कर रहे हैं, हमें आज चिंता है गाँव में कोई सुरक्षित नहीं है साहब, गाँव में बदमाशियाँ हो रही हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये साहब इतना पंजाब का हाल क्या साहब, क्यों होया कि पंजाब में, ये समझ नहीं आ रहा साहब ये।
1: In Bengal, the bi-poll battle is heating up even before polling day. From candidates withdrawing and making a U-turn to an arrest triggering political allegations, the contest in Nandigram and Rajinagar has already turned into a full-blown political battle. And with the fight over the party name and symbol now reaching the Supreme Court, Bengal's poll drama is only getting bigger. We're getting you all the details in this report.
14: In Bengal, every poll comes with a political twist. And as the bi-polls draw closer, the battle lines are only getting busier. Earlier today, a fresh setback hit Mamata Banerjee's camp. A day after her party's candidate in Nandigram pulled out, her Rajinagar candidate too announced his withdrawal.
15: Siddhanta Shigala bolchilo notun potek kormider tokhon kormider ke bhalo jaygay chilo ekhon kormider ke ar kono jaygay niye ashte parchi.
14: But then came the twist. Just over an hour after announcing his exit, Rabiul met police officials and then reversed his withdrawal. He now says he will continue to contest the October 6 polls. Insiders in Mamata camp have confirmed to India Today that Rabiul will contest under the new name and symbol, and Nandigram had already served up its own twists just a day earlier. After Sanchita Pradhan of Mamata's faction withdrew her candidature, Mamata announced that her camp would back the Congress candidate. Then came another turn. Hours later, Congress candidate Milan Pradhan was arrested in connection with four 19-year-old cases, three carrying murder-related charges. Today, he was produced before the court. Congress called the timing of the arrest no coincidence, while Didi alleged political vendetta.
15: दिक्कत ये है, ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है।
14: But the rebel faction and the BJP have hit back at Mamata's AITC.
16: ये जब माने बंगाली में कहावत है ना, अंगूर फॉल टॉक, ग्रेप्स आर सावर, तो ममता बनर्जी का भी ग्रेप्स बहुत सावर हो गया है।
17: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है।
14: द लीगल बैटल इज रनिंग पैरेलल टू द इलेक्टोरल वन। Mamata's faction has moved the Supreme Court, arguing that the Election Commission did not adequately consider its organizational structure before denying it the original party name and twin flower symbol. Team Didi has also filed a separate petition seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Rita Pratha Banerjee.
18: We don't disrespect the constitutional chair, but we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta.
14: So as Nandigram and Vijayanagar inch closer to the October bipoles, their political chessboard is getting more crowded, with candidates quitting, returning, arrests triggering allegations, and the battle over names and symbols moving all the way to the Supreme Court. And in Bengal, the poll drama clearly is not waiting for polling day. Bureau Report, India Today.
1: And well, the showdown over who controls the TMC has now reached the Supreme Court. Hours after Mamata camp and the Rita Bratta-led Rebel camp were allotted interim party names and symbols for the upcoming bipoles, Team Didi has knocked on the doors of the top court. Mamata's camp has challenged the Election Commission's decision to deny it the original TMC name and symbol and instead allotted a temporary name and a free symbol. The plea also argues that the poll panel did not adequately consider the party's organizational structure while taking into account the claims of rebel leaders against whom disqualification petitions are pending. A separate petition that has also been filed by Team Didi seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Rita Bratta Banerjee. The plea challenges the State Assembly Speaker's delay in deciding the disqualification petitions against the rebel legislators and also raises the issue of Rita Bratta Banerjee's recognition as leader of opposition.
18: We don't disrespect the constitutional chair. But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta. To satisfy the ego of a political party. Already आपने आपका पता है कि उन्होंने बोला था पहले नाम भी नहीं रखने दूंगा निशाना भी नहीं रखने दूंगा पहले ही बताया था
19: बुनियादी तौर पे फैसले बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी की सरकार करती है इलेक्शन कमीशन उन फैसलों को एग्जीक्यूट करता है ये तो फैसले सारे बीजेपी के ऑफिसेज में होते हैं सरकार के ऑफिसेज में होते हैं इलेक्शन कमीशन तो उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है उन पे अमल दरामद करता है इलेक्शन कमीशन अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया
20: लोगों से संपर्क करना शुरू किए थे सवेरे एक वर्चुअल मीटिंग हुआ हम तीन प्रेफरेंस दिए थे फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस सेकेंड वॉज वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस थर्ड वॉज डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन कमिश्नर बताए हम लोगों को क्यों पहले दो नाम दे नहीं सकते हैं थर्ड नाम दिया है और एनवेलप जहां चुनाव चिन्ह का सवाल है पहला जो हम लोग का प्रायोरिटी था वही हम लोगों को मिला है तो इंडिविजुअल कल्ट है इंडिविजुअल कल्ट का पार्टी है पॉलिटिक्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वारिशन ये सब का कोई मायने नहीं है कोई ओनरशिप नहीं होता है पॉलिटिकल सिस्टम में
21: देखिए ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का वो जाके देखे चलो
1: U.S. President signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in the crosshairs. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Here's a report.
22: A bill targeting Russia, but with eyes on India and China without naming them. Trump has signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers. Under the new law, the Trump administration can, with his nod, impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. Potentially, putting India and China in crosshairs. The legislation requires Trump to impose tariffs of up to 100% within 30 days on goods imported into the US from the five largest importers of Russian crude oil or gas. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Trump in the past has blamed India for imposing high tariffs on US goods.
0: Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now, they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff.
22: But India stands firm, asserting national interest is paramount. Ministry of External Affairs had said that India remains committed to ensuring energy security for its 1.4 billion people through diversified sourcing. New Delhi has flagged the potential impact on bilateral ties and global energy markets. The government says it will take all necessary measures to protect India's trade and economic interests.
2: हम लोग किसी देश के आधारित उस पर नहीं चलेंगे जो हमारे देश के जो हमारे देश के लिए अच्छा वो करेंगे जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं हम लोग हमेशा कहते हैं बहुत अनफेयर है और हम किसी देश के दबाव में नहीं है एनर्जी हमारा एक बहुत प्राइमरी कंसर्न है और हमारे देश के लोगों को जहां भी हमें कमर्शियली वायबल इकोनॉमिकल एनर्जी सोर्स मिलेगा हम वहां से एनर्जी लेंगे.
22: Earlier, Prime Minister Modi had made it clear that the interests of Indians are supreme, no matter what.
3: मैं आपको बार-बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है. दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे.
22: India has also defended buying Russian oil.
23: We didn't buy significant amount of Russian oil till 2022. Circumstances compelled us to get into that market. And I must say, the Russians have been steady suppliers because they put the cargoes out there and you go out there and buy oil, whichever is the most reasonable and available oil.
22: With the midterm polls around the corner, Trump is pulling out all the stops to avoid weakening his position, and that too at a time when end to Iran war seems a distant reality. And for India, it is still wait and watch game. Bureau Report, India Today.
1: After months of diplomatic pressure and threats of Greenland's annexation, Donald Trump has said that the United States has struck a deal with Denmark, which gives Washington permanent control over Greenland's security and would bar China and Russia from having a military presence in the Arctic territory. We're getting you all the details in this report.
24: For years, Greenland has been at the center of Donald Trump's foreign policy agenda. And now, the US says it has reached a security deal with Denmark and Greenland. The deal gives Washington a permanent security role on the island. Sharing a post on his social media, US President Donald Trump said Washington will have the ability to do what is necessary to secure and defend Greenland and the United States. Trump says the agreement comes at no cost to the US, bars adversaries from establishing military bases or maintaining a military presence on the island, and is an infinite life deal with no end. The US also wants to make sure that its rivals cannot establish a military foothold in Greenland. No non-NATO country would be allowed to establish a military base or maintain troops in Greenland. That means preventing China and Russia from gaining a military or strategic foothold on the island. US Secretary of State Marco Rubio has called the agreement a historic deal for both countries and a big win for Washington. Rubio says Greenland will remain part of North America's strategic defense area, while adversaries will be kept out of the island and its surrounding region. Danish Prime Minister Frederiksen's office said agreement reconciles the sovereignty and territorial integrity of Greenland. Greenland's Prime Minister says the agreement recognizes Greenland's interests and strengthens its place in international cooperation.
25: Strong support we have had from all European partners.
24: The agreement is expected to be signed during the upcoming UN General Assembly session and will then have to go through the required parliamentary procedures in Denmark and Greenland. A permanent security role, expanded military access, and stronger restrictions on rival powers in this strategically important Arctic territory. This is what makes the Greenland deal so significant. And that is exactly why this deal matters. Bureau Report, India Today.
1: It's a girl once again for Bollywood power couple Deepika Padukone and Ranveer Singh. Just days after seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple, the couple announced the joyous arrival of their second baby girl on Instagram. Little Dua is officially a big sister and the family of three has officially grown into a happy family of four. Congratulations pouring in for the star couple as they step into this beautiful new chapter. Take a look.
4: Deepika Padukone and Ranveer Singh are parents again. The couple has welcomed their second child, a baby girl. They shared the news jointly on Instagram with fans. The announcement was simple and intimate, with the couple using an evil eye protection emoji alongside the happy news. The arrival of their second daughter comes just a day after Deepika and Ranveer were spotted seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple. The couple visited the temple with family, with Ranveer seen holding Deepika's hand as they made their way inside. Interestingly, this is not the first time the couple has turned to Bappa ahead of a major family milestone. In 2024, Deepika and Ranveer had also visited Siddhivinayak before welcoming their first child. And now, their daughter Dua Padukone Singh has officially become a big sister. Deepika and Ranveer welcomed Dua on September 8, 2024. The couple had largely kept their daughter away from the public eye initially before sharing her first pictures with fans. Now, with the arrival of their second baby girl, the family of three has become a family of four. The couple has announced their second pregnancy earlier this year through a joint social media post, with Dua featuring in the announcement. Since then, fans have closely followed Deepika's pregnancy journey, from her public appearances to their visits to Mumbai's iconic Ganpati Pandals. Their latest temple visit has already sparked excitement among fans, and now the reason behind the prayers has become even more special. Bureau Report, India Today.
1: Time now for a short break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
5: Watching India Today.

0: leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki gooj and shows where the fate of the youth lies. However, NSUI has alleged that the Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSUI President Vinod Jakar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
1: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
2: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
1: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
2: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
1: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
2: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे जाते हैं।
1: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
3: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपति की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपति उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
4: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए?
5: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वो अगर आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
4: तो क्या छात्रों की गूंज जब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजे आए
5: हैं, गूंज कहाँ है? ये जो जीत है ये धमाका है।
4: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका?
5: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
6: जो आवाज है, यह आवाज आज देश के धारा के साथ, देश के विकास की धारा के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं राहुल गांधी जो NSUI को डायरेक्ट

0: are watching India Today.
1: India's biggest student poll verdict. BJP wins Big Bang Gen Z campus polls. BJP students wing ABVP has won 3 of the 4 central posts in the Delhi University elections, giving Prime Minister Modi's Gen Z outreach a big boost. Yash Dabas winning president, Riya Chhabri winning secretary, Lakshya Raj Singh winning joint secretary. Independent candidate Dipanshu Shaukeen has won the vice president post. Congress students wing NSUI suffers a humiliating loss. The Congress-backed NSUI failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki goonj and shows where the fate of the youth lies. However, NSUI has alleged that the Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSUI President Vinod Jakhar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
2: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
3: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
2: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
3: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और एनएसयूआई को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
2: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
3: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं, और जो भी एनएसयूआई के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो वहां यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
2: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
4: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
5: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए?
6: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
5: तो क्या छात्रों की गूंज जब गूंज रही है आपको लग रहा है सर जो नतीजे आए?
6: गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है।
5: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका?
6: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
7: जो आवाज है यह आवाज आज देश के धारा के साथ, देश के विकास के धारा के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं राहुल गांधी जो NSUI को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आज पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। NSUI को जीरो अर्थात एक भी सीट डूसू में नहीं मिला है। एक बात स्पष्ट है, राहुल से नहीं हो पाएगा। राहुल ये जाके जो कर रहे हैं ना, क्या गूंज, झूठ की गूंज, उस झूठ की गूंज की आज हवा निकल गई है, झूठ की गूंज की पोल खुल गई है।
8: See, all of us have seen various reports around how the so-called छात्रों की गूंज programs have been organized by Rahul Gandhi and Congress Party. We have seen how students have been lured, what have they been offered, how they have been called, and there's also a doubt that those attending such programs are even students or not. We have seen viral videos on social media where students or influencers are offered money to attend the program of Rahul Gandhi. The students who have voted in Delhi University today, they have voted from their own will. They have not casted their vote as Rahul Gandhi would organize his events. They have not casted their votes on by being lured by somebody. They have casted their vote by their will, giving a mandate of what the students of this country feel. So I don't think that the event management done by Rahul Gandhi or the PR done by Rahul Gandhi can hide the true feelings of the students of this country.
9: Delhi Vishwavidyalay ke ek chhatr ko jisne mera itna saath diya uska bahut bahut dhanyawad. Humne kal bhi complaint kari thi jo Swami Sardanand College, jo Ramdas College aur Shivaji College jaise colleges mein bogus voting ki, bachon ko pakad pakad ke voting karwai gayi, उनके आईडी कार्ड ले लिए गए, उन्हीं को लेकर हम कोर्ट जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे।
10: के जो है वो तो हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी गंभीर बात यह है कि मैंने अभी सुना है कि NSUI के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो है बाकी 2-3 सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पे हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो।
1: मूविंग ऑन, अमिड हिज फेस ऑफ विद पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर रवनीत सिंह बिट्टू हैज मेड अ बिग क्लेम। बिट्टूज टीम हैज अलेज्ड दैट ही इज स्टिल अंडर हाउस अरेस्ट इन लुधियाना एंड दैट पुलिस ऑफिशियल्स आर नॉट अलाउइंग हिम टू टॉक टू एनीवन और मूव। दिस कम्स आफ्टर रवनीत बिट्टू वाज डिटेन्ड बाय द पंजाब पुलिस फॉर अलेजेडली वेविंग टोमेटोज एंड एग्स एट सीएम भगवंत मान्स कॉन्वॉय। Cops claim Bittu was released soon after, but the BJP leader's team insists he is under house arrest. Earlier, Bittu hit out at the chief minister and AAP government, saying the voice of the people cannot be suppressed by detaining them or registering police cases. He added that despite the detention, their spirits remain high.
11: Je himmat a mukhyamantri chandiyan dikha rahe haan kal Nitin Naveen ji nu ajj sade yatra mukhyamantri aayi hai Delhi di ohnu तेरे सारे पासे ते तेनू छड़ दांगे। फिर जे असीं ये काम करन लग गए तुसीं किसे स्टेट चले जाओगे? जे तुसीं कल नू यूपी च गुजरात राजस्थान जाने हो जां चलो छड़ो ओदी गल, पंजाब च अज मैं करके दिखाया ना, जे बीजेपी रोज ये करन लगी यार, अज तक मुख्यमंत्री रहे सरकारां रहियां कदे किसने ने हमला नहीं कराया सी।
12: देखो वो नशे के खिलाफ बात करते हैं, बात करना ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उन्हें कोई हक नहीं है नशे के ऊपर बात करने का। क्यों नहीं है? नशे की बात पंजाब में जब शुरू हुई थी, जब इन लोगों की सरकार थी पंजाब में, नहीं तो नशा जानते नहीं था कोई पंजाब में। और अब भी ओपन मैटर है कितना नशा मुद्रा पोर्ट पे पकड़ा गया है, उन स्टेट्स में नशा सप्लाई हो रहा है जहां ये इन लोगों की सरकार है।
13: देखिए साहब, रवनीत बिट्टू पे हमला हुआ, उससे पहले दो दिन पहले सांपला जी पे हमला हुआ, उससे सात दिन पहले हम वहाँ पे संगरूर जाके आए थे जिनके इसी तरह सुइसाइड हुआ, चीमा साहब को वो दिखा रहे थे हम पे। देखिए जो राजनीति, हम तो साहब सरफरोशी की तो नाम तो निकले हुए हैं, हमारे पे उतरे हमले। हमें चिंता है पंजाब के नौजवानों की साहब, हमें चिंता है हमारी माताओं बहनों की, हमारे को चिंता है व्यापारियों की जो काम कर रहे हैं, हमें आज चिंता है गाँव में कोई सुरक्षित नहीं है साहब, गाँव में बदमाशियाँ हो रही हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये सब इतना पंजाब का हाल क्या सब क्यों होया कि पंजाब में, ये समझ नहीं आ रहा साहब ये।
1: In Bengal, the bi-poll battle is heating up even before polling day. From candidates withdrawing and making a U-turn to an arrest triggering political allegations, the contest in Nandigram and Rajinagar has already turned into a full-blown political battle. And with the fight over the party name and symbol now reaching the Supreme Court, Bengal's poll drama is only getting bigger. We're getting you all the details in this report.
14: In Bengal, every poll comes with a political twist. And as the bi-polls draw closer, the battle lines are only getting busier. Earlier today, a fresh setback hit Mamata Banerjee's camp. A day after her party's candidate in Nandigram pulled out, her Rajinagar candidate too announced his withdrawal.
15: আর সিদ্ধান্ত সেগুলো বলছিল নতুন প্রতীক কর্মীদের, তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গায় ছিল, এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি না।
14: But then came the twist. Just over an hour after announcing his exit, Rabiul met police officials and then reversed his withdrawal. He now says he will continue to contest the October 6 polls. Insiders in Mamata camp have confirmed to India Today that Rabiul will contest under the new name and symbol. And Nandigram had already served up its own twists just a day earlier. After Sanchita Pradhan of Mamata's faction withdrew her candidature, Mamata announced that her camp would back the Congress candidate. Then came another turn. Hours later, Congress candidate Milan Pradhan was arrested in connection with four 19-year-old cases, three carrying murder-related charges. Today, he was produced before the court. Congress called the timing of the arrest no coincidence, while Didi alleged political vendetta.
16: Look, these are scared people. दिक्कत ये है, ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है।
14: But the rebel faction and the BJP have hit back at Mamata's AITC.
17: ये जब माने बंगाली में कहावत है ना, अंगूर फल टॉक, ग्रेप्स आर सावर, तो ममता बनर्जी का भी ग्रेप्स बहुत सावर हो गया है।
18: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है।
14: द लीगल बैटल इज रनिंग पैरेलल टू द इलेक्टोरल वन। Mamata's faction has moved the Supreme Court, arguing that the Election Commission did not adequately consider its organizational structure before denying it the original party name and twin flower symbol. Team Didi has also filed a separate petition seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritabrata Banerjee.
19: We don't disrespect the constitutional chair, but we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta.
14: So as Nandigram and Vijayanagar inch closer to the October bipolls, their political chessboard is getting more crowded, with candidates quitting, returning, arrests triggering allegations, and the battle over names and symbols moving all the way to the Supreme Court. And in Bengal, the poll drama clearly is not waiting for polling day. Bureau Report, India Today.
1: And well, the showdown over who controls the TMC has now reached the Supreme Court. Hours after Mamata camp and the Rita Bratta-led Rebel camp were allotted interim party names and symbols for the upcoming bipolls, Team Didi has knocked on the doors of the top court. Mamata's camp has challenged the Election Commission's decision to deny it the original TMC name and symbol and instead allotted a temporary name and a free symbol. The plea also argues that the poll panel did not adequately consider the party's organizational structure while taking into account the claims of rebel leaders against whom disqualification petitions are pending. A separate petition that has also been filed by Team Didi seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Rita Bratta Banerjee. The plea challenges the State Assembly Speaker's delay in deciding the disqualification petitions against the rebel legislators and also raises the issue of Rita Bratta Banerjee's recognition as leader of opposition.
19: We don't disrespect the constitutional chair. But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta. To satisfy the ego of a political party. Already आपने आपका पता है कि उन्होंने बोला था पहले नाम भी नहीं रखने दूंगा निशाना भी नहीं रखने दूंगा पहले ही बताया था
20: बुनियादी तौर पे फैसले बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी की सरकार करती है इलेक्शन कमीशन उन फैसलों को एग्जीक्यूट करता ये तो फैसले सारे बीजेपी के ऑफिसेज में होते हैं सरकार के ऑफिसेज में होते हैं इलेक्शन कमीशन तो उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है उन पे अमल दरामद करता है इलेक्शन कमीशन अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया
21: लोगों से संपर्क करना शुरू किए थे सवेरे एक वर्चुअल मीटिंग हुआ हम तीन प्रेफरेंस दिए थे फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस सेकेंड वॉज वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस थर्ड वॉज डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन कमिश्नर बताए हम लोगों को क्यों पहले दो नाम दे नहीं सकते हैं थर्ड नाम दिया है और इनवेलप जहां चुनाव चिन्ह का सवाल है पहला जो हम लोग का प्रायोरिटी था वही हम लोगों को मिला है तो इंडिविजुअल कल्ट है इंडिविजुअल कल्ट का पार्टी है पॉलिटिक्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वारिशन ये सब का कोई मायने नहीं है कोई ओनरशिप नहीं होता है पॉलिटिकल सिस्टम में
22: देखिए ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का वो जाके देखे चलो
1: Moving on, Prime Minister Narendra Modi has drawn a sharp line in the sand over India's energy future. Addressing a major global conference today, Modi launched a scathing attack on environmentalists, calling out those who preach green values with long speeches only to rush to court and stall critical nuclear projects. He stressed that India's energy transition is not restricted to solar and wind, but also includes nuclear power, hydropower and other low-carbon sources. The government has set an ambitious target of 100 gigawatts of nuclear capacity by 2047 with plans to expand participation in the sector and develop small modulator reactors. Modi also highlighted India's rapid growth in solar energy, saying installed capacity has surged from around 2 gigawatts 12 years ago to more than 160 gigawatts today. From rooftop solar reaching millions of homes to solar pumps benefiting farmers, the Prime Minister underlined the scale of India's clean energy push.
23: और जो लोग एनवायरमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब चार गुना बढ़ गई है
0: भारत सोलर एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी तक की क्लीन एनर्जी की यात्रा कर रहा है, लेकिन कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट इस मामले को लेकर बार बार कोर्ट जाते रहते हैं।
2: नहीं, पिछले काफी दिनों से जब इस तरह की योजनाएं अस्तित्व में आती हैं, तो कई संस्थाएं और व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह पर्यावरणविद होने का दावा और वादा करके अदालत में जाकर के इन योजनाओं पर रोक लगाने का याचिकाएं दायर करते हैं, तो कई बार जो ये योजनाएं लंबित हो जाती हैं, जिससे राष्ट्र को नुकसान होता है। मैं प्रधानमंत्री सहमत।
1: U.S. President signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in the crosshairs. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Here's a report.
3: A bill targeting Russia, but with eyes on India and China without naming them. Trump has signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers. Under the new law, the Trump administration can, with his nod, impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in crosshairs. The legislation requires Trump to impose tariffs of up to 100% within 30 days on goods imported into the US from the five largest importers of Russian crude oil or gas. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Trump in the past has blamed India for imposing high tariffs on U.S. goods.
4: Prime Minister Modi's a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now, they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff.
3: But India stands firm, asserting national interest is paramount. Ministry of External Affairs had said that India remains committed to ensuring energy security for its 1.4 billion people through diversified sourcing. New Delhi has flagged the potential impact on bilateral ties and global energy markets. The government says it will take all necessary measures to protect India's trade and economic interests.
2: हम लोग किसी देश के आधारित उस पर नहीं चलेंगे, जो हमारे देश के लिए अच्छा वो करेंगे। जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं बहुत अनफेयर है और हम किसी देश के दबाव में नहीं है। एनर्जी हमारा एक बहुत प्राइमरी कंसर्न है और हमारे देश के लोगों को जहां भी हमें कमर्शियली वायबल इकोनॉमिकल एनर्जी सोर्स मिलेगा, हम वहां से एनर्जी लेंगे।
3: Earlier, Prime Minister Modi had made it clear that the interests of Indians are supreme, no matter what.
23: मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे।
3: India has also defended buying Russian oil.
24: We didn't buy significant amount of Russian oil till 2022. Circumstances compelled us to get into that market. And I must say, the Russians have been steady suppliers because they put the cargoes out there and you go out there and buy oil, whichever is the most reasonable and available oil.
3: With the midterm polls around the corner, Trump is pulling out all the stops to avoid weakening his position, and that too at a time when end to Iran war seems a distant reality. And for India, it is still wait and watch game. Bureau Report, India Today.
1: After months of diplomatic pressure and threats of Greenland's annexation, Donald Trump has said that the United States has struck a deal with Denmark, which gives Washington permanent control over Greenland's security and would bar China and Russia from having a military presence in the Arctic territory. We're getting you all the details in this report.
14: For years, Greenland has been at the center of Donald Trump's foreign policy agenda. And now, the US says it has reached a security deal with Denmark and Greenland. The deal gives Washington a permanent security role on the island. Sharing a post on his social media, US President Donald Trump said Washington will have the ability to do what is necessary to secure and defend Greenland and the United States. Trump says the agreement comes at no cost to the US, bars adversaries from establishing military bases or maintaining a military presence on the island, and is an infinite life deal with no end. The US also wants to make sure that its rivals cannot establish a military foothold in Greenland. No non-NATO country would be allowed to establish a military base or maintain troops in Greenland. That means preventing China and Russia from gaining a military or strategic foothold on the island. U.S. Secretary of State Marco Rubio has called the agreement a historic deal for both countries and a big win for Washington. Rubio says Greenland will remain part of North America's strategic defense area, while adversaries will be kept out of the island and its surrounding region. Danish Prime Minister Frederiksen's office said agreement reconciles the sovereignty and territorial integrity of Greenland. Greenland's Prime Minister says the agreement recognizes Greenland's interests and strengthens its place in international cooperation.
5: Strong support we have had from all European partners.
14: The agreement is expected to be signed during the upcoming UN General Assembly session and will then have to go through the required parliamentary procedures in Denmark and Greenland. A permanent security role, expanded military access, and stronger restrictions on rival powers in this strategically important Arctic territory. This is what makes the Greenland deal so significant. And that is exactly why this deal matters. Bureau Report, India Today.
1: It's a girl once again for Bollywood power couple Deepika Padukone and Ranveer Singh. Just days after seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple, the couple announced the joyous arrival of their second baby girl on Instagram. Little Dua is officially a big sister and the family of three has officially grown into a happy family of four. Congratulations pouring in for the star couple as they step into this beautiful new chapter. Take a look.
6: Deepika Padukone and Ranveer Singh are parents again. The couple has welcomed their second child, a baby girl. They shared the news jointly on Instagram with fans. The announcement was simple and intimate, with the couple using an evil eye protection emoji alongside the happy news. The arrival of their second daughter comes just a day after Deepika and Ranveer were spotted seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple. The couple visited the temple with family, with Ranveer seen holding Deepika's hand as they made their way inside. Interestingly, this is not the first time the couple has turned to Bappa ahead of a major family milestone. In 2024, Deepika and Ranveer had also visited Siddhivinayak before welcoming their first child. And now, their daughter Dua Padukone Singh has officially become a big sister. Deepika and Ranveer welcomed Dua on September 8, 2024. The couple had largely kept their daughter away from the public eye initially before sharing her first pictures with fans. Now, with the arrival of their second baby girl, the family of three has become a family of four. The couple has announced their second pregnancy earlier this year through a joint social media post, with Dua featuring in the announcement. Since then, fans have closely followed Deepika's pregnancy journey, from her public appearances to their visits to Mumbai's iconic Ganpati Pandals. Their latest temple visit has already sparked excitement among fans, and now the reason behind the prayers has become even more special. Bureau Report, India Today.
1: Time now for a short break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
7: You are watching India Today.

0: swing NSUI suffers a humiliating loss. The Congress-backed NSUI failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki goonj and shows where the fate of the youth lies. However, NSUI has alleged that the Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSUI President Vinod Chakar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
1: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
2: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
1: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
2: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और एनएसयूआई को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
1: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
2: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी एनएसयूआई के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे जाते हैं।
1: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
3: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
4: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
5: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वो वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
4: तो क्या छात्रों की गूंज अब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजा आए?
5: गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है।
4: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका?
5: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
6: जो आवाज है, यह आवाज

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: Watching India Today.
2: India's biggest student poll verdict. BJP wins Big Bang Gen Z campus polls. BJP students wing ABVP has won three of the four central posts in the Delhi University elections, giving Prime Minister Modi's Gen Z outreach a big boost. Yash Dabas winning president, Riya Chhavri winning secretary, Lakshya Raj Singh winning joint secretary. Independent candidate Dipanshu Shaukeen has won the vice president post. Congress students wing NSUI suffers a humiliating loss. The Congress-backed NSUI failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki goonj and shows where the fate of the youth lies. However, NSUI has alleged that the Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSUI President Vinod Chakar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
3: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
4: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
3: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
4: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और एनएसयूआई को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
3: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
4: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी एनएसयूआई के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे जाते हैं।
3: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल तीन पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
5: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी तीन सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
6: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
7: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है पहली बात, दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
8: तो क्या छात्रों की गूंज अब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजे आए?
7: गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है।
8: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका?
7: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
9: जो आवाज है, यह आवाज आज देश के धारा के साथ, देश के विकास के धारा के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं राहुल गांधी जो NSUI को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आज पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। NSUI को जीरो अर्थात एक भी सीट डूसू में नहीं मिला है। एक बात स्पष्ट है, राहुल से नहीं हो पाएगा। राहुल ये जाके जो कर रहे हैं ना, क्या गूंज, झूठ की गूंज, उस झूठ की गूंज की आज हवा निकल गई है, झूठ की गूंज की पोल खुल गई है।
10: See, all of us have seen various reports around how the so-called छात्रों की गूंज programs have been organized by Rahul Gandhi and Congress Party. We have seen how students have been lured, what have they been offered, how they have been called, and there's also a doubt that those attending such programs are even students or not. We have seen viral videos on social media where students or influencers are offered money to attend the program of Rahul Gandhi. The students who have voted in Delhi University today, they have voted from their own will. They have not casted their vote as Rahul Gandhi would organize his events. They have not casted their votes on by being lured by somebody. They have casted their vote by their will, giving a mandate of what the students of this country feel. So I don't think that the event management done by Rahul Gandhi or the PR done by Rahul Gandhi can hide the true feelings of the students of this country.
11: Delhi Vishwavidyalay ke ek chhatra ko isne mera itna saath diya, uska bahut bahut dhanyawad. Humne kal bhi complaint kari thi, jo Swami Sardanand College aur Ramdas College aur Shivaji College jaise college mein bogus voting ki, bachon ko pakad pakad ke voting karwai gayi,
12: उनके आईडी कार्ड्स ले लिए गए,
11: उन्हीं को लेकर हम कोर्ट जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे।
13: के जो है वो तो हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी गंभीर बात यह है कि मैंने अभी सुना है कि NSUI के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो है बाकी 2-3 सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पे हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो।
2: Moving on, amid his face-off with Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, former Union Minister and BJP leader Ravneet Singh Bittu has made a big claim. Bittu's team has alleged that he is still under house arrest in Ludhiana and that police officials are not allowing him to talk to anyone or move. This comes after Ravneet Bittu was detained by the Punjab police for allegedly waving tomatoes and eggs at CM Bhagwant Mann's convoy. Cops claim Bittu was released soon after, but the BJP leader's team insists he is under house arrest. Earlier, Bittu hit out at the chief minister and AAP government, saying the voice of the people cannot be suppressed by detaining them or registering police cases. He added that despite the detention, their spirits remain high.
14: ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸਨੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ
15: ਦੇਖੋ ਵੋ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯੇ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਨ੍ਹੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ ਜਬ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਤੋ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਔਰ ਅਬ ਵੀ ਓਪਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਮੇਂ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਉਨ ਸਟੇਟਸ ਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਯੇ ਲੋਗ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ
16: ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਿਬ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਉਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਉਸ ਸੇ ਸਾਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਥੇ ਜਿਨਕੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਹੁਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਮ ਪੇ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ ਪੇ ਉਤਰੇ ਹਮਲੇ ਹਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨੋ ਹਮਾਰੀ ਮਾਤਾਓਂ ਬਹਿਣੋਂ ਕੀ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਓਂ ਕੀ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮੇਂ ਆਜ ਚਿੰਤਾ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਹਾਂ ਪੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਜਾਣਤੇ ਯੇ ਸਭ ਇਤਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਹਾਲ ਕਿਆ ਸਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਯੇ
2: In Bengal, the bi-poll battle is heating up even before polling day. From candidates withdrawing and making a U-turn to an arrest triggering political allegations, the contest in Nandigram and Rajinagar has already turned into a full-blown political battle. And with the fight over the party name and symbol now reaching the Supreme Court, Bengal's poll drama is only getting bigger. We're getting you all the details in this report.
17: In Bengal, every poll comes with a political twist. And as the bi-polls draw closer, the battle lines are only getting busier. Earlier today, a fresh setback hit Mamata Banerjee's camp. A day after her party's candidate in Nandigram pulled out, her Rajinagar candidate too announced his withdrawal.
18: আর সিদ্ধান্ত সেগুলা বলছিল নতুন প্রতীক কর্মীদের তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গায় ছিল এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি না
17: But then came the twist. Just over an hour after announcing his exit, Rabiul met police officials and then reversed his withdrawal. He now says he will continue to contest the October 6 polls. Insiders in Mamata camp have confirmed to India Today that Rabiul will contest under the new name and symbol. And Nandigram had already served up its own twists just a day earlier. After Sanchita Pradhan of Mamata's faction withdrew her candidature, Mamata announced that her camp would back the Congress candidate. Then came another turn. Hours later, Congress candidate Milan Pradhan was arrested in connection with four 19-year-old cases, three carrying murder-related charges. Today, he was produced before the court. Congress called the timing of the arrest no coincidence, while Didi alleged political vendetta.
19: Look, these are scared people. दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है
17: बट द रेबल फैक्शन एंड द बीजेपी हैव हिट बैक एट ममता एआईटीसी
20: ये जब माने बंगाली में एक कहावत है ना अंगूर फॉल टॉक ग्रेप्स आर सावर तो ममता बनर्जी का अभी ग्रेप्स बहुत सावर हो गया है
21: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है
17: द लीगल बैटल इज रनिंग पैरेलल टू द इलेक्टोरल वन Mamata's faction has moved the Supreme Court, arguing that the Election Commission did not adequately consider its organizational structure before denying it the original party name and twin flower symbol.
0: Team Didi has also filed a separate petition seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritabrata Banerjee.
1: We don't disrespect the constitutional chair. But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta.
0: So as Nandigram and Vijayanagar inch closer to the October bipoles, their political chessboard is getting more crowded, with candidates quitting, returning, arrests triggering allegations, and the battle over names and symbols moving all the way to the Supreme Court. And in Bengal, the poll drama clearly is not waiting for polling day. Bureau Report, India Today.
2: And well, the showdown over who controls the TMC has now reached the Supreme Court. Hours after Mamata camp and the Ritabrata-led rebel camp were allotted interim party names and symbols for the upcoming bipoles, Team Didi has knocked on the doors of the top court. Mamata's camp has challenged the Election Commission's decision to deny it the original TMC name and symbol and instead allotted a temporary name and a free symbol. The plea also argues that the poll panel did not adequately consider the party's organizational structure while taking into account the claims of rebel leaders against whom disqualification petitions are pending. A separate petition that has also been filed by Team Didi seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritabrata Banerjee. The plea challenges the State Assembly Speaker's delay in deciding the disqualification petitions against the rebel legislators and also raises the issue of Ritabrata Banerjee's recognition as leader of opposition.
1: We don't disrespect the constitutional chair. But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta. To satisfy the ego of a political party, ऑलरेडी आपने आपका पता है कि उन्होंने बोला था पहले नाम भी नहीं रखने दूंगा निशाना भी नहीं रखने दूंगा पहले ही बताया था
22: बुनियादी तौर पे फैसले बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी की सरकार करती है इलेक्शन कमीशन उन फैसलों को एग्जीक्यूट करता है ये तो फैसले सारे बीजेपी के ऑफिसेज में होते हैं सरकार के ऑफिसेज में होते हैं इलेक्शन कमीशन तो उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है उन पे अमल दरामद करता है इलेक्शन कमीशन अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया
23: लोगों से संपर्क करना शुरू किए थे सवेरे एक वर्चुअल मीटिंग हुआ हम तीन प्रेफरेंस दिए थे फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस सेकेंड वॉज वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस थर्ड वॉज डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन कमिश्नर बताए हम लोगों को क्यों पहले दो नाम दे नहीं सकते हैं थर्ड नाम दिया है और इनवेलप जहां चुनाव चिन्ह का सवाल है पहला जो हम लोग का प्रायोरिटी था वही हम लोगों को मिला है तो इंडिविजुअल कल्ट है इंडिविजुअल कल्ट का पार्टी है पॉलिटिक्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वारिशन ये सब का कोई मायने नहीं है कोई ओनरशिप नहीं होता है पॉलिटिकल सिस्टम में
24: देखिए ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का वो जाके देखे
2: Moving on, Prime Minister Narendra Modi has drawn a sharp line in the sand over India's energy future. Addressing a major global conference today, Modi launched a scathing attack on environmentalists, calling out those who preach green values with long speeches only to rush to court and stall critical nuclear projects. He stressed that India's energy transition is not restricted to solar and wind, but also includes nuclear power, hydropower and other low-carbon sources. The government has set an ambitious target of 100 gigawatts of nuclear capacity by 2047 with plans to expand participation in the sector and develop small modulator reactors. Modi also highlighted India's rapid growth in solar energy, saying installed capacity has surged from around 2 gigawatts 12 years ago to more than 160 gigawatts today. From rooftop solar reaching millions of homes to solar pumps benefiting farmers, the Prime Minister underlined the scale of India's clean energy push.
3: और जो लोग एनवायरमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए, इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है।
4: भारत सोलर एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी तक की क्लीन एनर्जी की यात्रा कर रहा है, लेकिन कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट इस मामले को लेकर बार बार कोर्ट जाते रहते हैं।
5: नहीं, पिछले काफी दिनों से जब इस तरह की योजनाएं अस्तित्व में आती हैं, तो कई संस्थाएं और व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह पर्यावरणविद होने का दावा और वादा करके अदालत में जाकर के इन योजनाओं पर रोक लगाने का याचिकाएं दायर करते हैं, तो कई बार जो ये योजनाएं लंबित हो जाती हैं, जिससे राष्ट्र को नुकसान होता है। मैं प्रधानमंत्री सहमत।
2: U.S. President signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in the crosshairs. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Here's a report.
6: A bill targeting Russia, but with eyes on India and China without naming them. Trump has signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers. Under the new law, the Trump administration can, with his nod, impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in crosshairs. The legislation requires Trump to impose tariffs of up to 100% within 30 days on goods imported into the US from the 5 largest importers of Russian crude oil or gas. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Trump in the past has blamed India for imposing high tariffs on U.S. goods.
8: Prime Minister Modi's a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now, they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff.
6: But India stands firm, asserting national interest is paramount. Ministry of External Affairs had said that India remains committed to ensuring energy security for its 1.4 billion people through diversified sourcing. New Delhi has flagged the potential impact on bilateral ties and global energy markets. The government says it will take all necessary measures to protect India's trade and economic interests.
25: हम लोग किसी देश के आधारित उस पर नहीं चलेंगे, जो हमारे देश के लिए अच्छा वो करेंगे। जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं बहुत अनफेयर है और हम किसी देश के दबाव में नहीं है। एनर्जी हमारा एक बहुत प्राइमरी कंसर्न है और हमारे देश के लोगों को जहां भी हमें कमर्शियली वाइबल इकोनॉमिकल एनर्जी सोर्स मिलेगा, हम वहां से एनर्जी लेंगे।
6: Earlier, Prime Minister Modi had made it clear that the interests of Indians are supreme, no matter what.
3: मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे।
6: India has also defended buying Russian oil.
26: We didn't buy significant amount of Russian oil till 2022. Circumstances compelled us to get into that market. And I must say, the Russians have been steady suppliers because they put the cargoes out there and you go out there and buy oil, whichever is the most reasonable and available oil.
6: With the midterm polls around the corner, Trump is pulling out all the stops to avoid weakening his position, and that too at a time when end to Iran war seems a distant reality. And for India, it is still wait and watch game. Bureau Report, India Today.
7: After months of diplomatic pressure and threats of Greenland's annexation, Donald Trump has said that the United States has struck a deal with Denmark, which gives Washington permanent control over Greenland's security and would bar China and Russia from having a military presence in the Arctic territory. We're getting you all the details in this report.
9: For years, Greenland has been at the center of Donald Trump's foreign policy agenda. And now, the US says it has reached a security deal with Denmark and Greenland. The deal gives Washington a permanent security role on the island. Sharing a post on his social media, US President Donald Trump said Washington will have the ability to do what is necessary to secure and defend Greenland and the United States. Trump says the agreement comes at no cost to the US, bars adversaries from establishing military bases or maintaining a military presence on the island, and is an infinite life deal with no end. The US also wants to make sure that its rivals cannot establish a military foothold in Greenland. No non-NATO country would be allowed to establish a military base or maintain troops in Greenland. That means preventing China and Russia from gaining a military or strategic foothold on the island. US Secretary of State Marco Rubio has called the agreement a historic deal for both countries and a big win for Washington. Rubio says Greenland will remain part of North America's strategic defense area, while adversaries will be kept out of the island and its surrounding region. Danish Prime Minister Frederiksen's office said agreement reconciles the sovereignty and territorial integrity of Greenland. Greenland's Prime Minister says the agreement recognizes Greenland's interests and strengthens its place in international cooperation.
10: Strong support we have had from all European partners.
9: The agreement is expected to be signed during the upcoming UN General Assembly session and will then have to go through the required parliamentary procedures in Denmark and Greenland. A permanent security role, expanded military access, and stronger restrictions on rival powers in this strategically important Arctic territory. This is what makes the Greenland deal so significant. And that is exactly why this deal matters. Bureau Report, India Today.
7: It's a girl once again for Bollywood power couple Deepika Padukone and Ranveer Singh. Just days after seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple, the couple announced the joyous arrival of their second baby girl on Instagram. Little Dua is officially a big sister and the family of three has officially grown into a happy family of four. Congratulations pouring in for the star couple as they step into this beautiful new chapter. Take a look.
11: Deepika Padukone and Ranveer Singh are parents again. The couple has welcomed their second child, a baby girl. They shared the news jointly on Instagram with fans. The announcement was simple and intimate, with the couple using an evil eye protection emoji alongside the happy news. The arrival of their second daughter comes just a day after Deepika and Ranveer were spotted seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple. The couple visited the temple with family, with Ranveer seen holding Deepika's hand as they made their way inside. Interestingly, this is not the first time the couple has turned to Bappa ahead of a major family milestone. In 2024, Deepika and Ranveer had also visited Siddhivinayak before welcoming their first child. And now, their daughter Dua Padukone Singh has officially become a big sister. Deepika and Ranveer welcomed Dua on September 8, 2024. The couple had largely kept their daughter away from the public eye initially before sharing her first pictures with fans. Now, with the arrival of their second baby girl, the family of three has become a family of four. The couple has announced their second pregnancy earlier this year through a joint social media post, with Dua featuring in the announcement. Since then, fans have closely followed Deepika's pregnancy journey, from her public appearances to their visits to Mumbai's iconic Ganpati Pandals. Their latest temple visit has already sparked excitement among fans, and now the reason behind the prayers has become even more special. Bureau Report, India Today.
7: Time now for a short break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
12: You are watching India Today.

0: Secretary, Lakshya Raj Singh, winning Joint Secretary, independent candidate Dipanshu Shaukeen has won the Vice President post. Congress Students Wing NSUI suffers a humiliating loss. The Congress-backed NSUI failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki goonj and shows where the fate of the youth lies. However, NSUI has alleged that the Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSUI President Vinod Chakar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
1: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
2: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
1: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
2: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और एनएसयूआई को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
1: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
2: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी एनएसयूआई के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
1: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
3: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपति की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपति उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
4: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए हैं बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
5: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
4: तो क्या छात्रों की गूंज अब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजे आए?
5: गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है।
4: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका?
5: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You are watching India Today.
2: India's biggest student poll verdict. BJP wins Big Bang Gen Z campus polls. BJP students wing ABVP has won 3 of the 4 central posts in the Delhi University elections, giving Prime Minister Modi's Gen Z outreach a big boost. Yash Dabas winning president, Riya Chowdhury winning secretary, Lakshya Raj Singh winning joint secretary. Independent candidate Dipanshu Shaukeen has won the vice president post. Congress students wing NSUI suffers a humiliating loss. The Congress-backed NSUI failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki goonj and shows where the fate of the youth lies. However, NSUI has alleged that the Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSUI President Vinod Chakar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
3: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
4: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
3: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
4: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और एनएसयूआई को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल, वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और एनएसयूआई को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल, फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
3: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
4: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं, और जो भी एनएसयूआई के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
3: बहुत टफ कॉम्पिटिशन था आपके के लिए देखा गया, इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
5: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
6: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए?
7: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है पहली बात, दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
8: तो क्या छात्रों की गूंज जब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजे आए
7: हैं, गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है,
8: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका
7: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
9: जो आवाज है, यह आवाज आज देश के धारा के साथ, देश के विकास के धारा के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं राहुल गांधी जो एनएसयूआई को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आज पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई को जीरो अर्थात एक भी सीट डूसू में नहीं मिला है। एक बात स्पष्ट है, राहुल से नहीं हो पाएगा। राहुल ये जाके जो कर रहे हैं ना, क्या गूंज, झूठ की गूंज, उस झूठ की गूंज की आज हवा निकल गई है, झूठ की गूंज की पोल खुल गई है।
10: See, all of us have seen various reports around how the so-called छात्रों की गूंज programs have been organized by Rahul Gandhi and Congress Party. We have seen how students have been lured, what have they been offered, how they have been called, and there's also a doubt that those attending such programs are even students or not. We have seen viral videos on social media where students or influencers are offered money to attend the program of Rahul Gandhi. The students who have voted in Delhi University today, they have voted from their own will. They have not casted their vote as Rahul Gandhi would organize his events. They have not casted their votes on by being lured by somebody. They have casted their vote by their will, giving a mandate of what the students of this country feel. So I don't think that the event management done by Rahul Gandhi or the PR done by Rahul Gandhi can hide the true feelings of the students of this country.
11: Delhi Vishwavidyalay ke ek chhatr ko jisne mera itna saath diya uska bahut bahut dhanyawad. Humne kal bhi complaint kari thi jo Swami Sardanand College, jo Ramdas College aur Shivaji College jaise colleges mein bogus voting ki, bachchon ko pakad pakad ke voting karwai gayi, unke ID cards le liye gaye, unhi ko lekar hum court jayenge aur iski ladai ladenge.
12: Ke jo hai wo to hum log samiksha karenge, lekin abhi gambhir baat ye hai ki maine abhi suna hai ki NSUI ke jo hamare president hain unhone bataya ki wahan counting mein aur centers mein bhi bahut dhandli hui hai, usko dekhna padega kyunki in chote margins jo hain baki 2-3 seat pe usme iska bada asar ho sakta hai. Dusra campaigning mein bhi bahut dikkat hui, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन्स की जो 2-3 सीटों पे हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो।
2: Moving on, amid his face-off with Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, former Union Minister and BJP leader Ravneet Singh Bittu has made a big claim. Bittu's team has alleged that he is still under house arrest in Ludhiana and that police officials are not allowing him to talk to anyone or move. This comes after Ravneet Bittu was detained by the Punjab police for allegedly waving tomatoes and eggs at CM Bhagwant Mann's convoy. Cops claim Bittu was released soon after, but the BJP leader's team insists he is under house arrest. Earlier, Bittu hit out at the chief minister and AAP government, saying the voice of the people cannot be suppressed by detaining them or registering police cases. He added that despite the detention, their spirits remain high.
13: ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ
14: ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ ਜਬ ਇਨ ਲੋਗੋ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤੋ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਔਰ ਅਬ ਵੀ ਓਪਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਪੇ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਉਨ ਸਟੇਟਸ ਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਯੇ ਇਨ ਲੋਗੋ ਕੀ ਸਰਕਾਰ
15: ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਿਬ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਉਸਸੇ ਸਾਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਨਕੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਹੁਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਵੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਮ ਪੇ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ ਪੇ ਉਤਰੇ ਹਮਲੇ ਹਮੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨੋ ਹਮਾਰੀ ਮਾਤਾਓਂ ਬਹਿਣੋਂ ਕੀ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਓਂ ਕੀ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮੇ ਆ ਚਿੰਤਾ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਹਾਂ ਪੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਜਾਣਤੇ ਯੇ ਸਭ ਇਤਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਹਾਲ ਕਿਆ ਸਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਯੇ
2: In Bengal, the bi-poll battle is heating up even before polling day. From candidates withdrawing and making a U-turn to an arrest triggering political allegations, the contest in Nandigram and Rajinagar has already turned into a full-blown political battle. And with the fight over the party name and symbol now reaching the Supreme Court, Bengal's poll drama is only getting bigger. We're getting you all the details in this report.
16: In Bengal, every poll comes with a political twist. And as the bi-polls draw closer, the battle lines are only getting busier. Earlier today, a fresh setback hit Mamata Banerjee's camp. A day after her party's candidate in Nandigram pulled out, her Rajinagar candidate too announced his withdrawal.
17: আর সিদ্ধান্ত সেগুলো বলছিল নতুন প্রতীক কর্মীদের তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গায় ছিল এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি না
16: But then came the twist. Just over an hour after announcing his exit, Rabiul met police officials and then reversed his withdrawal. He now says he will continue to contest the October 6 polls. Insiders in Mamata camp have confirmed to India Today that Rabiul will contest under the new name and symbol. And Nandigram had already served up its own twists just a day earlier. After Sanchita Pradhan of Mamata's faction withdrew her candidature, Mamata announced that her camp would back the Congress candidate. Then came another turn. Hours later, Congress candidate Milan Pradhan was arrested in connection with four 19-year-old cases, three carrying murder-related charges. Today, he was produced before the court. Congress called the timing of the arrest no coincidence, while Didi alleged political vendetta.
18: Look, these are scared people. दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है
16: बट द रेबल फैक्शन एंड द बीजेपी हैव हिट बैक एट ममताज एआईटीसी
19: ये जब माने बंगाली में कहावत है ना अंगूर फल टॉक ग्रेप्स आर सावर तो ममता बनर्जी का भी ग्रेप्स बहुत सावर हो गया है
20: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है
16: द लीगल बैटल इज रनिंग पैरेलल टू द इलेक्टोरल वन Mamata's faction has moved the Supreme Court, arguing that the Election Commission did not adequately consider its organizational structure before denying it the original party name and twin flower symbol.
0: Team Didi has also filed a separate petition seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritabrata Banerjee.
21: We don't disrespect the constitutional chair. But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta.
0: So as Nandigram and Vijayanagar inch closer to the October bipolls, their political chessboard is getting more crowded, with candidates quitting, returning, arrests triggering allegations, and the battle over names and symbols moving all the way to the Supreme Court. And in Bengal, the poll drama clearly is not waiting for polling day. Bureau Report, India Today.
2: And well, the showdown over who controls the TMC has now reached the Supreme Court. Hours after Mamata camp and the Ritabrata-led rebel camp were allotted interim party names and symbols for the upcoming bipolls, Team Didi has knocked on the doors of the top court. Mamata's camp has challenged the Election Commission's decision to deny it the original TMC name and symbol and instead allotted a temporary name and a free symbol. The plea also argues that the poll panel did not adequately consider the party's organizational structure while taking into account the claims of rebel leaders against whom disqualification petitions are pending. A separate petition that has also been filed by Team Didi seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Ritabrata Banerjee. The plea challenges the State Assembly Speaker's delay in deciding the disqualification petitions against the rebel legislators and also raises the issue of Ritabrata Banerjee's recognition as leader of opposition.
21: We don't disrespect the constitutional chair. But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta. To satisfy the ego of a political party, ऑलरेडी आपने आपका पता है कि उन्होंने बोला था पहले नाम भी नहीं रखने दूंगा निशाना भी नहीं रखने दूंगा पहले ही बताया था
22: बुनियादी तौर पे फैसले बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी की सरकार करती है इलेक्शन कमीशन उन फैसलों को एग्जीक्यूट करता ये तो फैसले सारे बीजेपी के ऑफिसेज में होते हैं सरकार के ऑफिसेज में होते हैं इलेक्शन कमीशन तो उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है उन पे अमल दरामद करता है इलेक्शन कमीशन अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया
23: लोगों से संपर्क करना शुरू किए थे सवेरे एक वर्चुअल मीटिंग हुआ हम तीन प्रेफरेंस दिए थे फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस सेकेंड वॉज वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस थर्ड वॉज डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन कमिश्नर बताए हम लोगों को क्यों पहले दो नाम दे नहीं सकते हैं थर्ड नाम दिया है और इनवेलप जहां चुनाव चिन्ह का सवाल है पहला जो हम लोग का प्रायोरिटी था वही हम लोगों को मिला है तो इंडिविजुअल कल्ट है इंडिविजुअल कल्ट का पार्टी है पॉलिटिक्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वारिशन ये सब का कोई मायने नहीं है कोई ओनरशिप नहीं होता है पॉलिटिकल सिस्टम में
24: देखिए ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का वो जाके देखे चलो
2: Moving on, Prime Minister Narendra Modi has drawn a sharp line in the sand over India's energy future. Addressing a major global conference today, Modi launched a scathing attack on environmentalists, calling out those who preach green values with long speeches only to rush to court and stall critical nuclear projects. He stressed that India's energy transition is not restricted to solar and wind, but also includes nuclear power, hydropower and other low-carbon sources. The government has set an ambitious target of 100 gigawatts of nuclear capacity by 2047 with plans to expand participation in the sector and develop small modulator reactors. Modi also highlighted India's rapid growth in solar energy, saying installed capacity has surged from around 2 gigawatts 12 years ago to more than 160 gigawatts today. From rooftop solar reaching millions of homes to solar pumps benefiting farmers, the Prime Minister underlined the scale of India's clean energy push.
1: और जो लोग एनवायरमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए, इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है।
3: भारत सोलर एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी तक की क्लीन एनर्जी की यात्रा कर रहा है, लेकिन कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट इस मामले को लेकर बार बार कोर्ट जाते रहते हैं।
4: नहीं, पिछले काफी दिनों से जब इस तरह की योजनाएं अस्तित्व में आती हैं, तो कई संस्थाएं और व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह पर्यावरणविद होने का दावा और वादा करके अदालत में जाकर के इन योजनाओं पर रोक लगाने का याचिकाएं दायर करते हैं, तो कई बार जो ये योजनाएं लंबित हो जाती हैं, जिससे राष्ट्र को नुकसान होता है। मैं प्रधानमंत्री से सहमत।
2: US President signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in the crosshairs. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Here's a report.
5: A bill targeting Russia, but with eyes on India and China without naming them. Trump has signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers. Under the new law, the Trump administration can, with his nod, impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in crosshairs. The legislation requires Trump to impose tariffs of up to 100% within 30 days on goods imported into the US from the 5 largest importers of Russian crude oil or gas. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Trump in the past has blamed India for imposing high tariffs on US goods.
6: Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now, they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff.
5: But India stands firm, asserting national interest is paramount. Ministry of External Affairs had said that India remains committed to ensuring energy security for its 1.4 billion people through diversified sourcing. New Delhi has flagged the potential impact on bilateral ties and global energy markets. The government says it will take all necessary measures to protect India's trade and economic interests.
25: हम लोग किसी देश के आधारित उस पर नहीं चलेंगे, जो हमारे देश के लिए अच्छा वो करेंगे। जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं बहुत अनफेयर है, और हम किसी देश के दबाव में नहीं है। एनर्जी हमारा एक बहुत प्राइमरी कंसर्न है, और हमारे देश के लोगों को जहां भी हमें कमर्शियली वायबल इकोनॉमिकल एनर्जी सोर्स मिलेगा, हम वहां से एनर्जी लेंगे।
5: Earlier, Prime Minister Modi had made it clear that the interests of Indians are supreme, no matter what.
1: मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे।
5: India has also defended buying Russian oil.
26: We didn't buy significant amount of Russian oil till 2022. Circumstances compelled us to get into that market. And I must say, the Russians have been steady suppliers because they put the cargoes out there and you go out there and buy oil, whichever is the most reasonable and available oil.
5: With the midterm polls around the corner, Trump is pulling out all the stops to avoid weakening his position, and that too at a time when end to Iran war seems a distant reality. And for India, it is still wait and watch game. Bureau Report, India Today.
2: After months of diplomatic pressure and threats of Greenland's annexation, Donald Trump has said that the United States has struck a deal with Denmark, which gives Washington permanent control over Greenland's security and would bar China and Russia from having a military presence in the Arctic territory. We're getting you all the details in this report.
0: For years, Greenland has been at the center of Donald Trump's foreign policy agenda. And now, the US says it has reached a security deal with Denmark and Greenland. The deal gives Washington a permanent security role on the island. Sharing a post on his social media, US President Donald Trump said Washington will have the ability to do what is necessary to secure and defend Greenland and the United States. Trump says the agreement comes at no cost to the US, bars adversaries from establishing military bases or maintaining a military presence on the island, and is an infinite life deal with no end. The US also wants to make sure that its rivals cannot establish a military foothold in Greenland. No non-NATO country would be allowed to establish a military base or maintain troops in Greenland. That means preventing China and Russia from gaining a military or strategic foothold on the island. U.S. Secretary of State Marco Rubio has called the agreement a historic deal for both countries and a big win for Washington. Rubio says Greenland will remain part of North America's strategic defense area, while adversaries will be kept out of the island and its surrounding region. Danish Prime Minister Frederiksen's office said agreement reconciles the sovereignty and territorial integrity of Greenland. Greenland's Prime Minister says the agreement recognizes Greenland's interests and strengthens its place in international cooperation.
7: Strong support we have had from all European partners.
0: The agreement is expected to be signed during the upcoming UN General Assembly session and will then have to go through the required parliamentary procedures in Denmark and Greenland. A permanent security role, expanded military access, and stronger restrictions on rival powers in this strategically important Arctic territory. This is what makes the Greenland deal so significant. And that is exactly why this deal matters. Bureau Report, India Today.
2: It's a girl once again for Bollywood power couple Deepika Padukone and Ranveer Singh. Just days after seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple, the couple announced the joyous arrival of their second baby girl on Instagram. Little Dua is officially a big sister, and the family of three has officially grown into a happy family of four. Congratulations pouring in for the star couple as they step into this beautiful new chapter. Take a look.
8: Deepika Padukone and Ranveer Singh are parents again. The couple has welcomed their second child, a baby girl. They shared the news jointly on Instagram with fans. The announcement was simple and intimate, with the couple using an evil eye protection emoji alongside the happy news. The arrival of their second daughter comes just a day after Deepika and Ranveer were spotted seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple. The couple visited the temple with family, with Ranveer seen holding Deepika's hand as they made their way inside. Interestingly, this is not the first time the couple has turned to Bappa ahead of a major family milestone. In 2024, Deepika and Ranveer had also visited Siddhivinayak before welcoming their first child. And now, their daughter Dua Padukone Singh has officially become a big sister. Deepika and Ranveer welcomed Dua on September 8, 2024. The couple had largely kept their daughter away from the public eye initially before sharing her first pictures with fans. Now, with the arrival of their second baby girl, the family of three has become a family of four.
9: the couple has announced their second pregnancy earlier this year through a joint social media post, with Dua featuring in the announcement. Since then, fans have closely followed Deepika's pregnancy journey, from her public appearances to their visits to Mumbai's iconic Ganpati Pandals. Their latest temple visit has already sparked excitement among fans, and now the reason behind the prayers has become even more special. Bureau Report, India Today.
2: Time now for a short break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
10: You are watching India Today.

0: Humiliating loss. The Congress-backed NSUI failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki gooj and shows where the fate of the youth lies. However, NSUI has alleged that the Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSUI President Vinod Chakar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
1: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
2: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
1: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
2: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
1: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
2: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे जाते हैं।
1: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
3: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपति की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपति उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
4: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
5: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वो अगर आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
4: तो क्या छात्रों की गूंज जब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजा आए
5: हैं, गूंज कहाँ है? ये जो जीत है ये धमाका है।
4: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका?
5: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
6: जो आवाज है, यह आवाज आज देश के

0: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
1: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
0: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
1: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
0: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
1: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे जाते हैं।
2: मेक योर मीडिया प्लान स्मार्टर विद इंडिया टुडे लाइव टीवी ऑन योर कनेक्टेड डिवाइसेस। Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
3: You are watching India Today.
4: India's biggest student poll verdict. BJP wins Big Bang Gen Z campus polls. BJP students wing ABVP has won 3 of the 4 central posts in the Delhi University elections, giving Prime Minister Modi's Gen Z outreach a big boost. Yash Dabas winning president, Riya Chhavri winning secretary, Lakshya Raj Singh winning joint secretary. Independent candidate Dipanshu Shaukeen has won the vice president post. Congress students wing NSUI suffers a humiliating loss. The Congress-backed NSUI failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki goonj and shows where the fate of the youth lies. However, NSUI has alleged that the Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSUI President Vinod Jakhar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
0: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
1: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
0: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
1: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
0: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
1: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे जाते हैं।
0: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
5: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
6: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
7: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं। ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहां पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
6: तो क्या छात्रों की गूंज जब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजे आए
7: हैं, गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है,
6: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका
7: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
8: जो आवाज है, यह आवाज आज देश के धारा के साथ, देश के विकास की धारा के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं राहुल गांधी जो एनएसयूआई को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आज पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई को जीरो अर्थात एक भी सीट डूसू में नहीं मिला है। एक बात स्पष्ट है, राहुल से नहीं हो पाएगा। राहुल ये जाके जो कर रहे हैं ना, क्या गूंज, झूठ की गूंज, उस झूठ की गूंज की आज हवा निकल गई है, झूठ की गूंज की पोल खुल गई है।
9: See, all of us have seen various reports around how the so-called छात्रों की गूंज programs have been organized by Rahul Gandhi and Congress Party. We have seen how students have been lured, what have they been offered, how they have been called, and there's also a doubt that those attending such programs are even students or not. We have seen viral videos on social media where students or influencers are offered money to attend the program of Rahul Gandhi. The students who have voted in Delhi University today, they have voted from their own will. They have not casted their vote as Rahul Gandhi would organize his events. They have not casted their votes on by being lured by somebody. They have casted their vote by their will, giving a mandate of what the students of this country feel. So I don't think that the event management done by Rahul Gandhi or the PR done by Rahul Gandhi can hide the true feelings of the students of this country.
10: Delhi Vishwavidyalay ke ek chhatr ko jisne mera itna saath diya uska bahut bahut dhanyawad. Humne kal bhi complaint kari thi jo Swami Sardanand College, jo Ramdas College aur Shivaji College jaise colleges mein bogus voting ki, बच्चों को पकड़ पकड़ के वोटिंग करवाई गई, उनके आईडी कार्ड्स ले लिए गए, उन्हीं को लेकर हम कोर्ट जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे।
11: के जो है वो तो हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी गंभीर बात यह है कि मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहां काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो है बाकी 2-3 सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पे हम लोग हारे हैं, ये जीत में भी तब्दील हो।
4: Moving on, amid his face-off with Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, former Union Minister and BJP leader Ravneet Singh Bittu has made a big claim. Bittu's team has alleged that he is still under house arrest in Ludhiana and that police officials are not allowing him to talk to anyone or move. This comes after Ravneet Bittu was detained by the Punjab police for allegedly waving tomatoes and eggs at CM Bhagwant Mann's convoy. Cops claim Bittu was released soon after, but the BJP leader's team insists he is under house arrest. Earlier, Bittu hit out at the chief minister and AAP government, saying the voice of the people cannot be suppressed by detaining them or registering police cases. He added that despite the detention, their spirits remain high.
12: ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਚ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।
13: ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ, ਜਬ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ। ਔਰ ਅਬ ਵੀ ਓਪਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਪੇ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ ਸਟੇਟਸ ਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਯੇ ਲੋਗ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
14: ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ, ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ, ਉਸਸੇ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਨਕੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਹੁਆ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਵੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਥੇ ਹਮ ਪੇ। ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹਮ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਹਮਾਰੇ ਪੇ ਉਤਰੇ ਹਮਲੇ, ਹਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨੋ ਹਮਾਰੀ ਮਾਤਾਓਂ ਬਹਿਣੋਂ ਕੀ, ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਓਂ ਕੀ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਆ ਚਿੰਤਾ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਸਭ ਇਤਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਹਾਲ ਕਿਆ ਸਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਯੇ।
4: In Bengal, the bi-poll battle is heating up even before polling day. From candidates withdrawing and making a U-turn to an arrest triggering political allegations, the contest in Nandigram and Rajinagar has already turned into a full-blown political battle. And with the fight over the party name and symbol now reaching the Supreme Court, Bengal's poll drama is only getting bigger. We're getting you all the details in this report.
15: In Bengal, every poll comes with a political twist. And as the bi-polls draw closer, the battle lines are only getting busier. Earlier today, a fresh setback hit Mamata Banerjee's camp. A day after her party's candidate in Nandigram pulled out, her Rajinagar candidate too announced his withdrawal.
16: আর সিদ্ধান্ত সেগুলো বলছিল নতুন প্রতীক কর্মীদের, তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গা ছিল, এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি না।
15: But then came the twist. Just over an hour after announcing his exit, Rabiul met police officials and then reversed his withdrawal. He now says he will continue to contest the October 6 polls. Insiders in Mamata camp have confirmed to India Today that Rabiul will contest under the new name and symbol, and Nandigram had already served up its own twists just a day earlier. After Sanchita Pradhan of Mamata's faction withdrew her candidature, Mamata announced that her camp would back the Congress candidate. Then came another turn. Hours later, Congress candidate Milan Pradhan was arrested in connection with 4 19-year-old cases, 3 carrying murder-related charges.
17: Today he was produced before the court. Congress called the timing of the arrest no coincidence, while Didi alleged political vendetta.
18: देखिए ये डरे हुए लोग हैं, दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है।
17: But the rebel faction and the BJP have hit back at Mamata's AITC.
19: ये जब माने बंगाली में कहावत है ना अंगूर फल टॉक ग्रेप्स आर सावर, तो ममता बनर्जी का भी ग्रेप्स बहुत सावर हो गया है।
20: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है।
17: The legal battle is running parallel to the electoral one. Mamata's faction has moved the Supreme Court, arguing that the Election Commission did not adequately consider its organizational structure before denying it the original party name and twin flower symbol. Team Didi has also filed a separate petition seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Rita Brata Banerjee.
21: We don't disrespect the constitutional chair, but we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta.
17: So as Nandigram and Vijayanagar inch closer to the October bipoles, their political chessboard is getting more crowded, with candidates quitting, returning, arrests triggering allegations, and the battle over names and symbols moving all the way to the Supreme Court. And in Bengal, the poll drama clearly is not waiting for polling day. Bureau Report, India Today.
4: And well, the showdown over who controls the TMC has now reached the Supreme Court. Hours after Mamata camp and the Rita Brata-led rebel camp were allotted interim party names and symbols for the upcoming bipoles, Team Didi has knocked on the doors of the top court. Mamata's camp has challenged the Election Commission's decision to deny it the original TMC name and symbol and instead allotted a temporary name and a free symbol. The plea also argues that the poll panel did not adequately consider the party's organizational structure while taking into account the claims of rebel leaders against whom disqualification petitions are pending. A separate petition that has also been filed by Team Didi seeking action against 10 rebel TMC MLAs, including Rita Brata Banerjee. The plea challenges the State Assembly Speaker's delay in deciding the disqualification petitions against the rebel legislators and also raises the issue of Rita Brata Banerjee's recognition as leader of opposition.
21: We don't disrespect the constitutional chair, but we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic, and totally political bias vendetta. To satisfy the ego of a political party, ऑलरेडी आपने आपका पता है कि उन्होंने बोला था पहले नाम भी नहीं रखने दूंगा, निशाना भी नहीं रखने दूंगा, पहले ही बताया था।
22: बुनियादी तौर पे फैसले बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी की सरकार करती है। इलेक्शन कमीशन उन फैसलों को एग्जीक्यूट करता है। ये तो फैसले सारे बीजेपी के ऑफिसेज में होते हैं, सरकार के ऑफिसेज में होते हैं। इलेक्शन कमीशन तो उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है, उन पे अमल दरामद करता है। इलेक्शन कमीशन अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया।
23: लोगों से संपर्क करना शुरू किए थे, सवेरे एक वर्चुअल मीटिंग हुआ, हम तीन प्रेफरेंस दिए थे। फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस, सेकेंड वॉज वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस, थर्ड वॉज डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस। इलेक्शन कमिश्नर बताए हम लोगों को क्यों पहले दो नाम दे नहीं सकते हैं, थर्ड नाम दिया है। और एनवेलप जहां चुनाव चिन्ह का सवाल है, पहला जो हम लोग का प्रायोरिटी था वही हम लोगों को मिला है। तो इंडिविजुअल कल्ट है, इंडिविजुअल कल्ट का पार्टी है,
19: पॉलिटिक्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वारिशन, ये सब का कोई मायने नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं होता है पॉलिटिकल सिस्टम में।
0: देखिए, ऐसा करते करते चुनाव पार हो जाएगा, ना कैंडिडेट दे पाएंगे ना लड़ पाएंगे। अब किसी का भी अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो जाके देखे।
4: US President signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in the crosshairs. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Here's a report.
1: A bill targeting Russia, but with eyes on India and China without naming them. Trump has signed into law a Russia sanctions bill that gives his administration new powers. Under the new law, the Trump administration can, with his nod, impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas, potentially putting India and China in crosshairs. The legislation requires Trump to impose tariffs of up to 100% within 30 days on goods imported into the US from the five largest importers of Russian crude oil or gas. India and China are among the biggest buyers of Russian oil, but the legislation does not name specific countries or clearly explain how the top five list will be calculated. Trump in the past has blamed India for imposing high tariffs on US goods.
2: Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now, they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff.
1: But India stands firm, asserting national interest is paramount. Ministry of External Affairs had said that India remains committed to ensuring energy security for its 1.4 billion people through diversified sourcing. New Delhi has flagged the potential impact on bilateral ties and global energy markets. The government says it will take all necessary measures to protect India's trade and economic interests.
3: हम लोग किसी देश के आधारित उस पर नहीं चलेंगे, जो हमारे देश के, जो हमारे देश के लिए अच्छा वो करेंगे। जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं बहुत अनफेयर है और हम किसी देश के दबाव में नहीं है। एनर्जी हमारा एक बहुत प्राइमरी कंसर्न है और हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को जहां भी हमें कमर्शियली वायबल इकोनॉमिकल एनर्जी सोर्स मिलेगा, हम वहां से एनर्जी लेंगे।
1: Earlier, Prime Minister Modi had made it clear that the interests of Indians are supreme, no matter what.
24: मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे।
1: India has also defended buying Russian oil.
25: We didn't buy significant amount of Russian oil till 2022. Circumstances compelled us to get into that market. And I must say, the Russians have been steady suppliers because they put the cargoes out there and you go out there and buy oil, whichever is the most reasonable and available oil.
1: With the midterm polls around the corner, Trump is pulling out all the stops to avoid weakening his position, and that too at a time when end to Iran war seems a distant reality. And for India, it is still wait and watch game. Bureau Report, India Today.
4: After months of diplomatic pressure and threats of Greenland's annexation, Donald Trump has said that the United States has struck a deal with Denmark, which gives Washington permanent control over Greenland's security and would bar China and Russia from having a military presence in the Arctic territory. We're getting you all the details in this report.
15: For years, Greenland has been at the center of Donald Trump's foreign policy agenda. And now, the US says it has reached a security deal with Denmark and Greenland. The deal gives Washington a permanent security role on the island. Sharing a post on his social media, US President Donald Trump said Washington will have the ability to do what is necessary to secure and defend Greenland and the United States. Trump says the agreement comes at no cost to the US, bars adversaries from establishing military bases or maintaining a military presence on the island, and is an infinite life deal with no end. The US also wants to make sure that its rivals cannot establish a military foothold in Greenland. No non-NATO country would be allowed to establish a military base or maintain troops in Greenland. That means preventing China and Russia from gaining a military or strategic foothold on the island. U.S. Secretary of State Marco Rubio has called the agreement a historic deal for both countries and a big win for Washington. Rubio says Greenland will remain part of North America's strategic defense area, while adversaries will be kept out of the island and its surrounding region. Danish Prime Minister Frederiksen's office said agreement reconcises the sovereignty and territorial integrity of Greenland. Greenland's Prime Minister says the agreement recognizes Greenland's interests and strengthens its place in international cooperation.
5: Strong support we have had from all European partners.
15: The agreement is expected to be signed during the upcoming UN General Assembly session and will then have to go through the required parliamentary procedures in Denmark and Greenland. A permanent security role, expanded military access, and stronger restrictions on rival powers in this strategically important Arctic territory. This is what makes the Greenland deal so significant. And that is exactly why this deal matters. Bureau Report, India Today.
4: It's a girl once again for Bollywood power couple Deepika Padukone and Ranveer Singh. Just days after seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple, the couple announced the joyous arrival of their second baby girl on Instagram. Little Dua is officially a big sister and the family of three has officially grown into a happy family of four. Congratulations pouring in for the star couple as they step into this beautiful new chapter. Take a look.
6: Deepika Padukone and Ranveer Singh are parents again. The couple has welcomed their second child, a baby girl. They shared the news jointly on Instagram with fans. The announcement was simple and intimate, with the couple using an evil eye protection emoji alongside the happy news. The arrival of their second daughter comes just a day after Deepika and Ranveer were spotted seeking blessings at Mumbai's Siddhivinayak Temple. The couple visited the temple with family, with Ranveer seen holding Deepika's hand as they made their way inside. Interestingly, this is not the first time the couple has turned to Bappa ahead of a major family milestone. In 2024, Deepika and Ranveer had also visited Siddhivinayak before welcoming their first child. And now, their daughter Dua Padukone Singh has officially become a big sister. Deepika and Ranveer welcomed Dua on September 8, 2024. The couple had largely kept their daughter away from the public eye initially before sharing her first pictures with fans. Now, with the arrival of their second baby girl, the family of three has become a family of four. The couple has announced their second pregnancy earlier this year through a joint social media post, with Dua featuring in the announcement. Since then, fans have closely followed Deepika's pregnancy journey, from her public appearances to their visits to Mumbai's iconic Ganpati Pandals. Their latest temple visit has already sparked excitement among fans, and now the reason behind the prayers has become even more special. Bureau Report, India Today.
4: Time now for a short break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
7: Watching India Today.

0: with the students' mandate will not be tolerated.
1: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
2: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
1: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
2: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
1: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
2: देखिये, विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
1: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
3: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
4: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
5: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
4: तो क्या छात्रों की गूंज जब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजे आए
5: हैं, गूंज कहाँ है? ये जो जीत है ये धमाका है।
4: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका?
5: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
6: जो आवाज है, यह आवाज आज देश के धारा के साथ, देश के विकास के धारा के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं राहुल गांधी जो NSUI को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आज पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। NSUI को 0 अर्थात एक भी सीट डूसू में नहीं मिला है। एक बात स्पष्ट है, राहुल से नहीं हो पाएगा। राहुल ये जाके जो कर रहे हैं ना, क्या गूंज, झूठ की गूंज, उस झूठ की गूंज की आज हवा निकल गई है, झूठ की गूंज की पोल खुल गई है।

भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

0: are watching India Today.
1: India's biggest student poll verdict. BJP wins Big Bang Gen Z campus polls. BJP students wing ABVP has won 3 of the 4 central posts in the Delhi University elections, giving Prime Minister Modi's Gen Z outreach a big boost. Yash Dabas winning president, Riya Chavri winning secretary, Lakshya Raj Singh winning joint secretary. Independent candidate Dipanshu Shaukeen has won the vice president post. Congress students wing NSUI suffers a humiliating loss. The Congress-backed NSUI failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki gooj and shows where the fate of the youth lies. However, NSUI has alleged that the Delhi University administration colluded with the ABVP, claiming that there were persistent attempts to rig the election and influence the counting process. NSUI President Vinod Chakar has said that this tampering with the students' mandate will not be tolerated.
2: आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
3: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
2: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
3: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेनजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
2: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
3: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे जाते हैं।
2: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
4: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपति की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपति उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
5: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
6: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
5: तो क्या छात्रों की गूंज अब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजा
6: आया है? गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है।
5: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका?
6: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
7: जो आवाज है यह आवाज आज देश के धारा के साथ, देश के विकास के धारा के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं राहुल गांधी जो NSUI को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं आज